मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 53 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः काल का समय प्रकृति के आनंद लेने का सुखद अनुभव होता है। सूर्य की किरणें धरती पर अपनी मधुर रोशनी बिखेर रही हैं। आसमान के रंग और सूर्य की किरणों के बीच पेड़ों की पत्तियां अद्भुत ही छटा बिखेर रही हैं। हम में से कुछ व्यायाम के लिए तैयार हैं तो कुछ अपनी दिनचर्या में लग गए हैं, और हमारे श्रोता जो आकाशवाणी लखनऊ सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो अपना रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं। तो श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी।

0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। समय हुआ है सुबह के 6:05 का और ये समय होता है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। तो आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी अपने किसान भाइयों को बताएंगे जिमीकंद की उन्नत खेती के बारे में।
1: शुभ प्रभात। जिमीकंद या सूरन एक कटिबंधीय कंद वाली फसल है और हमारे यहाँ सब्जियों में इसका विशिष्ट स्थान है। दीपावली के दिन तो इसकी सब्जी अनिवार्य रूप से कुछ

0: क्षेत्रों में बनती ही बनती है। सुरन का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में भी किया जाता है, इसलिए इसकी सतत मांग बनी रहती है। इसके घन कंद में काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों जैसे कि बवासीर, सांस फूलना, फेफड़ों में सूजन, उल्टी, दस्त, दर्द एवं रक्त शुद्धिकरण के लिए आयुर्वेदाचार्यों द्वारा सुझाया जाता रहा है। इसलिए इसकी खेती भी उतनी ही व्यापक आज भी है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। इसकी आवश्यकता, बाजार की मांग, इन सब स्थितियों के बीच हम कहें तो जो अच्छी अच्छी किस्में आई हैं उसकी खेती करें तो लाभ हमारा और भी बढ़ सकता है। गजेंद्र यह एक अच्छी किस्म है। इसके पौधों की ऊंचाई 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। कंदों में गला काटने वाला तत्व बहुत ही कम पाया जाता है। इसके कंद काफी बड़े एवं काले रंग के होते हैं। यह पकाने पर आसानी से गल भी जाता है और साथ ही साथ इस किस्म के छोटे छोटे कंद नहीं निकलते हैं। इसकी औसत पैदावार 500 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसलिए अपने उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें इसकी खेती यानी इस जाति की खेती बेहतर रूप से की जा सकती है। संतरा गाची भी है। इस प्रजाति के पौधे काफी बढ़ने वाले होते हैं। कंद खुरदुरी सतह वाले होते हैं जिससे काफी संख्या में छोटे छोटे कंद निकलते हैं। इसके कंदों में गला काटने वाला तत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए अब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जो दवाएं बनती हैं उसमें इसका प्रयोग बहुतायत से होता है, इसलिए इसकी मांग अभी कम न हुई है। यह किस्म हमारे देश के पूर्वी क्षेत्रों में उगाने के लिए ज्यादा अच्छी मानी गई है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस किस्म की औसत पैदावार 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी गई है। बात आती है अब यहाँ की सूरन की खेती के लिए भूमि कैसी हो। तो सूरन के लिए गर्म जलवायु होना बहुत जरूरी है। इसमें इसकी बुआई करेंगे तो देखेंगे कि निश्चय ही बरसाती फसल के रूप में इसकी बुआई मई जून में करने से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। बुआई के लिए यह जरूरी है कि खेत की जुताई 3 से 4 बार अच्छी तरह से करें, यानी 3-4 बार कल्टीवेटर या फिर देशी हल जो भी आपके पास है, और खेत को समतल कर लें। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई की गई है तो वह और भी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। सूरन की बुआई गड्ढे में करनी चाहिए। गड्ढे का आकार एवं जो दूरी है एक गड्ढे से दूसरे की वह सूरन के कंद पर निर्भर होती है। सूरन का कंद जिसका वजन 500 ग्राम हो उसके लिए गड्ढे 35 सेंटीमीटर × 35 सेंटीमीटर × 35 सेंटीमीटर यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतनी ही होनी चाहिए। दूरी जो है 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर के रखने पर अच्छी पैदावार मिलेगी। यदि सूरन बीजोत्पादन के लिए बोया जा रहा है और कंद का वजन 100 ग्राम है तो इसे 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। गड्ढे में 1 से 2 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। सूरन की कंद को बुआई के पहले गाय के गोबर का घोल बनाकर उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें, देखेंगे आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कंद की बुआई खड़े रूप में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए। बुआई के बाद उसे पुआल से ढक देना भी एक अच्छा तरीका है, उससे नमी बनी रहती है और साथ ही साथ तापमान भी नियंत्रित रहता है। खाद एवं उर्वरकों का भी प्रयोग करना ही करना होता है, इसलिए 25 से 40 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी 150, 60 और 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना होगा। बुआई के समय पूरी मात्रा फास्फोरस की तथा आधी मात्रा नत्रजन और पोटाश की गड्ढे में मिला देना चाहिए। शेष बची हुई नत्रजन और पोटाश की मात्रा बुआई के 35 से 75 दिन पर खरपतवार निकालकर तब प्रयोग करना होगा। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहने की जरूरत पड़ेगी।
1: जिमीकंद की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की कृषि चर्चा में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। अपार पुण्य और सफलता की दाई प्रभु विष्णु की कृपा बरसाए। अपरा एकादशी का पावन व्रत

0: जीवन के सभी कष्ट मिटाए। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है अपरा एकादशी, वाचन स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का है।
1: वर्ष में 12 माह और 365 दिवस होते हैं और हर दिन की अपनी एक विशेषता है। धार्मिक महत्ता की दृष्टि से देखें तो वर्ष के 12 महीनों में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और दो एकादशी की तिथि होती हैं और ये सभी तिथियां विशेष मानी जाती हैं। आज बात करेंगे एकादशी की। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। माह में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष जो पूर्णिमा की तिथि के बाद आती है और एक शुक्ल पक्ष जो अमावस्या की तिथि के बाद आती है। मान्यता के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है। ये सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और पापों के नाश एवं मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती हैं। इन एकादशियों में शामिल हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पौषपुत्रदा, शक्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, श्रावण पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापनकुशा, रमा, देव प्रबोधिनी, पद्मिनी एवं परमा एकादशी। आज अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा अर्थात अपार पुण्य देने वाला। इसे अचला अर्थात जो अपनी जगह से ना हिले या स्थिर रहे, ऐसी एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत अपार पुण्य और धन प्रदान करने वाला माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ये एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। ये व्रत करने से गंगा स्नान, कुंभ में स्नान के साथ साथ वर्षों की तपस्या के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को धन, वैभव, प्रसिद्धि और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हे महाराज, ये अत्यंत ही शुभ एकादशी और आशीर्वाद प्रदान करने वाली तिथि है। इसे अपरा एकादशी कहा जाता है, जिसके प्रभाव से पाप और समस्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही दुष्ट और पापी था। वज्रध्वज ने धोखे से राजा महीध्वज का वध किया और तब राजा की रानी ऋषि धौम्य से अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछने गई। ऋषि ने ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत उन्हें करने के लिए कहा। उनकी आदेश अनुसार रानी ने पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया और उसका फल अपने पति को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा महीध्वज अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर पूर्व की भांति सुकर्म और भूलोक का सुख भोग कर स्वर्ग को चले गए। अपरा एकादशी के दिन व्रती को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को शुद्ध मन से याद करना चाहिए। उन्हें फल, फूल और तुलसी दल आदि का भोग निवेदन करना चाहिए। साथ ही अपरा एकादशी की कथा सुननी और पढ़नी भी चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने का अर्थ है भक्ति और उत्साह पूर्वक जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाना। एकादशी एक और दशी शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक और दस। ये 11 दिन हमारी 11 इंद्रियों, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मनोवैज्ञानिक इंद्री को वश में करने और मन को शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। इंद्रियों और मन की क्रियाओं को भौतिक संसार से हटाकर ईश्वर में लगा देना ही वास्तविक एकादशी है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों और मस्तिष्क को नियंत्रित रखना चाहिए। किसी को भी इच्छा के संबंध में भयानक विचारों को मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। एकादशी का व्रत महिला एवं पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत में विशेषकर भगवान विष्णु का पूजन और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति, मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि मुर नामक राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए प्रभु ने उन्हें सबसे प्रिय तिथि का वर दिया था। आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति के कारण एकादशी के दिनों में वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है, जो उपवास के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी अत्यंत सहायक होता है। यही कारण है कि एकादशी व्रत में अन्न का भोजन ना करके फल एवं नैवेद्य आदि ग्रहण करना चाहिए। ये व्रत मानसिक शांति, स्थिरता और शारीरिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए इस तिथि को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। एकादशी का अर्थ है शरीर का उपवास और आत्मा का भोज। एकादशी के दिन हम सभी को भक्ति से जुड़े कर्म और

0: भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए।
1: अपरा एकादशी, अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का था। मन की शुद्धि, वाणी की पवित्रता और निःस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सदियों से यही परंपरा रही है। हर मंगल कार्य की शुरुआत होती है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना से। आराधना का आइए शुभारंभ करते हैं एक दंत गजवदन मंगल मूर्ति के पावन नाम से।

माँ की गोद में सारा जग सुकून पाता है। ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

प्रभु का नाम ही शांति और आनंद का स्रोत है। भगवान के भजनों में डूबकर भक्त अपनी हर चिंता भूल जाते हैं। आइए अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में रखें, भगवान का गुणगान करें।

संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। हम जैसी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वो वापस हमारे पास ही आती है।

0: नास्ति। यात्रावधौ प्रतिनिधयः भूटान देशस्य राज्ञा तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा च सह मेलनं करिष्यन्ति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य जनान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानं व्यावहारिक रूपेण प्रवर्तयितुं प्रार्थयत्। अनेन नागरिकेभ्यः इन्धनस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुं अनावश्यकं स्वर्णक्रयणं परिहर्तुं च आग्रहः कृतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्देशं प्रदत्तवान् यत् मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणां अन्ये च जनानां संख्या तत्क्षणमेव 50% यावत् न्यूनीकर्तव्यमिति। असौ प्रार्थयत् यत् राज्ये गृहात् कार्यं कुर्वन्तु इति। महिलानां सुरक्षायै संस्थागत समन्वयं सुदृढीकर्तुं राष्ट्रिय महिला योगेन दिल्ली आरक्षकैः सह एकं उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय महिलायोगस्य अध्यक्षा विजया राहतकर इत्येषा समन्वितस्य पीडित केन्द्रितस्य च दृष्टेः आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवती। एषा अवदत् यत् महिलाभ्यः समयोचित समर्थनं न्यायं च सुनिश्चेतुं गृहहिंसा अधिनियमस्य अन्तर्गतम् आरक्षकयन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणां च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीन देशस्य त्रिदिवसीया यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीन देशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिक सम्बन्धानां अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 82 अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। सुबह के 7 बजे हैं और ये वक्त होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। श्रोताओं, कहते हैं कि हमारा उत्तम स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी भी है। और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है तरह तरह की जानकारियां जो आपके सेहत के लिए लाभप्रद होती हैं। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो शायद अब पहले की तरह आसानी से हर गली मोहल्ले में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके गुण आज भी उतने ही अद्भुत और प्रभावशाली हैं। ये फल है शहतूत। काले बैंगनी या कभी कभी सफेद रंग के छोटे छोटे इस रसीले फल को हम में से बहुतों ने बचपन में पेड़ों से तोड़कर खाया होगा। जीभ और होंठ रंगे होंगे और उसकी खट्टी मीठी मिठास को याद किया होगा। पर शहतूत केवल स्वाद का खेल नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण औषधीय फल है जो शरीर के कई हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शहतूत का पेड़ बहुत ही साधारण सी जमीन में कम देखभाल में भी उग जाता है, परंतु इसके फल में जितने पोषक तत्व होते हैं उतने कई बार बाजार में मिलने वाले चमकदार विदेशी फलों में भी नहीं होते। शहतूत में आयरन, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को भीतर से मजबूती देते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। शहतूत का सबसे पहला और गहरा असर हमारे रक्त यानी खून पर पड़ता है। ये खून को शुद्ध करने में बेहद मददगार होता है। शरीर में यदि किसी कारणवश विषैले तत्व जमा हो जाएं तो शहतूत उन्हें बाहर निकालने में सहायता करता है। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बार बार फोड़े फुंसी

0: त्वचा के दाग धब्बे या पिंपल्स जैसी समस्याओं से जूझते हैं। शहतूत एक प्राकृतिक इलाज की तरह कार्य करता है। इसके अलावा शहतूत का एक और बड़ा लाभ है, वो ये कि ये आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ए होता है जो नेत्र ज्योति को बनाए रखने में सहायक होता है, खास तौर पर आज के समय में जब बच्चों से लेकर बड़ों तक स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और आंखों की थकान आम हो गई है। ऐसे में शहतूत जैसे फलों का सेवन एक सरल और स्वादिष्ट उपाय हो सकता है। शहतूत में प्राकृतिक रूप से उपस्थित शर्करा यानी नेचुरल शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन ब्लड शुगर को असंतुलित नहीं करती। यही कारण है कि मधुमेह से पीड़ित कई लोग डॉक्टर की सलाह लेकर सीमित मात्रा में शहतूत का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। एक और विशेषता जो शहतूत को खास बनाती है वो है उसका प्रभाव मस्तिष्क पर। ये मानसिक तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाने में सहायक होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है या नींद ठीक से नहीं आती है, उनके लिए शहतूत एक प्राकृतिक और मीठा समाधान हो सकता है। ये दिमाग को आराम पहुंचाता है और स्मृति शक्ति को भी सुधारने का काम करता है। शहतूत का रस गले की खराश, खांसी और जुकाम में भी राहत देता है। पुराने समय में जब किसी का गला बैठ जाता था, आवाज भारी हो जाती थी, तो शहतूत के रस को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने की सलाह दी जाती थी। ये गले के अंदर की सूजन को कम करता है और एक कोमल ठंडक प्रदान करता है जो राहत देने का काम करती है। शहतूत को कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बाजारों में ज्यादा नहीं दिखता या दूसरे फलों की तरह विज्ञापनों में नहीं आता, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। ये शांत है, घरेलू है और गुणों से भरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे पेड़ों से इसे तोड़ते हैं और बुजुर्ग इसकी चटनी या शरबत बनाकर गर्मियों की तपिश में राहत पाते हैं। शहतूत को आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर उसका रस, शरबत या हल्का सा जैम बनाकर सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान ये भी रखना चाहिए कि ये फल नाजुक होता है, जल्दी खराब होता है, इसलिए इसे ताज़ा खाना ही सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, अगली बार जब आप किसी बगीचे में जाएं या किसी देहात के हाट में शहतूत दिखे तो उसे अनदेखा न करें। ये छोटा सा फल आपके स्वास्थ्य को अंदर से पोषण देने वाला, आपके खून को साफ करने वाला, आंखों को रोशनी देने वाला और मन को शांति देने वाला फल है। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए रसीला और स्वादिष्ट शहतूत, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। नमस्ते लखनऊ, मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से, और अब समय है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। आज के जिले मेरठ और बाराबंकी। उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की पेशकश के तहत समाअत फरमाइएगा डॉक्टर शरीफुद्दीन का मकाला, जिसका मौजू होगा अमीर मीनाई की गजल या शायरी। इसके अलावा कलाम शायर में सुनिएगा डॉक्टर सरफराज नवाज से उनका ताजा कलाम। कानून की बात कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा शांति एक्ट विषय पर डॉक्टर राकेश चंद्रा से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव।

हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, बदलते समय में बदलते सामाजिक मूल्य। मानसिक स्वास्थ्य और हम सुनिए विविधा सुबह 7:10 पर। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित सी आर व्यास का राग भैरव में।

खयाल गायन और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का राग मालव में गाया खयाल। अच्छे लाल सोनी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। दोपहर 12:00 प्रसारित किया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी हमारी बहनें सुनेंगी दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर संदीप सक्सेना प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग KGMU लखनऊ से की गई भेंटवार्ता, गर्मियों में होने वाले आंखों के विभिन्न रोग, इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगी नीना सोनकर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर यशपाल सिंह से की गई भेंटवार्ता, ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे यूथ आउटरीच इंटरव्यू कार्यक्रम के अंतर्गत येरा मेडिकल कॉलेज में प्रश्नोत्तरी एवं संवाद प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। इसके अलावा आयुषी बताएंगी तहजीब नजाकत और शाही स्वाद का मिश्रण लखनऊ के बारे में। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में प्रगति के पथ क्रम में सुनिएगा एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में ओबी आधारित बातचीत। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुनेंगे हेलो किसान। शाम 6:30 से आज इस कार्यक्रम में विषय होगा जायद फसलों की सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, कृषि विभाग से देय सुविधाएं, खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 KHz पर वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

विविधा के सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन बोझिल हो, दिमाग में तूफान चल रहा हो, नींद उड़ गई हो, तो हम क्या करते हैं? हम यही तो कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई, क्या हमारा मन, हमारा दिमाग शरीर का हिस्सा नहीं है? आपने कभी सोचा है, हम रोज अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, खाना पानी एक्सरसाइज, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करता है, हमारे लिए सोचता है, महसूस करता है, उस मन का ख्याल हम कितनी बार रखते हैं? तो आज की विविधा में बात मानसिक स्वास्थ्य और हम की, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है दोस्तों, अगर मन बीमार है तो जिंदगी की कोई दवा काम नहीं करती। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं थोड़े थके हुए हैं, थोड़े उलझे हैं और कभी कभी बिल्कुल अकेले भी। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पागलपन या बीमारी नहीं होता, बल्कि हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और मुश्किल हालातों से कैसे निपटते हैं, यही मानसिक स्वास्थ्य है, हमारे मन, सोच, भावनाओं और व्यवहार का संतुलन। सवाल ये उठता है कि मानसिक स्वास्थ्य इतना जरूरी क्यों है? जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं, और जब मन भारी हो तो

पूरी दुनिया भी छोटी लगने लगती है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या, आज हर किसी के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी रियल लाइफ को कम समझने लगते हैं। हम कहते नहीं, पर अंदर ही अंदर तुलना, तनाव और डर हमें खाता जाता है। समस्या गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत में स्थिति और भी गंभीर है। हम में से कई मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन असल में त्रासदी ये है कि हम में से केवल कुछ लोग ही मदद लेते हैं, बाकी लोग चुपचाप सहते रहते हैं। अब जैसे कोई 28 साल का युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी भी है, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर से रोज रात को 3 बजे तक नींद नहीं आती, ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, दोस्त बोलते हैं चल यार पार्टी कर लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, मम्मी कहती हैं शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, तो पापा कहते हैं पुरुष होकर रोते हो, हिम्मत रखो, पर कोई ये नहीं कहता बेटा तुम्हें किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। यही है हमारी असली समस्या, जागरूकता की कमी।

मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जहां हम और आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, जीवन के सामान्य तनावों से निपट सकते हैं, उत्पादक तरीके से काम कर सकते हैं, अपने समुदाय में, समूह में, दोस्तों के बीच योगदान दे सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब हमारा दिमाग शांत हो, दिल खुश हो और जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हो, तभी हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और दोस्तों, जब हम मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं तो जानते हैं क्या होता है? लगातार तनाव से एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है। जब आप खुद से परेशान हो तो दूसरों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे? परिवार, दोस्त, पार्टनर, सभी रिश्ते प्रभावित होते हैं। मन नहीं लगता, गलतियां बढ़ती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है।

तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये कि मानसिक स्वास्थ्य को अहम बनाएं, खुद से बात करें, खुद को समझें, हर दिन 10 मिनट अपने साथ बिताएं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। अगर समस्या गंभीर है तो मदद लेने में बिल्कुल ना झिझकें। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे बुखार में हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही मन के लिए भी होते हैं काउंसलर और थेरेपिस्ट।

बस कुछ बातों का रखें ख्याल, जैसे 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और 30 मिनट की वॉक भी हमारे आपके मूड को बेहतर बना सकती है। हमेशा खुश रहें और खाना खाएं तो पौष्टिक, जंक फूड से दूर रहें। आपका खाना आपके मूड को प्रभावित करता है। और सबसे जरूरी, डिजिटल ब्रेक लें, थोड़ा वक्त मोबाइल से दूर रहें, अपने आप के पास समय बिताइए। याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग छुपा लेते हैं और कुछ लोग बोल देते हैं, और बोल देना हीलिंग की शुरुआत है। तो आज से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मन का भी रखिए ख्याल, क्योंकि अगर मन स्वस्थ है तभी खुशहाल जीवन है। तो आज की विविधा में

बस इतना ही। दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली

0: प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कस्ते अरुण।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी ITI संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई।

0: जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: सात सौ 47 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे पंडित CR व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति हमें कार्यक्रम संपन्न करने की। श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का

0: दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों

0: और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर अब हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम यंग बरेली। नमस्कार दोस्तों, जोश जुनून और युवाओं की नई सोच के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। इस प्रोग्राम में बात होगी सपनों की, टैलेंट का जज्बा होगा और शहर के यूथ की दमदार आवाज। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा और एंटरटेनमेंट से भरपूर सफर यंग बरेली के साथ।

साथियों, आज हमारे साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर प्रोग्राम यंग बरेली में एक ऐसे यंग पर्सनैलिटी जिनको हम शीतल शेखर के नाम से जानते हैं। शीतल शेखर से बातचीत हम शुरू करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके द्वारा

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर अनेकों अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनको ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट से दिया गया है और बरेली प्रशासन से दिया गया है। बहुत से अवार्ड हैं, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो लगभग 15 मिनट तो इनके सम्मान जो इनको मिला है उनको बताने में ही लग जाएगा। अब हम जानेंगे शीतल शेखर से, वर्तमान में आप इस विषय पर, इस विधा पर क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम शीतल से ये जानना चाहेंगे कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, पुरस्कार मिले हैं, वो किस लिए मिले? क्या आपने ऐसा क्रिएशन किया जिसकी वजह से आप सम्मान की हकदार बनी? शीतल
1: नमस्कार सर। आपने दुनिया में कई शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग का क्रिएशन चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रिकॉर्ड की शुरुआत दुनिया के सबसे छोटे शिवलिंग से करूं। तो फिर मैंने मूंग दाल पे 6 mm का शिवलिंग बनाया। 1 साल के अंदर ही मैंने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग राई के दाने पर 2 mm का क्रिएट किया, जिस के लिए मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और मुझे कई सम्मान प्राप्त हुए।
0: अच्छा शीतल, जब शिवलिंग की बात आती है तो हमारे देश में, हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ जब व्यक्ति यात्रा करने जाता है, दर्शन करने जाता है, तो बहुत बड़े बड़े शिवलिंग वहाँ होते हैं मंदिरों में। तो जब आपने मूंग की दाल पर, उसके बाद राई का जो दाना है उस पर आपने शिवलिंग बना दिया, तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है आपकी, ये आपके अंदर आई कैसे? मतलब क्या सोचा आपने कि भगवान की भक्ति में मैं ऐसे विलीन हो जाऊं कि बस दुनिया मुझे याद करे? क्या कहेंगे आप?
1: सर क्या बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मम्मी पापा से कि कण कण में ईश्वर है, तो कण कण में शिव भी है। इसी मानसिकता से, इसी विचारधारा से कण कण में शिव है हर जगह। मुझे मतलब वही कण कण में शिव, राय का दाना उठाया उसमें भी शिव दिया, तो शिवलिंग बना दिया सर। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 108, क्योंकि 108 महादेव जी के नाम है, इसलिए 108 शिवलिंग का रिकॉर्ड क्रिएट किया सर।
0: अच्छा शीतल, हम तो बस आपके इस उत्तर पर यही कहेंगे जय हो भोलेनाथ की। अच्छा इसके अलावा आप लिखती भी हैं, सब्जेक्ट को, कंटेंट को कैसे आप एम बनाती हैं, उसका लिखना शुरू कैसे करती हैं, वो भी हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को बताएं।
1: सर मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मदर्स डे आ रहा था, और जब मैं एकांत में जब बैठती हूँ ना तो मेरे दिमाग में कई विचारधाराएं आती हैं, कई शब्द उथल पुथल मचाते हैं, बस कुछ नहीं, मैंने उन शब्दों को एक पेज, कागज़ के पेज पर लिख लिया और फिर वो कविता बन गई, वो आर्टिकल बन गया, और ऐसे ही एक क्रम जुड़ता गया, कारवा बनता गया सर।
0: अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपका क्रिएशन अब हमारे रेडियो से जुड़े जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी जानेंगे। शीतल, आपका जो लिखने का क्रिएशन है, जो लिखने कविताएं आप लिखती हैं, किसी एक कविता की कुछ चंद पंक्तियां अगर आप हमारे लिसनर्स को सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा उनको।
1: हाँ, मैंने अपनी पहली कविता माँ पर लिखी थी और 20,000 कविताओं में से वो कविता चुनी गई थी, तो उसी की कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देती हूँ। कई जन्मों का अनमोल रिश्ता है मेरा, कई जन्मों का अनमोल रिश्ता है मेरा, बड़ी मुद्दत से पाया है तुझे माँ, कितने प्यार के अनमोल मोती तू मुझे है देती माँ, तुझमें ही मैं पली बड़ी।
0: प्यार था, प्रेम था, वो तो स्पष्ट नजर आता है। अच्छा एक बात और, शिक्षा के अंतर्गत BSc किया है जी। और वो भी मैथ से किया है। हाँ। तो कहते हैं, सुनते हैं, फील भी किया है कि मैथ बड़ी हार्ड होती है, बड़ी कठिन होती है, आपने कैसे मैथ से BSc कर लिया?
1: सर बचपन से ही मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मुझे यही पता था मैथ्स के अलावा पढ़ाई ही नहीं होती है, तो मैथ्स को ही खेलते खेलते फॉर्मूलों के साथ आज भी मतलब मैं मैथ्स की ही कोचिंग बच्चों को देती हूँ, कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मैथ्स मेरा कब फेवरेट सब्जेक्ट बन गया और मैथ्स से मैंने BSc कर लिया है।
0: अच्छा शीतल, ये तो मैथ की बात हुई, लेकिन आपके रिज्यूम में, आपके बायोडाटा में ये भी लिखा है कि वर्तमान में आप विधि से जुड़ी हैं, मतलब आप जो हमारी कानून व्यवस्था है

0: आप विधि की छात्रा हैं, तो ये कैसे चेंज आया?
1: सर, आज सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। सर, यूपीएससी का प्री दिया था, वो मेरा नहीं निकला, तो उस जर्नी को जो तैयारी थी तो उसको शिफ्ट करना था, वेस्ट नहीं जाने देना था। तो पीसीएसजे में सिविल जज बनना चाहती हूँ। उसके लिए सर मैंने एलएलबी लॉ का एग्ज़ाम दिया और वो एंट्रेंस निकल गया, तो आज मेरा एलएलबी सेकेंड ईयर चल रहा है और उसके बाद में पीसीएसजे में बैठूंगी।
0: अच्छा शीतल, आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, तो हम आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे, या आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगी कि जिस एम को प्राप्त करना है उसके लिए कितना परिश्रम किया जाए, कैसे परिश्रम किया जाए, या अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम पहुंचाना है तो उसके लिए आज के युवाओं को क्या करना होगा?
1: सर, वैसे सिंपल है, कहते हैं जो ठान लिया वो कर जाता है। और अभी जल्द ही मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी कि सफलता को सिर पर हावी मत होने दीजिए और असफलता को दिल पर। आप जो भी कर रहे हैं लगन से कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हार मत मानिए, आप निराश मत बैठिए। अगर आपने किसी चीज़ को लक्ष्य बनाया है, वो चीज़ तो हो सकता है आपके लिए कुछ दूसरा रास्ता हो, आप बस बढ़ते चलिए, रुकिए मत। अगर आप गिर गए और उठे नहीं तो गलत बात हो जाएगी, बस बढ़ते चलिए।
0: तो शीतल, अंत में आपके लिए हम दो पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। आपकी तरफ से जैसा आपसे बातचीत हुई उससे हमें लगा कि आपकी जो फीलिंग है वो कुछ यूं है कि सूरज हूँ अपनी चमक छोड़ जाऊंगी, डूब भी गई तो क्या हुआ अपनी चमक छोड़ जाऊंगी। धन्यवाद आपका।

साथियों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है और वो धीरे धीरे अपनी उम्र की ओर बढ़ता है, यानी कि जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो कहते हैं कि खेलने की जो उम्र होती है उसमें ही उस बच्चे का भविष्य दिख जाता है। और ऐसे भविष्य को बनाने के लिए आज के ज़माने में तो देखा गया है कि ज़्यादातर गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, बच्चे को गाइड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने आप ही नेचुरली अपना एम सेट कर लेते हैं। और ऐसे ही एक बालक 8 साल के अधिक नाम है इनका, और इन्होंने खेल जगत में जो इनकी उम्र है वो इनके टैलेंट की मोहताज नहीं है, इनका टैलेंट सबसे आगे है। हमारे बरेली शहर के सिंधु नगर कॉलोनी के नन्हे मार्शल आर्ट खिलाड़ी अधिक ने मात्र 8 वर्ष की आयु में अपनी मेहनत और अटूट लगन से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। उन्होंने अब तक 2 बार नेशनल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसमें उन्होंने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। और ये भी बता दें कि इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अब तक कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं, इनमें से 7 स्वर्ण पदक हैं।

कभी कभी दोस्तों कैसा होता है, होता यूं है कि हम कोई भी काम होता है उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं या ये बोल देते हैं कि आप कर लो। उससे होता क्या है कि हमारी जो आइडेंटिटी बनने वाली होती है वो नहीं बन पाती है, हमारा वजूद नहीं बन पाता है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं है हमारे युवाओं के लिए कि वो ना कर पाएं। कहते हैं कि स्वयं से स्वयं को रखें आगे। आज का युवा, आज का नौजवान अगर बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखता है तो वो कोई कार्य नहीं, वो कोई एम नहीं जो उसको पा नहीं सकता। ऐसे में अगर आप नई स्किल सीखकर अपने लिए जॉब्स के अवसर बढ़ाना चाहते हैं या इसके जरिए करियर में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की उपलब्धता से आज बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं। शिक्षा भी इससे अछूता नहीं है। अब आप घर बैठे स्वयं जैसे कई एडुकेटेक प्लेटफॉर्म्स तथा संबंधित यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और अब तो यूनिवर्सिटीज के जो वेबसाइट हैं उससे भी आपको घर बैठे जानकारी मिल जाती है। आप खुद को अपडेट कर अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं बल्कि करियर में भी सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ सकते हैं।

कभी कभी हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ को अपने करियर की शुरुआत करने में बड़ी अड़चनें आती हैं। ऐसे में जो करियर बनाने वाले विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके अनुसार और हम भी आपसे कहना चाहेंगे। फ्रीलांसिंग, वॉलंटियरिंग या छोटे प्रोजेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, करियर की शुरुआत उपयुक्त अवसर से नहीं बल्कि लगातार प्रयास से होती है। जो युवा सीखने के लिए तैयार रहते हैं वही तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं।

तो दोस्तों, अब प्रोग्राम यंग बरेली से आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आज की मुलाकात में बरेली की खुशबू, संगीत की मिठास और बातों का अपनापन आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार के साथ साथ फिर होगी मुलाकात नए अंदाज में। मैं आपका दोस्त संजय अब आपसे मांगता है इजाजत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यंग बरेली। 100.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और अब हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। गायक कलाकार है डोरीलाल गोला, इनकी आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं पहला ये लोकगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashwanibareilly@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली।

0: BAREILLY आकाशवाणी बरेली @gmail.com इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareilly@gmail.com।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
3: साथियों, एक आवश्यक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी नृजातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaaward.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी।

इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये सफर लोकगीतों का यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 9 बजे हैं, बस कुछ ही क्षणों में हम अगला कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम। देवीश्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने की इतनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक, इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी आपने गीत सुना सत्यमेव जयते 2 फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूं या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूं, ये आपको बताने आया हूं। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

दोस्तों, मनहर उदास जानी मानी गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

इस गाने के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: तो हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मनोहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी के दीवाने के अंतर्गत प्रदीप जी को।
2: आज एक बहुत ही खास दिन है, उस आवाज का जन्मदिन जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। ये आकाशवाणी, ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि हम भारतीयों की भावना बन चुके हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं इस महान संस्थान और इसके पीछे के उन अनगिनत कलाकारों, पत्रकारों और तकनीशियनों को बधाई देता हूँ। रेडियो के उस छोटे से बक्से से निकलकर आज डिजिटल दुनिया तक आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का जो सफर तय किया है वह अतुलनीय है। जय हिंद। 90 साल का बेमिसाल सफर, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए आकाशवाणी ने अपने 9 दशक पूरे कर लिए हैं। खेती किसानी से लेकर खेल के मैदान तक और शास्त्रीय संगीत से लेकर मन की बात तक आकाशवाणी हर भारतीय के दिल की धड़कन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। कार्यक्रमों के नाम लेकर उन सभी आकाशवाणी से जुड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहला जो कार्यक्रम आता है हवा महल, बहुत ही लोकप्रिय रेडियो नाटक और प्रसारण है। बिना का गीतमाला फिल्मी गीतों का ऐतिहासिक काउंटडाउन है। मन की बात प्रधानमंत्री जी का संवाद है। किसान बाड़ी कृषि जगत जानकारियां हैं। युववाणी युवाओं के लिए समर्पित मंच है। चौपाल ग्रामीण जीवन और लोक कलाएं हैं। सैनिकों के लिए सरहद पर तैनात जवानों का पसंदीदा प्रोग्राम है। प्यारे दोस्तों, आकाशवाणी का जो मेरे जीवन का लगाव है, मैं आज 49 इयर्स ओल्ड हो चुका हूं, मैं 49 साल का हो गया हूं और 12 जुलाई को पूरे 50 वर्ष का हो जाऊंगा। तो जिनमें मुझे याद है कि मैं 4 दशक से तो खूब अच्छे ढंग से इस आकाशवाणी के साथ जुड़ा हूं और आकाशवाणी से मेरा दिली लगाव है। इसके बिना मेरी सुबह शुरू नहीं होती है। एक सच बताना चाहता हूं, मैं एक समाचार पत्र में रिपोर्टर भी हूं, मैं एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूं, मैं इस व्यस्त जीवन

0: शैली में समाचार वितरक के रूप में भी कार्य करता हूँ, लेकिन मैं जब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठ जाता हूँ, तो प्यारे दोस्तों ये आकाशवाणी मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा हम सफर मुझे अपने साथ जोड़ लेता है और मैं ध्वनि तरंगों से अपने आप को एक ऐसे समूह के साथ जुड़ा पाता हूँ और नई नई जानकारियों का मैं आनंद उठाकर अपना वर्ग पूरा करता हूँ। मैं आवाज की दुनिया के उन दोस्तों को सलाम करता हूँ और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को 90वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आकाशवाणी।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट आकाशवाणी के दीवाने। इस सेगमेंट में प्रदीप जी को

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से अब हम लेकर आ रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद।

10:05 हो चुके हैं। साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां बजेंगे वही मधुर गीत जिन्हें आपने प्यार से चुना है। और मैं हूं आपका दोस्त संजय, लेकर हाजिर हूं सुरो यादों और शानदार नगमों से सजी एक खूबसूरत महफिल। तो तैयार हो जाइए दिल को छू लेने वाले गीतों के इस सफर के लिए, क्योंकि अब बजेगा वही जो आपकी पसंद है।

साथियों, आज सबसे पहला गीत गाइड फिल्म से गाता रहे मेरा दिल सुनना चाहा है रामकुमार रेवाड़ साहब, चंद्रकला रेवाड़, और ये हमारे श्रोता सादुल शहर राजस्थान से। ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लोगना और आलिया अंसारी। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। गढ़ी कोटाहा पंचकूला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, सानिया, मोहम्मद इलियास, मुसाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा उमर और समीना अंसारी। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महाजवी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी और इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई, साथ में है पप्पू भाई अंसारी।

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। साथ ही सुनना चाहे हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन और साथ में इंद्राणी, माया और साहू परिवार के सभी लोग। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नयमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। दूलापुर मुरादाबाद से मोमा फरमान, सलमान इरफान, इसरार, नरगिस खातून। सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवीर, डॉ अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। गांव लोहडटा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश के भेरूलाल बागतरिया, भोला बागतरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक बागतरिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, योगेश निवान, सौरभ, साइना और मेंडी शर्मा। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में है स्वीटी छाबड़ा। तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद, सुनिए और एंजॉय करिए।

यारी है ईमान मेरा। जी हाँ दोस्तों, ये गाना है फिल्म जंजीर। प्रोग्राम आपकी पसंद में सुनने के लिए भेजा है हमारे पास कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। नागपुर महाराष्ट्र के कमल स्वाने, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने,

जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र के शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम और दुर्गेश्वरी। वारसी क्लब सिनोली मीरगंज बरेली के जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। दुबरी हजरत

बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढींगिया साहब, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ज्योतिनगर नौका राजस्थान से, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, हसन सिक्का, घनश्याम भार्गव और बाबूगिरी।

ग्राम पुश्ती वेस्ट बंगाल से निखिल कुमार और उनका पूरा परिवार। हररपुर मटकली बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम और साथ में है डीजे प्रधान। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाप्या, निवेश और नियति कुमारी, ये हमारी श्रोता बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। तो साथियों, भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।

दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अपनी पसंद के, आपकी पसंद के गाने सुनकर झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे। अब थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी ही पसंद। फिल्म है जूली और गाने के बोल हैं भूल गया सब कुछ। सुनना चाहे पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिमी बंगाल से मुन्ना भगत और गुटी भगत। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान और अनु खान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा।

उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज पंकज, प्रिंस प्रशांत और निर्भय गुप्ता। बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। कासगंज उत्तर प्रदेश के पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय, अपूर्वा। महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक मोहम्मद, दानिश।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
4: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
5: एक चाबी है CKYC ID।
4: CKYC मतलब?
5: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
4: वाह, RBI कहता है
5: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
6: और अब साथियों अगला गीत। वैसे आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। अगला गीत सट्टा बाजार फिल्म से हेमंत कुमार और साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी और उनके बहुत सारे शेखावत परिवार के लोग। ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

सार जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। रघुवीर नगर नई दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। एचोरा मिलक रामपुर से दर्पण कुमार सैनी, तौफीक मंसूरी और अफरोज खान। साथी सुनना चाहे निकट गायत्री मंदिर मीरगंज से कल्लू भाई मिस्त्री और उनके बहुत सारे दोस्तों ने। गांव छत्तो मादराणी सिंध से दानिश अयाज़,

बीड महाराष्ट्र से गीतांजलि, आकाश, आकांक्षा और उनके परिवारी लोग, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संगई परिवार, वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ, खट से ललिता, आशा रानी, संजना, परी, आराध्या, गणेश, वैष्णवी और साथ में है देवी चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा और उनके सभी साथी लोग, भोजपुर तगा सहारनपुर से मम इंतजार।

श्री जगन्नाथ धाम पुरी कटक नगरी सीडीए सेक्टर 7 उत्कल प्रदेश ओडिशा हिंदुस्तान से। कितना अच्छा सा इन्होंने एड्रेस लिखा है। सुना चाहे बसंती लक्ष्मी प्रिया रोजालीन श्रद्धांजलि दिव्य चंदन विश्व रंजन और उनके बहुत सारे परिवारी लोगों ने। ग्राम रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के उदयभान पाल जयहिंद पाल दीक्षा प्रतीक्षा बिमलेश दिव्यांश और उनका पूरा बघेल परिवार। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु सागर सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेतराम कैलाश सुनील खुशबू आरोही और स्वाति। पीपापारा पालचुबा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका। फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा। बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ के नारायण लाल साहू कुलबंतीन देवी साहू दीवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। और अब अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार परिवार से जो कि बरेली के रहने वाले हैं बेचे लाल गंगवार गुड्डी देवी प्रशांत देव ज्ञानेंद्र देव इला देवी गंगवार बर्फा देवी सुनील यादव संजय अग्रवाल अश्वनी मौर्य मास्टर विनोद दीक्षित राज महावीर कश्यप रमेश चंद सैनी रॉबिन भाई। फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा विशु विशाल लाड़ी शालिनी टिवांशी आरबी खेड़ा जीवन सिंह और उनका समस्त परिवार। नंगल खेड़ा फागबड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा प्रवीण मुनीश और राहुल शर्मा। गणेशपुर गंज ढूंढवारा एटा उत्तर प्रदेश के एम फारूक शेख शमा परवीन साइमा सरफराज गुलफराज और बेबी मुस्कान। पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका।

गांव खोखराबाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। मदरसा गेट भावपुर मडियाहू जौनपुर से इशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद और अजरा तबस्सुम। बहुत सारे नाम हो गए, गाना सुनवा देते हैं, एंजॉय करिए है।

अगला गीत दोस्त फिल्म से। पसंद है आप लोगों में से कुछ लोगों की। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल दीपिका गाफिया, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। स्मिता रेडियो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार लोकेश और साथ में है वैदेही और अंशिका। अनूपपुर मध्य प्रदेश के जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश के अब्दुल गफार डावर। और सुनना चाहा है इसी गीत को गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू, नितिन, साबन कुमार, सचिन और शक्ति। हजारीबाग झारखंड से बीरेंद्र भगत, मालती भगत। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध, सलोनी संजू, लल्ला चौरसिया, पूजा और पिंकी चौरसिया। बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित, वीर चौरसिया, सुजाता, पंकज, पीहू और दिया कानपुरी। शासीनगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल सपकाल। आंवला बरेली से परमाल सिंह जी, मनोहर सिंह, राम सिंह, सुनील सिंह, मुन्ना अभय, साथ में हैं इनके दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, कार्तिक, पैन्यूली और सुहेल अली। पंजाब से बटिंगखेड़ा, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्भी और बॉय हिमाक्ष। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल नेमी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। मूप का भाटापारा से भिवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के दिशाद हुसैन, फातिमा, वकार, कनीज और हसीना दिशाद। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप और मधुकर येले। श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण और उनके बहुत सारे परिवारी लोग। जसपुर रोड दूल्हापुर मुरादाबाद से महबूब, बेगम साहिबा, मोहम्मद समीर, मोहम्मद वारिस और अलशिफा परवीन। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना से बेनी सिंह, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्य।

व्या रचना ओमवती खनक शगुन सारांश अयांश अदिति वर्मा शिवांश और प्रताप सिंह। बाकरगंज फरीदपुर यहाँ से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम अभिमीत भगवान दे, स्वाति तान्या, सर्वेश कश्यप और उनके सभी मित्र लोग। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण शर्मा, अंजनी प्रहलाद, मुरली और मनहरन माधु वर्मा। भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार। तो अब देरी न करते हुए सुनवा देते हैं आपको आपकी ही पसंद, सुने और इंजॉय करें।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम आपकी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम से विदा लें उससे पहले कहना चाहेंगे, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें मेल भी कर सकते हैं और खतों के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए आप सुनिए प्रोग्राम सबरंग।

ये जो पंजाबी गीत आपने सुना, इसको आवाज़ दी थी बेगम बिल्किस खान ने। एक और प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस गजल के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम सब रंग यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।

0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के

0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
4: हाँ,
5: हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: गर्मी लग रही है।
1: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
2: हाँ चलो ना, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
2: अरे ये क्या गिरा?
1: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
2: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
1: मेरे ही मौसम का एक फल है।
2: दिखाओ ना। अम्मा
1: दे। दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
2: इसका नाम
1: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
2: स्वाद है,
0: पसंद है,
2: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
2: कौन सा फल
1: नहीं समझी?
2: नहीं।
1: अच्छा तो फिर सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम।
2: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा, लाओ
2: अम्मा, लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी

0: योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए।

0: और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब मेरा गांव है, घर कौन? ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
4: उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
4: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
4: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
4: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
4: बिल्कुल ठीक।

0: साथियों,
1: यस सर।
0: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर।
0: कोई शक?
2: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
1: यस सर।
2: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
3: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
3: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
3: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर।
3: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
3: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
2: धीरे धीरे
3: तपे पाओ, बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे।
3: जी सर। कोई भी उठ कर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
3: यस सर। अब हथगोला फेंको।
0: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
4: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
5: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
4: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
5: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
4: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। कुछ ही क्षणों में रिले कर रहे हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
10: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप

हजारों के कैलाशनाथन भूमि को पद और नेता की शपथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कृष्ण राव और भाजपा के ए नमिस्यम भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिजनौर के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मध्य गंगा बैराज के बाएं अफ्लक्स बंध पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रयुक्त सामग्री की जांच द्वारा की जाए, गुणवत्ता में कमी। उन्होंने कहा कि में शामिल है आईपीएल अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान लिया है। आज चैलेंजर में शाम 7:30 बजे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित।

0: निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए, गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और जन सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
1: क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, क्या खाए क्या पिए, हर एक सवाल का एक ही जवाब। FM रेनबो सुनिए, बताया जाता है बढ़िया तरीके से, आपको इंटरटेन भी किया जाता है ना। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कैसा भी आपका माइंड हो, बस आप FM रेनबो सुनते रहिए। और इस वक्त बारह शालिनी आ चुकी रूपा में, खास पता है ना आपको, आज है बुधवार, तो आज पटी करते ही लेकिन आज कौन सा ध्यान रखने वाले हैं आपका? कोई हम चटपटी वाली डिशेस के बारे में आज नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपसे आपके सेहत को ध्यान देते हुए। जी आज कौन सेहत की नहीं है, गर्मी की है, तो इस आज खाने की नहीं सिर्फ पीने की बात करेंगे, यानी कि घर बनाएं और क्यों पिए ये भी आपको हम बताएंगे। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कहते ना कि कागज कलम दावत ला, और कागज पे ही लिखना, दिल पर कुछ नहीं लिखना है आपको। अच्छे हैं आपको सुनकर ही हमारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, याद रह जाएंगी। आज जो बात हम एक एक्सपर्ट भी हैं जिस आपको

हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: दोस्तों, जब हम सुकून में होते हैं और इस तरह से मीठी सी आवाज म्यूजिक हमारे कानों में आती है, कितना सुकून मिलता है ना। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को, जिसमें हम बात करेंगे आज सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में है, और हमें बताने वाली है ये घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिए, ये बहुत खास बात है। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आकाशवाणी में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं विद्या प्रिया, मैं KGMU में सीनियर डाइटिशियन के पद पर कार्यरत हूँ।
0: मैम, गर्मियों में घर के बने जो ड्रिंक्स होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, जो बाजार के पेय पदार्थ होते हैं, उनसे बेहतर कैसे होते हैं? वैसे सबको पता है कि घर में ही आप हर एक चीज बना के खाइए पीजिए, लेकिन फिर भी लोग बाहर का खाते पीते हैं, तो जब आप कुछ बताएंगे ना तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा।
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो बाजार के ड्रिंक से घर का बना जो ड्रिंक होता है वो उससे बहुत बेहतर होता है। इसके कई कारण हैं। एक तो इसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है, आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं होते हैं, शुगर, अतिरिक्त शुगर नहीं यूज होता है, तो और इसके अलावा ये हमारा कूलिंग इफेक्ट देता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, तो और शुगर को भी कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हमारी, और इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
0: अच्छा, घर में ही मौजूद जो चीजें होती हैं उनसे क्या हम हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं? मतलब ड्रिंक तो बना ही सकते हैं, पेय पदार्थ कोई भी, लेकिन वो हेल्दी हो, इसके बारे में बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है। आपके हर किचन में जो है आपको आम मिल जाएगा, इस समय आम का सीजन है, कच्चा आम मिल जाएगा, आपको पुदीना मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, दही मिल जाएगा जिसका आप छाछ बना सकते हैं, सत्तू मिल सकता है जो कि बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आपको आपके आपके ही किचन में प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आप बहुत हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं।
0: मैम, जैसे आपने बताया कि नींबू तो घर में मिल ही जाएगा और नींबू पानी हम सभी पीते भी हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो पुदीना आपने बताया ना, तो क्या नींबू पानी में पुदीना मिलाने से कुछ ज्यादा फायदा होता है या कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलता है हम सबको?
1: जी, नींबू पानी, जैसे आप नींबू पानी सिकंजी बना सकते हैं, जिसमें जो है नींबू आपका, उसमें आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। नींबू क्या है, आपका विटामिन सी रिच होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और पुदीने की बात करें अगर, तो पुदीना जो है वो आयरन से भरपूर होता है, तो दूसरा ये गैस, अपच, एसिडिटी, इन सारी चीजों से भी हमें राहत दिलाता है, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक है।
0: अच्छा मैम, इसे बनाने का जो सही तरीका है वो बता दीजिए, और हम कैसे बनाएं ताकि इसके अंदर के जो पोषक तत्व है ना वो बरकरार रहे।
1: जी हाँ, ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। इसको बनाने का सही तरीका ये है कि कभी भी ना तो गर्म हो ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर लेना।

0: चाहिए जिससे उसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो नष्ट ना हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर लें, उसमें आप जो है आप शुगर या शुगर की जगह जो है आप गुड़ शहद ऐड करें तो और भी अच्छा रहेगा, और पुदीनों को निचोड़ के उसको उसमें ऐड करके उसको आप बाद में कूल कर सकते हैं।
1: मैम जैसे कि बताया ना कि शुगर की जगह यानी कि चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, तो इन दोनों में सबसे बेहतर क्या चीज़ है?
0: बिल्कुल बेहतर माना जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग शुगर ही यूज करते हैं। जो सिंपल शुगर होता है वो एम्प्टी कैलोरी होता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, तो इसकी जगह अगर आप शहद और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मिनरल से भरपूर होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि शुगर सिंपल शुगर के।
1: 12:15 और 15 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, बात हो रही है सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से हो रही है, और इनसे हम जान रहे हैं कि कैसे हम घर में हेल्दी ड्रिंक बनाएं और क्यों बनाएं और क्यों पिए ये सारी चीज़ें। और अभी आपने नींबू पानी के साथ में पुदीने की बात जान ली है, और अब आ रही है छोटे से गाने की, और उसके बाद हम करेंगे ढेर सारी बातें।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत था ये, नायक फिल्म का था और जो ये पिक्चराइज किया गया है ना, खेत के अंदर प्याज और रोटी का स्वाद, क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे, लेकिन वापस आते हैं हम गर्मी पे। और जब गर्मी की बात करेंगे तो पानी की, पीने की, ठंडी चीज़ों की बात खुद ब खुद हो जाएगी। तो अभी हमने जाना सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कि नींबू पानी के साथ पुदीना ऐड कर सकते हैं तो क्या फायदे होंगे, और अब हम जानेंगे छाछ के बारे में। ये वाला छाछ नहीं है कि बिल्ली जब दूध से जल जाती है तो छाछ भी फूक फूक कर पीती है, बहुत मशहूर मुहावरा है ना लेकिन ये वो वाला छाछ है जिसे मॉर्निंग में हम पीते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। कई सारे फायदे हैं इसके, और क्या फायदा है इसमें और क्या हम ऐड ऑन कर लें जो इसका फायदा और बढ़ जाएगा, ये हम जानेंगे सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से। तो मैम, छाछ में भुना जीरा डालने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन में कैसे हेल्प मिलती है, इसके बारे में बताइए जरा।
1: जी शालिनी जी, हम जैसे कि आपने कहा कि छाछ अपने आप में बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन में बेहतर होते हैं, डाइजेशन को आपके बेहतर इम्प्रूव करते हैं। इसमें अगर आप भुना जीरा मिला लेते हैं तो भुना जीरा जो है ये वो क्या करता है, गैस अपच ये सारी चीजों को कम करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है, तो इससे आपका पाचन बेहतर होता है, तो इसलिए छाछ में भुना जीरा मिलाना बहुत अच्छा ऑप्शन है।
0: अच्छा मैम, ये छाछ किस समय पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ना, सबका समय अलग होता है, कुछ चीजें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, कुछ आफ्टरनून में, कुछ इवनिंग में, तो आप इस छाछ हम किस समय पिए?
1: वैसे तो आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन जो है खाना खाने के बाद पीने से डाइजेशन, जो भी आपने खाना खाया वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जो है आपको हाइड्रेशन भी, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होंगे, हाइड्रेशन बेहतर रहेगा।
0: क्या जो छाछ है ना, अगर हम रोज पियेंगे तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा, मतलब गर्मी कम लगेगी, ऐसा कुछ है?
1: जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, रोज जो है आप 1 से 2 ग्लास छाछ पी सकते हैं जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारे जो स्वेटिंग वगैरह क्योंकि बहुत ज्यादा होती है गर्मियों के सीजन में, तो उसके जो है उसके साइड इफेक्ट से हमें बचाता है, और जैसा कि बताया मैंने पाचन को तो बेहतर करता ही है, तो 1 से 2 गिलास छाछ आप रोज ले सकते हैं।
0: तो दोस्तों नींबू पानी की

0: बात हो गई, छाछ की बात हो गई, और आप बातें हैं एक ऐसी बात पर जिसे जिसकी बात किए बिना हम गर्मियों में रह ही नहीं सकते। हाँ, लगाइए, तुक्का लगाइए जरा, क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, आम का पन्ना। जी हाँ, और ये बहुत आसान रेसिपी है, घर में बनाते हैं सब लोग। इससे हमें लू से बचाओ कैसे ये हमारी करता है, इसे स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें भी अभी हम जानने वाले हैं। किससे? अपने सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया मैम से। और मैम, आम पना बनाने की आसान घरेलू रेसिपी क्या है, थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत ही आसान है, जिसको हर महिला या हर बुजुर्ग या बच्चे भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। और
0: हाँ
1: जैसे कि कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं और काला नमक मिलाएं और पुदीना, और थोड़ा थोड़ा करके अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ भी मिला सकते हैं। और इसको पानी डाल के फिर इसको आप रख सकते हैं और पी सकते हैं 1-2 दिन तक फ्रिज में रख के। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है, जैसे कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं जो कि गैस एसिडिटी से आपको बचाएगा,
0: जी
1: और काला नमक डाइजेशन को बेहतर करेगा, पुदीना जो कि आपको कब्ज वगैरह से भी राहत दिलाएगा, आयरन से भरपूर होता है, और थोड़ा एनर्जी के लिए आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा।
0: अच्छा मैम, ये लू से कैसे बचाता है हमें, उससे बचाने में हमारी हेल्प कैसे करता है?
1: आम पना जैसे कि बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसमें ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, शरीर को कूल करता है, और जो भी पसीना हो रहा है उससे हमारे जो स्वेटिंग हो रही है तो हमारे शरीर का पानी बाहर निकल रहा है, तो इससे हमारे कूलिंग इफेक्ट को बनाए रखता है, हाइड्रेट रखता है। इस तरह से आपको जो है वो लू से बचाता है आपको।
0: मैम अभी आपने बताया इसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, तो इसे स्टोर कैसे रखा जा सकता है, कितने दिनों तक, जरा एक बार फिर से बता दीजिए।
1: जी, इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं।
0: दोस्तों 12:26 और 45 सेकेंड हो चले हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, और नींबू पानी से हमें ये प्यारा सा ट्रैक याद आ गया है, तो बस सुनिए और इंजॉय कीजिए।

12:33 का वक्त शत्रुपा में आज बात हो रही है घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिएं। और एक्सपर्ट है हमारे साथ सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। हम बात कर चुके हैं नींबू पानी प्लस पुदीना की, छाछ प्लस भुना जीरा की और आम पन्ना की। और दो चीजें अभी भी रह गई हैं बात करने के लिए, बताइए तो क्या, जो बहुत खास होती हैं, बाहर से भी आपको मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं बिना कोई ज्यादा मेहनत किए तो जो पीने का फायदा है ना, वो दो गुना हो जाता है।

0: बाहर से भी आपको मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं बिना कोई ज्यादा मेहनत किए तो जो पीने का फायदा है ना वो दोगुना हो जाता है। क्या है वो चीज? बेल। जी हाँ, बेल का शरबत कितना अच्छा होता है ना। जब हम बात करते तो बस मन करता है आहा मिल जाए और दो तीन ग्लास पी लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। तो बेल का शरबत जो है उसके बनाने की जो सही विधि वो क्या है वो हमें बताएंगी विद्याप्रिया मैम।
1: जी, बेल का शरबत जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे डायरिया में भी आपको हेल्प करता है, कब्ज को दूर करता है, एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारी है और आपके आंतों को शांत करता है। तो इसके बनाने की विधि बहुत ही आसान है। बेल को तोड़ लें, उसका गूदा निकालें, उसको पानी में मिक्स कर लें, उसके बीज वगैरह को छान लें अच्छे से, फिर उसमें आप अपनी स्वाद अनुसार गुड़ और काला नमक मिलाकर ले सकते हैं।
0: तो दोस्तों अब तो इतना करना ही पड़ेगा कि भाई गूदा निकालना है, उसे पानी में मिक्स करना है, छानना है, बीज उसके निकाल लेने हैं। कितना ही देर लगेगी? इतनी ही देर लगेगी जितनी हम बाहर के पेय पदार्थ लेने में लगाते हैं ना भाई, उसको ऑर्डर करते हैं तब वो बनाते हैं तब हमें देते हैं, उतना ही टाइम घर पे लगेगा। तो थोड़ा सा अपने लिए समय जरूर निकालें। मैम, जैसा कि आपने कहा कि पेट की समस्याओं से ये हम काफी असरदार होता है, ये कितना असरदार होता है पेट की समस्याओं से संबंधित?
1: जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कब्ज में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो फाइबर डाइजेशन को भी बेहतर करता है और जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको भी डायरिया या जो इनको कब्ज है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो बेल के शरबत को अपने डाइट में शामिल करें, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और विटामिन सी से भरपूर होता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी।
0: और दोस्तों इतनी गर्मी में हमें क्या चाहिए? हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ना पड़े, नहीं तो कई सारी बीमारियां हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं हम पर अटैक करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है? उनको दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं, कितने हेल्दी हैं।

0: और हमारा इश्क आपसे है 12:41:45 का वक्त हो चला है। समय की सुइयों पर ध्यान दे दीजिए, कहीं कोई काम आपका रुका है या आपको करना था, तो बार बार जो समय हम बताते हैं उसी का रिमाइंडर देते हैं कि एक बार ध्यान दे लीजिए। दोस्तों, नींबू पानी की बात, छाछ की, आम पना की, बेल के शरबत की बात हो गई, और जो सबसे अहम बात है वो अभी बाकी है, सत्तू का शरबत। जी हाँ, जो कि सत्तू भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, और उसके बाद उसको आप किसी भी तरीके से, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं। सत्तू ऐसे ही घोलकर खा सकते हैं, नमक के साथ खा सकते हैं, शक्कर के साथ खा सकते हैं, और चटनी के साथ खा सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, उसके लड्डू भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और सब कुछ बिना किसी देरी के, है ना। इतनी सारी चीज़ें पता थी हमें, आपको भी पता है, लेकिन मैम क्या बताने वाली हैं वो जानना है कि जो सत्तू का ड्रिंक है वो कैसे बनाएं, मीठा और नमकीन दोनों का हो सकता है, आप जैसे बनाते हो, मैम के बताने का तरीका अलग हो। जो कि कौन है मैम हमारे साथ, सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से।
1: ये सत्तू तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बिहार पटना पूरब साइड में बहुत ही ज्यादा इसका गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। क्योंकि चने का सत्तू है तो वो हाई प्रोटीन होता है, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सत्तू को आप पानी के साथ मिक्स करें, उसको अगर मीठा बनाना है तो आप उसमें गुड़ मिक्स कर सकते हैं या शहद मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, और इससे आपको लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, तो आपको एनर्जेटिक महसूस करेंगे दिन भर, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहेगा।
0: जैसे आपने मैम ऊर्जा की बात की ना, ये तुरंत ऊर्जा देने में कैसे काम करता है, इसके बारे में भी बताएं।

0: हेल्थ एनर्जी के लिए मैंने जैसा कि बताया आपको इसमें गुड़ मिला सकते हैं या शहद, क्योंकि इसमें जो है आपको एनर्जी मिलेगी और सत्तू जो है वो प्रोटीन का सोर्स होता है और ये स्लो डाइजेशन होता है, तो आपको दिन भर जो है पेट भरा महसूस होगा और जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपको किसी तरह का लू नहीं लगेगी।
1: इतने सारे ड्रिंक के बारे में बात हो चुकी है तो बस एक और चीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि जो घरेलू ड्रिंक है उन्हें पीने से शरीर को क्या मुख्य फायदे मिलते हैं?
0: इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला यही है कि हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, कूल रखता है और डाइजेशन को सुधारता है और इम्यूनिटी जो कि जो है जैसा कि बताया विटामिन सी से भरपूर होता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी और एनर्जी तो आपको मिलती ही है इससे और हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे हैं इसमें।
1: मैम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या इसके भी ड्रिंक्स के भी दो पहलू यानी कि नुकसान क्या हो सकते हैं घर के बने ड्रिंक को पीने से अगर ज्यादा पिया जाए तो?
0: जी देखिए, जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसानदेह होती है। अगर बहुत फायदेमंद चीज है वो भी नुकसान करेगी, अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी भी पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो एक लिमिट में एक पोर्शन साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ही लें। जैसे कि अगर बीपी का पेशेंट है तो नमक बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसका बीपी बढ़ सकता है। अगर शुगर का पेशेंट है तो बहुत ज्यादा अगर उसने मिठास डाल दी उसमें तो उसका शुगर बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देकर संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें।
1: और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और अभी तो मई का ही महीना है, अभी बाकी जो जून का महीना है वो तो बाकी ही है, लेकिन अगर आप अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे ना तो गर्मी आपको कम महसूस होगी, इस बात की है गारंटी। उसके लिए क्या करना है, बस सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 12:52 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब ज़्यादा समय इस प्रोग्राम के लिए नहीं बचा है, लेकिन जो भी समय बचा है उसमें हम अपनी सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कुछ चीज़ें और जानना चाहेंगे। मैम, अगर किसी को रोज़ सिर्फ दो ड्रिंक चुनने की बात की जाए कि वो दो ड्रिंक पियेंगे तो वो कौन सी होंगी, इसमें थोड़ी सी हेल्प करिए प्लीज़।
1: जी, दो सबसे जो है जो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है, जो कि आपको हैवीनेस भी नहीं लाता है, आप बहुत लाइट फील कराता है और एनर्जी भी मिलती है। तो पहला आप छाछ सबसे अच्छा होता है, जो खाना खाने के बाद आप लेते हैं, उसमें भुना जीरा काला नमक डाल के, तो डाइजेशन भी बेहतर करेगा और आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी मिलेगी और आपको हाइड्रेट भी रखेगा। दूसरा है आप नींबू पानी, उसको सिकंजी बना के भी ले सकते हैं, या नींबू पानी में जो है पुदीना या जीरा इस तरह से मिला के ले सकते हैं। तो ये दोनों ड्रिंक जो है वो हर किसी को ले लेना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं है।
0: मैम, अब वक्त कह रहा है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के लिए आपका एक आसान समर हेल्थ टिप क्या होगा?
1: सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना है और 1 से 2 गिलास आपको कोई भी मतलब ये हेल्थ ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे छाछ है, मट्ठा है या सत्तू है, इस टाइप की चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें और घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खा के निकलें, खाली पेट घर से ना निकलें, नहीं तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी दी और उम्मीद है दोस्तों कि नींबू पानी प्लस पुदीना छाछ भुना जीरा और आम पना बेल का शरबत सत्तू का शरबत, ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शन में, आप इनमें से कोई दो तो आप अपनी दिनचर्या में शामिल ही करेंगे जब तक गर्मी कम ना हो जाए और हैबिट में डाल लीजिए। और शुरुआती तौर पे जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तो एक दो दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जब लगातार करते रहते हैं ना तो खुद से हैबिट पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, अच्छी वाली हैबिट्स डालनी हैं, जब हम अच्छे बनेंगे तो अब हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और पहले से दिमाग में ये नहीं लाना है कि अरे ये सत्तू तो बच्चे खाएंगे नहीं। भाई आप देखिए उनका टेस्ट कैसे है, मीठा पसंद कर रहे हैं, नमकीन पसंद कर रहे हैं।

खेल खेल में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बस एक माँ ऐसा काम कर सकती है, और इस काम को करने में मौसी बुआ और दादी और नानी भी पीछे नहीं है ना। बच्चों को हंसी हंसी में या पेट भरा जरूर देती हैं उनका। तो चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात, आपकी ही बात हम आप तक ही पहुंचाएंगे। और आज जब दादा दादी नाना नानी की बात हो ही गई है, तो आप बताइए तो ज़रा, गर्मियां शुरू होते ही हम लोगों को दादा दादी नाना नानी के घर याद आ जाते थे और हम वहाँ चले जाते थे, तो क्या आज भी है? आप याद करते हैं? अगर याद करते हैं तो क्यों, क्या खास है बात उन यादों में? बस ये हमें आपको मेल करना है। 100 मेल किस पे करना है? FM मेल आईडी हमारी कौन सी है आपको याद है ना? FM रेनबो लखनऊ, FM आकाशवाणी या रेनबो लखनऊ कौन सी है बताइए तो ज़रा, याद है ना आपको? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे आपको मेल करना है। हमारा साथ ऐसे ही देते रहना है, सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

104 मेगाहर्ट्ज पर। एक बज चुका है और आपको इंतजार होगा पसंदीदा प्रोग्राम अनुरोध गीत का। साथियों नमस्कार, आज मौसम कभी यहां कभी वहां कभी कहां कहां, आज मौसम ने अजीब सा रंग दिखाया है। अभी कुछ समय पहले तक मान लेते हैं एक घंटा पहले तक बहुत सारा जो मौसम का मिजाज था वो बड़ा रंगीन था। दिन में ही अंधेरा सा हो गया था और बारिश की बूंदें टप टप करके बरस रही थी, साथ ही आंधी और तूफान का वो नजारा कुछ कुछ डरा भी रहा था। लेकिन अब मौसम खुल चुका है। बहरहाल हमारे आकाशवाणी के आसपास का जो मौसम है वो तो खुल चुका है और सनलाइट आ रही है। वैसे हम आगे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर आप लोगों के साथ में। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाने से पहले कि जब रिमझिम फुहारे पड़ती हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है। कहीं तेज हवाएं होती हैं, कहीं आंधी का लव मौसम रोमांचित करता है और ऐसे मौसम में हमारी यादें भी भीग जाती हैं और उस समय हमारा दिल पुराने गीतों को ढूंढता है। ऐसे ही कुछ आज विशेष गीत हम आपको लेकर आ रहे हैं, आ गए हैं। पहला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र और साथियों की आवाजें। सुना चाहे औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राजेश और राशि। उड़ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार और अबजाल। पीएसी नकटिया से तारा चंद्र और बबली। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिशात, मुस्तकीम और तबस्सुम। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गभ्याणकर, सरिता, प्रिंस, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गभ्याणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणेता। साथ ही सुनना चाहे है बंडू लोहार, पोपलगट माया, सुभाष चंद्रकला, देवीदास। ये हमारे श्रोता तालुका नेवासा खुपटी महाराष्ट्र के। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना और उनके बहुत सारे परिवारी लोग। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो साहब, ये हमारे श्रोता थे जनकपुरी सहारनपुर से। और अब मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और सुरलकर परिवार के सभी लोग। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी, करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, कनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य।

सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और आरब साथ में अर्पिता। गुन्नौर यूपी के फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा। और साथ में सुनना चाहे गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, बबीता, रेखा, नंदनी, शोभा, ललिता, आशा रानी, नारायण खट से और उनके बहुत सारे मिलने वाले। ग्राम रजौनी महोबा बुंदेलखंड के उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, बिमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार के सभी लोग। चलिए सुनवा देते हैं आपको आपके अनुरोध पर फिल्म मौसम का वो गीत, जिसे आवाज दी है भूपेंद्र और साथियों ने।

प्रोग्राम का अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में दिल विल प्यार व्यार। गाना है तेरे बिना जिंदगी से। सुना जाए पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश के मोहम्मद सादिक मुस्ताक मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री रमेश कौड़ मोहम्मद शादाब खत्री। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। भाटापारा दत्रेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। गुल बालोद तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के विक्रम मालवीय रचना कमलाबाई वन देवी आकाश महेश्वरी विनायक और समस्त मालवीय परिवार। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाडो कोयल

एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। ग्राम करेली बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद अंसारी, मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

पल पल दिल के पास। जी हाँ दोस्तों, ये गाना किशोर कुमार साथियों की आवाजों में। गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन मौसम क्या कह रहा है, कहीं बारिश कहीं ओले कहीं आंधी, ये हम लोगों के हमारे आपके सभी के सुनने वालों के एक आशीर्वाद तो मौसम का हमारे ऊपर नहीं है, सोचना पड़ेगा। वैसे मौसम हमेशा दिल के पास ही रहता है। फिल्म ब्लैकमेल है, सुनना चाहे ककराला बदायूं के मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, कर्मवीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव, मोहल्ला हलवैयान, शेरकोट, बिजनौर के मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा, हिना खौसल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ, कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन पलक, करण और साथ में निहारिका

और ऐसे में कोई चिंगारी भड़के तो क्यों ना व्यक्ति रोमांचित हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमर प्रेम के उस गाने की जिसे आवाज दी है किशोर कुमार साहब ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुकला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत। गंज डुंडवारा से मुनब्बर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, सूफिया, अफसाना बेगम, महजबी और उनके सभी परिवारी लोग। गंज डुंडवारा से ही मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी। श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर, गुरुमन। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह और बैंकुवर कनाडा से रॉबिन सिंह। मध्य प्रदेश के कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप, नरेंद्र और उनके सभी परिवारीजन। गुलड़िया नाभगंज बरेली के राजेन गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर गंगवार, साथ में सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू, बेतपाल और संजीव गंगवार।

चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति।

वैसे तो बारिश रुक चुकी है, लेकिन जब बारिश हुई थी, आंधी आई थी, तो उस समय की जो ठंडक है वो एक सिरहन पैदा कर देती है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। एनीवे, गीत आपको भेजते हैं, आपके रेडियो सेट पर सुनिए और एंजॉय करिए।

जैसे दोस्तों मौसम बदल चुका है, वैसे ही स्टूडियो में भी परिवर्तन की आशा की किरण आ गई है। हम बात कर रहे हैं 2 बजे से आपके साथ होंगे शीशपाल जी। जब हवाएं चली थी, जब बारिश की बूंदें गिरी थी, उस बीच सुरों का जो संगम हम आपके और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में जो शुरू हुआ था, वो एक अजीब या अजीब सा आनंद देता है, एक अजीब सा एहसास देता है। सामने हमारे बैठे हैं सत्या जी भी, कार्यक्रम आप लोग को तक जो हम पहुंचा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सत्या जी का भी। कुछ ना कहो, सत्या जी शायद ये भूल रहे होंगे, दूर से इशारा कर रहे हैं, कुछ ना कहो। हम बात कर रहे हैं गाने की जो अब हम आपको सुनवाएंगे। 1942 है लव स्टोरी फिल्म का ये गाना। सुना चाहे है गांव लोहडड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडके, नंदा हनुमान और उनके बहुत सारे साथी। करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ और उनके परिवार के लोग।

शिषपाल जी मेरे साथ ही बैठे हैं। इनके ऊपर एक टाइटल सॉन्ग या टाइटल लाइन बोल सकते हैं, वो फिट होती है, वो ये तुम आ गए हो नूर आ गया है। साथियों, मौसम चाहे जितना बदले, अच्छे गीत हमेशा दिल के मौसम को खुशनुमा बना देते हैं। अब हम जो गाना सुनवा रहे हैं, आंधी फिल्म का गीत है, तुम आ गए हो। जी हाँ, हम गाने की बात भी कर लेते हैं आपसे। सुनना चाहे गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैसर अजीम सलीम नवेद और शमसी परिवार के सभी लोग। छावनी अशरफ खां होली चौक मंदिर के सामने बरेली से राम प्रसाद शर्मा फजलुद्दीन, वंदना मनोरमा अजय विनोद और उनके बहुत सारे परिवार के लोग। प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा और राहुल। साथ ही हैं ज्योति अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा बदायूं के सोमेंद्र यादव, आनंद अमन, अंकिता अनीता, सूरज श्री यादव, पुष्पेंद्र सनोज, सोनी विनीता और सुनीता। साथियों, कितना अच्छा लगता है जब एक ही तरन्नुम में एक ही तरीके के नाम होते हैं, पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। और आनंद आपको अब आएगा क्योंकि आपके अनुरोध पर फिल्म आंधी का वो गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं जिसे आप सुनना पसंद करते हैं।

आज के प्रोग्राम में हम तैयारी की थी एकदम करंट सिचुएशन पर कि मौसम चेंज हो रहा है, उसको आधार बना के प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया। कहते हैं ना कि बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। बहरहाल चलते हैं अंतिम गीत की ओर, जो प्रोग्राम अनुरोध गीत को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर। फिल्म है जुर्म, कुमार सानू और साथियों की आवाजें। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका, अनिष्का, तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां। और साथियों गाने के जो बोल हैं वो भी आपको बता देते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जैसे आज मौसम ने हमारी बात बिगाड़ दी, ऐसे ही गाना हम आप तक भेज रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत संजय कुमार जी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हमने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गजल।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गजल, कव्वाली, लोकगीत। तो साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीत, जिसको स्वर दिया है सपना शर्मा ने।

श्रोताओं, इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज, फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवा निवृत्त केंद्र

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा,
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
2: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
2: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
2: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं ना।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
2: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
2: है। इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
2: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
2: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना?
1: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर
2: से आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
2: इसलिए हमें संतुलन रखना है ना,
1: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
2: बिल्कुल आनंद है,
1: संतुलन जरूरी है,
2: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और

0: ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी वो,
0: कितनी
1: है ना।
0: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: और सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए।

0: एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ
0: साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है! और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना?
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
0: जी
1: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितनी

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और मतलब यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है, तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ,
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ,
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार है,
1: इतनी, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते हैं।
0: गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई तुम थिरक
1: मंजरी
0: रही थी इस गाने में, है ना।
1: जब
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो
0: हाँ
1: हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
0: भाई
1: पायल
0: मैं
1: बजने
0: देख
1: लगती
0: रही
1: है।
0: थी।
1: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
0: बहुत सारे हमारे
1: हमारे, अच्छा
0: साथियों
1: एक
0: ने।
1: साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होत रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भर कर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
0: और
1: है
0: अब
1: ना।
0: लेते हैं एक
1: अंतराल,
0: ब्रेक।

0: दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, बहुत
1: और
0: सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
0: नहीं,
1: ऐसा
0: देखिए
1: लग रहा था।
0: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
1: बिल्कुल।
0: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम, अमरूद खाते थे,
1: हाँ,
0: बेर
1: सारे
0: खाते
1: फल।
0: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद
1: अरे,
0: होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे
0: खाया
1: मतलब
0: जाता
1: खाया
0: है।
1: जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
0: जी।
1: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे
0: पढ़ने
1: मैंने
0: में
1: आपका
0: दिक्कत
1: पढ़
0: नहीं
1: लिया।
0: आती है
1: हाँ,
0: ना।
1: वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है,
0: जी,
1: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
0: एक हमारे
1: दिक्कत नहीं।
0: साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के

0: खाएंगे खाना। तो ये
1: हम्म,
0: बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत, सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियट कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियट के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं।

0: ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: लेकिन
1: ना,
0: इसमें मजा आता है, जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया
0: हाँ,
1: कि हाँ हमने गलती कर ली,
0: हाँ तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: भी दिक्कत है,
1: आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी
1: एक
0: आपने।
1: हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुन ले, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा
0: बच्चे बड़े
1: लगता
0: खुश हो
1: है।
0: जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस
1: बिल्कुल
0: तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना
1: बिल्कुल
0: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी गिरगांव जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
1: क्या
0: एक मैं
1: बात।
0: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
1: क्या
0: बारीक
1: बात
0: बारीक
1: है।
0: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट

0: मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
1: क्या बात
0: और ये
1: है।
0: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए,
1: हाँ
0: यानी
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी,
0: बदले हम
1: हाँ
0: शकरकंद
1: शक्करकंद,
0: का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं,
1: अच्छी सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
0: गीत
1: कमेंट्स पढ़ोगी?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो
0: खाने की चीजों से,
1: हमारे
0: भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे
1: साथ
0: कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये
1: एक्स्ट्रा
0: सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज।
0: और

0: कभी कभी बनाते भी नहीं है, वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मच्छी लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
0: सचमुच
1: हमारे
0: इंदौर
1: देश
0: बार
1: में
0: बार जाने को
1: जी।
0: जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, और वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
0: और
1: है
0: खूब
1: ना।
0: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
1: बिल्कुल
0: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
0: और
1: है
0: आप
1: ना।
0: सभी को सोनाली पाठक
1: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने।

0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम, और इसमें आकाशवाणी के दीवाने में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी की दीवानी माधुरी कश्यप को।
1: नमस्कार, मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयाँ पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए, तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना। हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था, और जब हम थाने में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन गीत छंद ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी, ताकि क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे, और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती है, वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा एक, आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं, तब जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम, तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज

0: पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल एफएम नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ही सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है, तो उनकी आवाजें, उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही तरक्की करता है आकाशवाणी, और बहुत सारी
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी की दीवानी माधुरी कश्यप को। ये था कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने, जो प्रस्तुत किया जा रहा है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
3: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम एक विषय पर बातचीत करते हैं आप सभी श्रोताओं से और जानते हैं आपके विचार। तो हमारा आज का विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, वो है कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है। इस विषय पर आपसे जानेंगे आपके विचार और देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं अंशिका बोल रही हूँ,
0: बदायूं से। अंशिका जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं ठीक हूँ, और आकाशवाणी में सब कैसे हैं?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं। अंशिका जी, आपको बता देते हैं आज का हमारा विषय है कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है। तो आप हमें और हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि आपकी इस विषय पर क्या राय है।
1: मैं इस विषय पे कहना चाहूंगी, पहले तो ये मौसम चेंज हो रहा है, इसमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पल पल बदलते मौसम में हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब मौसम बदलता है और बार बार ऐसे बदलाव आते हैं तो कई बार बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मौसम में कभी बारिश है कभी आंधी है कभी धूप है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: मैं पिज़्ज़ा मूवी का गीत सुनना चाहूंगी, मैं नाचू बिन पायल घुंघरू टूट गए तो क्या।
0: ठीक है अंशिका जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी पूरे आकाशवाणी परिवार को सादर प्रणाम। मैं लखनऊ के सामने गंगवार बैकलाम से बेचेलाल गंगवार बोल रहा हूँ।
0: बेचेलाल जी क्या हाल चाल है आपके?
1: जी बहुत बढ़िया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आकाशवाणी परिवार में भी सब लोग बढ़िया होंगे।
0: जी सब लोग बहुत बढ़िया है। तो बेचेलाल जी आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप। पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है, तो बताइए बेचेलाल जी क्या राय है आप?
1: पहले तो संभव हो तो निकले ना, और यदि निकलना है तो कॉटन का सफेद अंगोछा या छाता अपनी जैसी जो व्यवस्था वो लेके निकले
0: जी,
1: और तुरंत बाहर से आगे तरल पदार्थ कोई भी ले, वो इतना ठंडा ना ले जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए।
0: जी आप गर्मी की बात कर रहे हैं कि तेज गर्मी में सूती कपड़े पहन के निकलें और अपना ध्यान रखें, छाता लेके निकलें धूप से बचने के लिए, है ना? और आजकल तो कभी बारिश।
1: अच्छी बात है
0: जी, तो बिल्कुल ठीक बात है। मौसम बदलता है तो कई सारी परेशानियां भी होती हैं, उनसे बचाव बहुत जरूरी है। तो आपने अच्छी बात कही। और बताइए बेचेलाल जी कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए आज?
1: जी इस पर तो वही फिर बैठता धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: ठीक है बेचेलाल जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी एक बार आकाशवाणी परिवार को आपको पुनः प्रणाम।
0: प्रणाम।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, हमारे कौन से श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, मैं चंपतपुर जिला बरेली से।
0: सद्दाम अली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और सद्दाम अली जी, आज हम बात कर रहे हैं मौसम की, बदलते मौसम की। कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी, और कभी बहुत तेज धूप हो जाती है। तो पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है, वो हम जानना चाहते हैं।
1: मेरी यही राय है सर, अगर कोई मौसम समय से बदल रहा है अपने तो वो सही है। अगर से मौसम अगर बदलाव हो रहा है तो उससे ज्यादातर हानि होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे आंधी आ जाए तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड पे पेड़ गिर जाते हैं, बिजली की लाइन पे पेड़ गिर जाते हैं, ये भी बहुत नुकसानदायक है।
0: जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इधर बरेली में भी कई जगह बिजली लाइन पर पेड़ गिरने से कई एरियो में बिजली की जो है सप्लाई बाधित हुई है, और ऐसी और भी जगह भी परेशानियां होती हैं, कहीं किसी को चोट भी लग सकती है, तो ऐसे मौसम में इस तरीके की परेशानियां होती हैं, है ना सद्दाम अली जी? तो आपके कहने का मतलब है कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, तो सद्दाम जी बताइए, कौन सा गीत आपको सुनवाएं आज?
1: सर, फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है, और गीत के बोल है चाहतों की दुनिया में देख ऐसा होता है।
0: कौन सा गीत बताया आपने? चाहतों की दुनिया में।
1: चाहतों की दुनिया में देख ऐसा होता है।
0: ठीक है सद्दाम अली जी, हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं इकरा बोल रही हूँ फरीदपुर से। जी
0: इकरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं 8th क्लास मैंने पास कर लिया है, 9th में एडमिशन लूंगी।
0: जी, तो आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जी मैं आपके कार्यक्रम सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, सबसे मनपसंद कार्यक्रम आपको कौन सा है आपका?
1: जी मेरा मनपसंद कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ और युववाणी, मुझे और अनुरोध गीत और आपकी

0: आकाशवाणी के साथ, और वो आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है सारे कार्यक्रम।
1: बहुत अच्छी बात है, आप रेडियो सुनते रहिए ऐसे ही। और
0: जी।
1: आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। हमारा आज का विषय है कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है। तो आपकी क्या राय है इकरा
0: जी? हमें जैसे कि कभी ठंडा मौसम है कभी गर्म मौसम है, इसलिए हमें परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है, नहीं तबीयत खराब हो जाती है, हमें जुकाम होता है ठंडे के मौसम में, और गर्मियों में हमारी हालत बिगड़ जाती है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है ज्यादा सलाह बुना करने से। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही इकरा जी कि मौसम बदलता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो इकरा जी, कार्यक्रम में आज आपका फोन लगा, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज आप?
0: जी मैं बिच्छू मूवी का सुनना चाहूंगी, दिल तू जा तू जीना मजा साथ मैंने तेरे यही है आरजू।
1: जी बहुत सुंदर, इकरा जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं अनोखेलाल मौर्य बोल रहा हूँ, कटेचान का पुराने सर।
0: अनोखेलाल मौर्य जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है सर, आप सुनाइए कैसे हैं सुपल भैया
0: बिल्कुल
1: जी।
0: सब बढ़िया है अनोखेलाल जी। और आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, पल पल बदलते इस मौसम पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए अनोखेलाल जी।
1: ये तो साफ ऊपर वाले की फितरी है,
0: जी
1: और जो भी मौसम होता है ठंडा गर्म होता है, कहीं
0: जी
1: बारिश होती कभी तूफान आता है, कहीं भी कुछ भी आता है। जैसे इस मौसम में आपको आदमी को कभी ठंडा गर्म मौसम हो जाता है, अपने आप को ध्यान रखना चाहिए,
0: जी
1: और साथ में पानी की बोतल लेके चलना चाहिए, कॉटन के
0: बिल्कुल
1: कपड़े पहनना चाहिए, और हर समय पानी पीते रहना चाहिए, नारियल का पानी भी जरूर पीना चाहिए,
0: बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही।
1: और फल है फ्रूट है तो खाना चाहिए आदमी को,
0: जी
1: जैसे तरबूज है खरबूजा है खीरा है, ये
0: जी
1: लेना चाहिए।
0: जी गर्मी के मौसम में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना? ऐसे खान पान की ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमें पानी की पूर्ति जो है शरीर को होती रहे, और फल और जैसे आपने बताया पानी की बोतल रखनी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए ऐसे मौसम में। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो बताइए अनोखे लाल जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: वो सुना दीजिए सर, सावन को आने दो,
0: सावन को आने दो। ठीक है अनोखे लाल जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कनेडा कैंट बरेली से।
0: सुनील कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सुनील कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आप मौसम देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जा रही है, कभी बहुत तेज धूप हो रही है, तो मौसम जो है पल पल बदल रहा है, तो इस मौसम पर आपकी क्या राय है, बताइए हमें।
1: मौसम ये बहुत खतरनाक है सर। फिर तो आंधी आती है, बारिश होती है, साथ में ये खतरनाक है। बाहर जाने में खतरा ही खतरा है, कहीं पेड़ है या खंबा है,
0: जी
1: उससे बच के रखे सभी लोग।
0: जी
1: और धूप कड़ी एकदम होती है और बारिश हो जाती है, इंसान भीग जाता है, तो बीमारी होने का डर रहता है।
0: जी बिल्कुल ठीक बात है सुनील कुमार जी। ऐसे मौसम जो है वो कई सारी बीमारियों को लेके आते हैं, कई सारी परेशानियों को लेके आते हैं, तो उनसे बचाव करना और इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना बहुत आवश्यक।
1: कहीं पेड़ गिरते हैं, अब पेड़ जोड़े कोई मनुष्य अगर होता है तो उसको नुकसान पहुंचता है बहुत।
0: जी

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं?
1: जी मैं उर्फी जावेद बात कर रही हूँ, बरेली पुराना शहर से।
0: उर्फी जावेद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं कंपनी में काम करती हूँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और आपका काम ऐसे ही चलता रहे, खूब तरक्की करें आप। और ये बताइए, आजकल जैसा आप मौसम में बदलाव देख रही हैं, कभी बहुत तेज धूप हो जा रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश हो रही है, तो मौसम जो है पल पल बदल रहा है, इस मौसम पर आपकी क्या राय है ये बताइए आप हमारे सभी श्रोताओं को।
1: जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले अपने जो घर में फ्रिज वगैरह है इनसे पानी जरा कम यूज करें, क्योंकि ये जब बदलता मौसम होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, तो ये मिक्स होकर ना हमें फीवर बॉडी में कर सकता है, तो इससे रिलेटेड ये सब करना नहीं चाहिए। और आइसक्रीम है, ठंडा जूस है, ये सब नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा फालतू के जो एसी वगैरह आएंगे ये भी नहीं अभी यूज करना चाहिए, हल्का लो मीडियम का फैन यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और हमें सर्दी जुकाम भी और बुखार भी नहीं होगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखना सभी को आवश्यक है कि फ्रिज का बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, और बाहर से आए तो एकदम ठंडा पानी ना पिए, और एसी का उपयोग कम ही करें, सीमित करें।
1: अगर बाहर से अगर आप कहीं से भी वॉक वगैरह से आ रहे हैं तो एकदम से पानी ना पिए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है जो हाई होता है, तो उसको लो होने दें, उसके बाद में ही पानी को यूज करें।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही उर्फी जावेद जी। तो बताइए उर्फी जी, आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए आज?
1: जी मुझे आज गीत नहीं सुनना है, मुझको एक कव्वाली सुननी है, आई होप कि आप वो सुना दें। कव्वाली का नाम है अजमेर वाले आका मेरा सलाम ले लो।
0: ठीक है उर्फी जावेद जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। अभी आपने ये फोन कॉल सुनी जिन पे हमने बात की थी अपने बहुत सारे श्रोताओं से, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने संदेश जो हैं, अपने विचार हमारे फेसबुक पेज पर लिख भेजे हैं। आइए अब उनकी बारी है, उनको शामिल करते हैं। ये हमारे श्रोता हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरम बाबू। लिखते हैं कि इस बदलते मौसम में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आंधी के दौरान पेड़ों, कच्चे मकानों के नीचे ना खड़े हों। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के कारण तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी तेज धूप तो कभी धूल भरी आंधी और अचानक गरज के साथ बारिश की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, आपकी नज़र जो है मौसम पर लगातार बनी हुई है। और ये हमारे श्रोता हैं विष्णु टेलर जी, लिखते हैं मौसम भी जिंदगी की तरह है, कभी खुशियों की बारिश, कभी संघर्षों की आंधी और कभी जिम्मेदारियों की कड़ी धूप, लेकिन हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। बारिश सिखाती है ठहरना, आंधी सिखाती है मजबूत बनना और धूप सिखाती है मेहनत की असली कीमत। क्या बात है, जो इंसान हर मौसम में मुस्कुराना सीख जाता है वही जिंदगी का असली खिलाड़ी बन जाता है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने विचार लिख भेजे हैं। आप हैं विष्णु मिस्किन और आपके बहुत सारे साथी दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से। हमारे एक और श्रोता जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप जी और इनके बहुत सारे साथी लिखते हैं कि मौसम बदलता जा रहा है, इसमें अपना और बच्चों का, बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रखें। जैसे सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं, ताजी हरी सब्जी खाएं, पीने का पानी ढककर रखें आदि। बिल्कुल, हम सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। हमारे एक और श्रोता भैरूलाल वाक्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आगे इन्होंने इस विषय पर लिखा है, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। 4 महीने बारिश, 4 महीने गर्मी और 4 महीने सर्दी के सिर्फ कहने को निर्धारित हैं। भरी गर्मी में भी आंधी और बारिश हो जाती है तो कभी बरसात के मौसम में भी पानी को तरस जाते हैं तो कभी ठंड में भी बारिश हो रही है। इस तरह के मौसम से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, फसलों का भी नुकसान होता है। लिखते हैं कि मैं इन दिनों उत्तराखंड चारधाम तीर्थ यात्रा पर हूं और यहां भी मौसम कभी बारिश तो कभी बहुत अधिक ठंड हो रही है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है जिसकी हमारे मध्य प्रदेश में भयंकर जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भयंकर लू चल रही। क्या बात है, आप चारधाम यात्रा पर हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो और खूब अच्छी यात्रा हो। मौसम का भी आप खूब आनंद लीजिए और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम। और ये हमारे एक और श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी, लिखते हैं कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, पल पल बदलता मौसम सामान्य नहीं है, जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल, ये मौसम का बदला है, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, अब वो जवाब दे रही है। इस प्रकार मौसम के अचानक परिवर्तन से आज हमारी सेहत

और खेती पर बहुत बुरा असर हो रहा है। आज हम सभी को अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण रोकना होगा। 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जैसे जरूरी प्रयासों को अपनाना होगा। और कभी भी यात्रा करने तो सबसे पहले मौसम विभाग की वेदर रिपोर्ट और चेतावनी को अच्छे से देख लें। बिल्कुल, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख दी है और बहुत जरूरी है कि पेड़ लगाना और जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखना कि ये जो हो रहा है किन कारणों से हो रहा है। एक और हमारे श्रोता नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर जी लिखते हैं, 14 बार नवापारा बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, यह बदलता मौसम जीवन की तरह है। कभी ठंडक देने वाली बारिश, कभी चुनौती भरी आंधी, तो कभी ऊर्जा भरती धूप। हर बदलाव को सिखाता है, शिकायत करने से बेहतर है हम खुद को ढाल लें। प्रकृति का यह नाटक हमें धैर्य, लचीलापन और हर पल का आनंद लेना सिखाता है। और एक और हमारे साथी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी जी लिखते हैं कि मौसम का बदलता स्वरूप ये हमारे ही कर्मों का नतीजा है। बिल्कुल, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, मौसम ने अपना रवैया बदल लिया। बिन मौसम बरसात, गर्मी के मौसम में जाड़े का एहसास, बरसात के दिनों में बारिश का ना होना, ये सब आने वाले समय के अच्छे संकेत नहीं हैं। हमें चाहिए कि अपने घरों में हम पौधे लगाएं, पौधों की अच्छे से देखभाल करें, आने वाली परेशानी से बचें। बिल्कुल, हम सभी को मिलकर वृक्षारोपण करना चाहिए, खूब सारे पौधे पेड़ लगाने चाहिए। और आप हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ जी लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। तो नमस्कार रेवाड़ जी, आगे लिखा है कि बदलते हुए मौसम से हमें सीख लेनी चाहिए। हालांकि इस भयंकर गर्मी के मौसम में भी कुछ जगह बारिश होने की वजह से राहत अवश्य मिलती है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि समय निर्धारित है हर मौसम में, मौसम के अनुरूप ही मौसम अच्छा लगता है। अब इस गर्मी में अगर बारिश हो रही है तो हमें अच्छा लगता है, मौसम सुहाना लगता है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी होने की वजह से ये मौसम बदलने की जो परंपरा चल पड़ी है वो आने वाले समय के लिए हम सभी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत गहरी बात लिखी है राम कुमार जी। आगे लिखते हैं कि हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा और अपने इस धरती को हरा भरा रखेंगे तभी ये मौसम समय के अनुकूल रहेगा। बिल्कुल, और ये हमारे श्रोता ये हैं एडवोकेट वारिस अली खान जी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं कि एक शेर लिखा है पहले, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी बैठे हैं जो दरिया के किनारे। क्या बात है, बहुत खूब। वारसी जी लिखते हैं कि आज के विषय पर मुझे ये कहना है कि इसमें मौसम की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कसूर है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, अत्यधिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, समय पर अपने वाहन की सर्विसिंग नहीं हो रही है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वाहनों के शोरगुल से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिस कारण मौसम का मिजाज भी बेवक्त पर बदल जाता है। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, मानव जीवन में ये कहावत चरितार्थ हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत सारगर्भित बात लिखी है, कम शब्दों में बड़ी बात कही है। और एक और ये हमारे श्रोता हैं माधुरी कश्यप जी, लिखती हैं कि पल पल बदलते इस मौसम से फसल को तो नुकसान है ही, साथ ही साथ बच्चों, बुजुर्गों और बाहर निकलने वालों को भी दिक्कत हो सकती है। पल में तेज गर्मी, पल में आंधी बारिश, कितने पेड़ गिर रहे हैं और एकदम ठंडा हो रहा है, फिर धूप और गर्मी। लोग अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। इस पल पल बदलते मौसम पर एक गाना याद आता है इनको, अगर सुनाया जा सके तो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। माधुरी जी, आपको ये गीत हम सुनवाएंगे लेकिन किसी और कार्यक्रम में सुनवाएंगे, क्योंकि गीत आपका कमेंट थोड़ा देर से आया है और गाने हमने गानों का चयन पहले ही कर लिया था।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, 5:30 पर शिप्रा श्रीवास्तव लेकर आएंगी कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें चर्चा की जाएगी ना होने दें पानी की कमी। इसके साथ ही सुनवाएंगे आशीष सिंह से वार्ता, विषय है जीवन में एकता का महत्व। कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा 6 बजे, जिसमें होगा प्यार की धुन, कुछ खास है आज और आज का सवाल। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का, जिसमें आज चर्चा की जाएगी कृषि विविधीकरण पर। इसके साथ ही सुनवाएंगे आपको कृषक गोष्ठी, खेती एवं पशुपालन, खरीफ फसलों की तैयारी, इस विषय पर प्रतिभागी होंगे जितेंद्र कुमार अनिकेत, संचालन होगा डॉक्टर रविंद्र कुमार का। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा 7:31 का, जिसमें आज का विषय रहेगा डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद हकीक। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा की शेष कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं कल प्रातः 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली। लोकगीत सुनवाएंगे आपको 8:45 पर। कल प्रातः 9:00 आपको जोड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम का। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनवाएंगे कल प्रातः 10:05 से। सब रंग ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दिन के 11:00 से। कार्यक्रम झुमका गिरा रे सुनना ना भूलिएगा कल प्रातः, क्षमा कीजिए, कल दिन के 11:15 पर। 11:30 का समय रहेगा कार्यक्रम NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम का। अनुरोध गीत ये कार्यक्रम आप

आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 4:05 पर। भजन संध्या का समय रहेगा कार्यक्रम 5:05 का। कल शाम 5:30 पर आपको सुनवाएंगे महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें चर्चा की जाएगी दवाई खरीदते समय रखें सावधानी इस विषय पर, और आपको बताएंगे पेरेंटिंग टिप्स। साथ ही होगी रूपसी सक्सेना से वार्ता, विषय रहेगा घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर। कल शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खास और प्यार की धुन। हमारे किसान साथियों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर। 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम जगत का, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा बालिका शिक्षा। कल शाम 7:31 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। श्रोताओं, भजन संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिओम शरण के गाए इस भजन के साथ।

0: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये मधुर भजन।

श्रोताओं, हरिओम शरण के गाए इसी भजन के साथ भजन संध्या का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम और सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम नारी संसार, आपकी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। सखियों, ये है आपका पसंदीदा कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ हम करते हैं आपसे महिलाओं से जुड़ी दिलचस्प बातें, साझा करते हैं अपने और आपके अनुभव, करते हैं प्रेरणादायक चर्चाएं और जिंदगी को आसान बनाने वाले टिप्स के साथ ही आपके मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं सदा बहार सुरीले नगमों की सौगात। तो चलिए ले चलते हैं एक बार फिर आज आपको कार्यक्रम के इस सफर पर इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: सखियों, ब्रेक से पहले आपने जो गीत सुना था उसकी फरमाइश हमारे पास आई थी हमारे जो श्रोता हैं भगवत चौबे लाडला जी, और इसी के साथ इनके घर के अन्य सदस्यों ने भी फरमाइश की थी, लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। और अब बात चल रही है आजकल के मौसम की। तो सखियों, मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो अभी कहना मुश्किल है कि आज ये किस ओर करवट बदलेगा। और तो लोगों ने अब तो कहना शुरू कर दिया है कि शायद बरसात और गर्मी के मौसम में होड़ लगी है कि कौन यहाँ टिकेगा। खैर, रिमझिम बरसात हो या तेज तूफानी हवाएं, गर्मी और लू के थपेड़े भी मौका मिलते ही हमें मई के महीने का एहसास करा ही देते हैं। तो हमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस मौसम में किन बातों का ख्याल रखना है। और इस मौसम में जब सूरज आग बरसाने लगता है, तेज धूप, पसीना, थकान और चिड़चिड़ापन सब कुछ हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सारी परेशानियों की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो आज के कार्यक्रम में चलिए इसी पे बात करते हैं कि शरीर में आखिर पानी की कमी क्यों हो जाती है और इसके क्या संकेत हैं और कैसे हम खुद को पूरे दिन तरोताज़ा और हेल्दी रख सकते हैं। सखियों, ये तो आप जानती हैं कि हमारे शरीर में करीब 70% पानी होता है, और तभी पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए भी ज़रूरी होता है, और साथ ही भोजन को पचाने और हमारी त्वचा को हेल्दी रखने और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब गर्मियों में हमारा जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। अगर समय पर पानी ना पिया जाए तो कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द और कभी कभी तो हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी हो जाती है। इसलिए सिर्फ बाहर काम करने वाले लोगों को नहीं बल्कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जो लोग घर में ही रहते हैं उनको भी अपनी हाइड्रेशन का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि अभी हमने जितने संकेत बताए वो तो काफ़ी स्थिति खराब होने के होते हैं। लेकिन सखियों, अगर आपको घर में या बाहर काम करते करते बार बार थकान महसूस हो, आपके होंठ सूखने लगे, आपको लगे कि आपके सिर में थोड़ा भारीपन है,

बार बार आपको वॉशरूम जाने की भी इच्छा ना हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शरीर पानी मांग रहा है। कई बार लोग तभी पानी पीते हैं जब बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो प्यास लगना ही डिहाइड्रेशन की शुरुआत का संकेत है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। इसके अलावा नींबू पानी, छाछ

0: बातों को भी ध्यान में रखें, जैसे धूप में खासतौर पर 12 से 3 बजे के बीच तेज धूप होती है उसमें बाहर निकलने से बचें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और पानी की बोतल हमेशा हमेशा साथ रखें। और अगर आपकी आदत चाय पीने की तो सखियों इस मौसम में चाय और कॉफ़ी को थोड़ा छोड़ दीजिए और साथ ही बाजार में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी सेवन ना करें। खाली पेट धूप में ना निकलें और लंबे समय तक पानी पिए बगैर ना रहें। तो इस गर्मी के मौसम में प्यास लगने का इंतज़ार मत करिएगा, समय समय पर पानी पीजिए और अपने शरीर को हाइड्रेट रखिएगा। और हम भी अपनी सखियों के मनोरंजन का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ जानकारी का भी। और सखियों, अगर हम बात जानकारी की करें तो हमारे जीवन में जिस चीज़ का बहुत महत्व है वो है सबका साथ, यानी कि एकता, और ये जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए इसी विषय पर वार्ता, जीवन में एकता का महत्व, और हमारी वार्ताकार हैं आशीष सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: जीवन में एकता का महत्व, एकता में बल है, ये कहावत हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक। एकता का अर्थ है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना और किसी भी कार्य को साथ मिलकर पूरा करना। जब लोग एक साथ रहते हैं तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर लेते हैं। एकता केवल परिवार या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की शक्ति होती है। जिस स्थान पर एकता होती है वहाँ प्रेम, शक्ति और प्रगति अपने आप आ जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन नहीं जी सकता, उसे हर कदम पर दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि परिवार के सदस्य आपस में एकजुट रहें तो घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है तथा कठिन समय में सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन जहां आपसी मतभेद और लड़ाइयां होती हैं, वहां दुख और अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए एकता बहुत आवश्यक है। समाज में भी एकता का बहुत महत्व है। समाज अलग अलग लोगों से मिलकर बना है। यदि लोग धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर आपस में लड़ते रहे तो समाज कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो समाज में भाईचारा, सद्भाव बना रहता है। एकता से समाज में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और विकास के नए रास्ते खुलते हैं। हमारे देश भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविधता और एकता है। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, फिर भी सभी लोग मिलकर रहते हैं। यदि एकता हमारे देश की शक्ति है, स्वतंत्रता संग्राम के समय जब सभी भारतीय एकजुट रहे तभी उसे आजादी मिली। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने लोगों को एकता का संदेश दिया। यदि उस समय लोग एक साथ ना आते तो शायद भारत की स्वतंत्रता इतनी जल्दी नहीं मिलती। प्रकृति भी हमें एकता का संदेश देती है। चींटियां छोटे छोटे जीव होते हैं फिर भी मिलकर बड़े काम कर लेती हैं। पक्षी झुंड में उड़ते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी एकता बनाए रखे तो वो हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। विद्यालय में भी एकता का बहुत महत्व है। जब विद्यार्थी मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो पढ़ाई का वातावरण अच्छा बनता है। खेलों में भी टीम की सफलता खिलाड़ियों की एकता पर निर्भर करती है। यदि खिलाड़ी आपस में सहयोग न करें तो टीम कभी नहीं जीत सकती। आज के समय में दुनिया कई समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे आतंकवाद, गरीबी, प्रदूषण और महामारी। इन समस्याओं का समाधान केवल एकता और सहयोग से ही संभव है। यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो दुनिया को सबसे बेहतर बनाया जा सकता है। एकता हमें प्रेम, सहयोग और त्याग की भावना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जहाँ एकता होती है वहाँ सफलता निश्चित होती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि एकता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाती है। हमें हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, तभी हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते। सच ही कहा है, एकता में ही शक्ति। इसके अलावा एकता केवल बाहरी शक्ति नहीं देती, बल्कि यह मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास और साहस भी पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसके साथ उसके अपने लोग खड़े हैं तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना बिना डरे कर सकता है। एकता हमें ये सिखाती है कि दूसरों की खुशी और दुख को अपना समझना चाहिए। आज के आधुनिक युग ने तकनीक और विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। लोग अलग अलग देशों में रहकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में विश्व शांति और मानवता के लिए एकता की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। यदि सभी देशवासी आपसी मतभेद भूलकर काम करें तो युद्ध, भुखमरी और प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में भी एकता की भावना अपना

0: करनी चाहिए, चाहे स्कूल हो, परिवार हो, मित्रों का समूह हो या समाज। हर जगह हमें सहयोग और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की बजाय मिलकर समाधान निकालना। युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाएं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं। यदि युवा एकता का महत्व समझेंगे तो हमारा देश और अधिक मजबूत और विकसित बनेगा। इस प्रकार एकता केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को सफल और सुखमय बनाने का मूल मंत्र है। जहाँ एकता होती है वहाँ प्रगति, शांति और खुशहाली अपने आप आ जाती है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहने और सबके साथ सबके विकास की भावना को अपनाना चाहिए।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता जीवन में एकता का महत्व और हमारी वार्ताकार थी आशीष सिंह। और अब एक बार फिर चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में लेके।

0: कहते हैं कि नई शुरुआत करने के लिए उम्र नहीं हिम्मत की जरूरत होती है। और आज के हमारे इनसे मिले सेक्शन में हम अपनी ऐसी ही सखी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक नौकरी करने के बाद अपने सपनों को नई उड़ान दी और नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस मोनिका थॉमस जी से और जानते हैं उनके इस निर्णय और जो सफर की राह उन्होंने चुनी है इसके बारे में। तो मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नारी संसार में।
1: आप सबको मेरा प्रणाम। मैं मोनिका।

0: कॉमर्स, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शिप्रा मैम की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज अपनी सखियों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी रहूंगी कि आप सब मुझे सुनने के लिए तैयार हैं।
1: मनिका जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट का फैसला आपने कैसे लिया, क्योंकि एक एज के बाद हम लोग को थोड़ी स्टेबिलिटी पसंद होती है और जो चीज चल रही है हम उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करते। तो ऐसे में एक वर्षों की नौकरी छोड़कर एक नए क्षेत्र में कदम रखना, ये कैसे आपने फैसला लिया?
0: देखिए मैम, हाँ मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि वर्षों की नौकरी करने के बाद एकदम से ऐसा निर्णय लेना, एक्चुअली ये मेरी शुरू से ही एक चॉइस थी कि आत्मनिर्भर रहना है, और आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी तो नहीं बनती, क्योंकि मुझे इतने सालों में 22 साल की लगातार टीचिंग में रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, और विशेषकर कोरोना काल ने ये हमें शिक्षा दी कि जो भी करना है वो अपना करना है। और कुछ एक अंदर की उमंग थी, हमेशा से एक चाहत थी, अपनी खुशी थी कि अच्छा खाना बना के सर्व करूं। हमेशा अपने फैमिली को जब भी छुट्टी होती थी तो अच्छा खाना बना के सर्व करती थी। फिर अचानक से मन में ये ख्याल आया कि अरे बहुत हो गया, अब नहीं करना है, अब कुछ नया शुरू करना है। तो ऐसा सोच के फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़े, डिफिकल्टीज कठिनाइयां हर चीज में आती हैं थोड़ी बहुत, बट स्टिल मैनेज हो जाता है, और काफी खुश हूँ अपने इस डिसीजन।
1: आपके इस सफर की जो शुरुआत आपने की, इसमें आपके रास्ते में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो क्या थी? इसके बारे में भी हमारी सखियों को कुछ बताइए।
0: सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शुरू कहाँ से करूँ। काफी टाइम लगा मुझे ये डिसाइड करने में, घर में सबसे एडवाइस ली पूरे फैमिली से, कैसे करेंगे क्या करेंगे। फिर एक दिन लगा आज मैं मेन्यू डाल देती हूँ, एंड फाइनली आई हैव डन दैट। मैंने मेन्यू डाल दिया, और द वे आई डू इट, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ कि जो फर्स्ट डे था, मेरी ना सिर्फ फैमिली ने, मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल ने, सबने मुझे इतना सपोर्ट मिला, मुझे इतना पहले दिन इंकरेजमेंट मिला कि उसने एक अलग सा एंथुजियाज्म भर दिया मेरे अंदर, एक अलग सी उमंग भर दी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब मेरे इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे लोग इतने अच्छे हैं, मेरा अपने जितने मेरे मिलने वाले हैं सब लोग मेरे, सब हितैषी हैं मेरे, और वो सब मुझे कॉपरेट कर रहे हैं, तो मुझे वो कठिनाई जो बीच में आई थी वो भी मुझे हल्की लगने लगी, क्योंकि सबका कॉपरेशन मिला। एक इंसान, ये तो सब जानते हैं कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, हमें दूसरों की, अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट की सब जरूरत होती है। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और पहला ही दिन मेरा बहुत ही ब्लास्टिंग था, बहुत ही एनर्जेटिक फील किया मैंने पहले दिन के बाद, और उसके बाद तो बस ये समझ लीजिए कि मैं चल पड़ी।
1: अब एक सवाल जो बहुत देर से मेरे मन में भी है और शायद हमारी सखियों के मन में भी होगा कि आखिर आपको ये कदम उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपने इतने सालों का जो अनुभव था आपका एक क्षेत्र में नौकरी का, उसको छोड़कर आपने बिल्कुल ही नए क्षेत्र में कदम रखा? तो ये किसी प्रेरणा के बगैर तो नहीं संभव है, तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: बात अगर प्रेरणा की करें तो मैम, एक्चुअली जब लॉकडाउन लगा था तो हमें बहुत टाइम मिला था अपने मोबाइल में से इंटरेक्ट होने का, और वो टाइम ऐसा था कि बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे साइट्स ऐसे सर्च करे, तो वहां से देख के बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिला। लेकिन फिर अपनी परिस्थितियां और अपनी सराउंडिंग्स देख के ऐसा लगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कोरोना काल के बाद भी कम से कम आप समझ सकते हो कि 5 साल लग गए इस डिसीजन को लेने में।
1: अब बात करते हैं आपके परिवार की। तो जब आपने ये निर्णय अपने घर वालों को बताया, अपने परिवार के साथ साझा किया, तो उनका क्या रिएक्शन था कि वो आपके साथ थे, या कैसा उन्होंने रिएक्ट किया इस सिचुएशन पे, आपके इस डिसीजन पे?
0: परिवार की बात करें तो मैम बहुत सपोर्ट मिला मुझे, मेरा फैमिली आज भी अगर मेरे 5 से ज्यादा ऑर्डर होते हैं तो मेरा फैमिली मुझे कॉपरेट करता है, मतलब बच्चे पैकिंग में हेल्प करते हैं, दोनों बड़े हैं, बेटी मेरी टीचर है, बेटा मेरा फूड इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो भी जॉब कर रहा है, बट स्टिल अगर वो लौट के शाम को 7 बजे आता है और उसके बाद उसको बोलो कि बेटा ऑर्डर डिलीवर करना है, तो ही इज ऑलवेज रेडी। और हस्बैंड का तो पूरा कोऑपरेशन है ही मेरे साथ, लेकिन बच्चों ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, एंड दे नेवर से नो और शुरुआत में उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि बहुत हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, आप थक जाओगे, आप कर नहीं पाओगे, क्यों अपने लिए हेडेक ले रहे हो, लेकिन उन्होंने समझाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा डिसीजन इतना फर्म है तो उन्होंने समझाना छोड़।

0: लिए मुझे कोऑपरेट करना शुरू कर दिया।
1: और चलते चलते हमारी सखियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, खास तौर पर उनको जो अपने सपनों को शुरू करने से डरती हैं?
2: कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने 22 साल टीचिंग करी है और 22 साल अलग अलग तरह के बच्चों के कॉन्टेक्ट में रहने के बाद ये समझ में आया कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो या बच्चों से इंटरैक्ट होते हैं, उनसे मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, तो हम हमेशा बीइंग अ टीचर और एक मदर होने के नाते हम उन बच्चों में ये ढूंढते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है। और हर एक बच्चा अपनी क्वालिटी में यूनिक होता है और हमारी मेरी खास करके हमेशा ये कोशिश रही है कि हर उस बच्चे को इनकरेज किया जाए, जो क्वालिटी उसके अंदर है उसको बाहर निकाला जाए और उसका फोकस अपनी क्वालिटीज पे ज्यादा हो, उसको जो चीज उसके अंदर है अच्छी है उसको हमेशा उसके तरफ जाना चाहिए। तो वो चीज मैं 22 साल बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करने के बाद, उनके अंदर ये चीज पैदा करने के बाद उनके मनों में, मैंने मुझे ये लगा कि क्यों ये चीज हम अपने ऊपर लागू नहीं करते, कि जो हमें पसंद है हम वो करें ना, हम क्यों दौड़ रहे हैं, हम किस दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, हमें अब फोकस करना चाहिए उस चीज पर जो चीज हम हमारे अंदर अच्छी है, हमारी क्वालिटी है, हम अपनी क्वालिटी को निखारे। तो ये संदेश मैं सारी बहनों को दूंगी कि जो भी आपके अंदर अच्छा है आप उसे निखारने की कोशिश कीजिए, जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, और यकीन जानिए कि जब आप शिद्दत से किसी चीज के पीछे लगेंगे ना तो कायनात भी आपको उसमें सपोर्ट करेगी। तो डिसीजन लेने से डरे ना, डिसीजन लेने में थोड़ी घबराहट होती है, टाइम भी लगता है, बट आप एक बार करके देखेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि हमारी अपने आप को खोजना एक फीमेल के लिए, एक महिला के लिए अपनी क्वालिटीज को जानना भी बहुत जरूरी है।
1: मोनिका जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, आपने अनुभव, बहुत सारी अच्छी बातें हमारी सखियों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां जो इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी उनको भी कुछ ना कुछ आगे अपनी जिस भी दिशा में वो बढ़ना चाहती हैं कदम उठाने के लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम आपका भी और सारी सखियों का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकूं। और मैं तहे दिल से आभारी हूं अपने सारे श्रोताओं का जो हमको सुन रहे हैं।
3: सखियों, आपने देखा कि हमारी रसोई कई बार हमें किस मुकाम तक पहुंचा देती है। और बात रसोई की चल रही है तो सखियों आप भी मानेंगी कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है बल्कि पूरे परिवार की सेहत और स्वाद का खजाना होती है। लेकिन कई बार छोटी छोटी परेशानियां हमारा समय और मेहनत दोनों बढ़ा देती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत आसानी से अपनाए जाने वाले टिप्स जो आपकी कुकिंग को आसान, स्वादिष्ट और स्मार्ट बना देंगे। अगर हम बात करें हरी सब्जियों को तरोताज़ा रखने की, तो आप अपनी सब्जियां रखने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करती हूँ आप थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको आप किसी अखबार में लपेट के रखें तो आप देखेंगे कि आपकी जो हरी सब्जियां हैं वो लंबे समय तक तरोताज़ा बनी रहेंगी। और अगर आपने ग्रेवी बनाई और आप चाहती हैं इसका स्वाद और जो रंगत है वो और खूबसूरत लगे तो आप बनने के बाद उसमें बस एक चम्मच देसी घी डाल दीजिए तो देखिए आपकी सब्जी की रंगत और स्वाद लोगों को इतना भाएगा कि वो खाते वक्त वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसी तरह इस मौसम में जब नमी आ जाती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मसाले हैं वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आप अपने जो मसालों के डब्बे हैं उसमें मसाले ट्रांसफर करने से पहले उसमें टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दीजिए तो वो जो नमी होती है एक्स्ट्रा वो सोख लेंगे और आपके मसालों पर आंच नहीं आएगी। और सखियों, अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपसे विदा लेनी है, लेकिन चलते चलते आइए सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बज चुके हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: मिटा दी अपनी हंसी को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलाकर गुले गुलजार होता है। हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में, और स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका एक खास दोस्त के साथ। भाई आप यही सोच रहे होंगे कौन सा खास दोस्त, किसके बारे में बात हो रही है, तो जरा अपने प्रश्नों को विराम दीजिए। मिलवाते हैं हम हमारी प्यारी सी दोस्त सुकृति पांडे से, जो इन्वर्टीज की स्टूडेंट है। दोस्तों आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर इन्वर्टीज में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ हमारे आकाशवाणी की तरफ से, जिसमें सुकृति थर्ड आई है और इसीलिए आज हमारी गेस्ट प्रेजेंटर बनी है।
1: धन्यवाद प्रज्ञा जी। नमस्कार साथियों, मैं सुकृति पांडे, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज आप सभी के बीच जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया कि हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी लिसनर है, तो हमारी ऑडियंस के लिए मैं दो लाइंस बोलना चाहूँगी। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना।
0: वाह क्या बात कही है सुकृति आपने, अगर मेहनत और लगन पूरी शिद्दत से की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जैसे आज हम मना रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी फखरुद्दीन अली अहमद जी की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करने के बाद भी देश लौटकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने पर जोर दिया। आज के युवा को देश की एकता को मजबूत करना होगा, और फखरुद्दीन अली अहमद जी को जो आज़ादी आंदोलन में कई बार जेल यात्रा की लेकिन कभी हार नहीं मानी। युवा सिर्फ कल का भविष्य नहीं बल्कि आज बदलाव का सबसे बड़ा जरिया है, ये बात उन्होंने हमें समझाई। जैसे हम कह सकते हैं एजेंट ऑफ चेंज।
1: और प्रज्ञा जी सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे आसपास ही मिल जाएंगे। जैसे हमारे भारत की हिस्ट्री इतनी प्रेरणादायक है कि युवा अगर इससे सीखना चाहे तो ना जाने क्या क्या बन सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा सुकृति आपने, अगर हम देश का युवा ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। जैसे आज हम एक और महान व्यक्तित्व को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन अभी हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता यही सोच रहे होंगे कि भाई ये बातें ही करे जा रही हैं पर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करवा रही हैं। पर चिंता मत करिए, आज जैसे जैसे बातें इतनी सारी है उसके साथ एंटरटेनमेंट भी आपका भरपूर होगा। सुकृति आप क्या सुनवा रही हैं हमारे

0: श्रोताओं को।
1: प्रज्ञा जी, हम उन्हीं की फरमाइश से सुनवाएंगे आपको, क्योंकि हमारे श्रोताओं की फरमाइश हमारे सर आंखों पर होती है। तो फरमाइशें भेजने वाले श्रोता हैं हयात कॉलोनी अरियर बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। दूसरी फरमाइश आ रही हमारी ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से।
0: चलिए इनकी सुन फरमाइश पे सुनेंगी ये प्यारा सा सॉन्ग प्यार की धुन से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपसे कही थी कि हम

0: एक महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आर के नारायण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, जो अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकार में गिने जाते हैं।
1: प्रज्ञा जी, मैं एक बात समझती हूँ कि अगर हमें मोटिवेट ही होना है तो हम किसी हीरो की फिल्म से नहीं देखेंगे, हम उनकी फिल्में देखकर मोटिवेट नहीं होंगे, हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनके जीवन का पूरा मतलब समझा जा सकता है। क्योंकि बड़ी कामयाबी पाने के लिए किसी जादुई मौके का इंतज़ार ना करें, आम लोग और रोज़मर्रा की चुनौतियों ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा जरिया बन सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जैसे नारायण जी की भाषा बेहद सरल, स्पष्ट और बिना किसी दिखावे की होती थी।
0: हाँ सुकृति, और उन्होंने तो अपने उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स को दर्जनों प्रकाशकों ने उनके पास लेके गए, तब भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो फिर भी कभी निराश नहीं हुए, कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रयासों को हमेशा जारी रखा और सही समय आने पर दुनिया उनका लोहा मानती है। कहते हैं ना कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी पर चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता।
1: प्रज्ञा जी, हम उम्मीद करते हैं आपकी बातें सुनकर हमारे युवा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। आपकी बातें हैं ही इतनी प्यारी।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुप्रति भाई, तो क्योंकि प्यारी प्यारी बातें श्रोता तो बहुत सुनते हैं, अब उन्हें ये सुनना है कि भाई प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनने हैं, क्योंकि प्यार की धुन है आज और उनको सुनने का मन हो रहा है प्यारे से सॉन्ग। उन्हें लग रहा है कि बातें तो ये इतनी प्यारी प्यारी कर लेती हैं पर सॉन्ग कब सुनवाएंगी, तो आप बता दीजिए उनकी फरमाइश कहाँ से आ रही है और कौन से सॉन्ग हम सुनेंगे आज।
1: जी बिल्कुल प्रज्ञा जी, और हमारे श्रोता भी तो हैं जो ढेर सारी फरमाइशें भेजे जा रहे हैं, उनकी फरमाइशें भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली फरमाइश आ रही है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार की। दूसरी फरमाइश हमारी जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेक्रॉस चोकरी है। तीसरी फरमाइश हमारी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया की है।
0: चलिए आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: साथियों, से हम आपसे वादा करते हैं कि हम रोजाना किसी न किसी से ही आपको मिलवाते रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच में जुड़े हैं। आज के इस खास दिन पर इनको अपने साथ जोड़कर मुझे और भी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं इनको सुनेंगे वो जरूर इनसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि इनकी काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है और हमें ये जरूर मार्गदर्शन करेंगे हमारे आगे के जीवन के लिए कि हमें किस तरीके से हर मोड़ पर सही का साथ देना चाहिए। आज हमारे बीच में जुड़े हैं सीनियर रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय जी। पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो पीयूष जी, पहले आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए, आपने अपने सफर की शुरुआत कैसे की, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आपको इसी लाइन में जाना चाहिए?
1: ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सोशल वर्क भी हो सके। तो उस टाइम पे टेंट जर्नलिज्म के लिए कई इंस्टीट्यूट थे, जिसमें कानपुर में जागरण ने अपना कॉलेज खोला था। वहां से पास आउट होने के बाद जागरण में ही इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। शुरू से ही अखबार पढ़ने का शौक था और कभी सोचा नहीं था कि जर्नलिस्ट बनूंगा, लेकिन कहते हैं कि जो आपका शौक होता है शायद कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े होते हैं, और यही वजह है कि मैंने इसे करियर ग्रुप में भी चुना।
0: जी, जितने भी शौक होते हैं हमारे, अगर हम अपने शौक को आगे बढ़ाएं और शौक के साथ करियर भी बन जाए उसमें, तो जीवन में संतुष्टि का नाम यही हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि आपने कहा कि अगर शौक ही हमारा पेशा बने, वही हमारा प्रोफेशन के रूप में हो, तो न केवल हम फाइनेंशियल ग्रोथ करते हैं बल्कि जो काम हम करते हैं पूरी मेहनत और लगन से करते हैं।
0: आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है,
1: ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बहुत कम ऐसा पेशा होता है जहां आप सिर्फ अपनी जो आपकी फाइनेंशियल जरूरत है उसे पूरा करते हैं, बल्कि आपके पास एक मौका होता है ऐसे लोगों की आवाज बनने का जो शोषित हैं, जो किसी वजह से परेशान हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोगों की बात लिखते हैं, उसे पब्लिश करते हैं, उसे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के माध्यम से सामने लाते हैं और फिर उनकी समस्या दूर होती है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है, तो इसे सिर्फ इसलिए कि ये ग्लैमरस है ऐसा नहीं है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको नाम नहीं मिलता और थोड़ी थैंकलेस जॉब मैं मानता हूँ इसे, लेकिन अगर आपके मन में ये है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये आपको सुकून देता है। बिल्कुल
0: जी, आपने सही कहा, हम सभी आगे बढ़ सकते हैं अगर हमने अपने मन में ये सोच लिया है कि हमें दूसरों की मदद करनी है और सिर्फ नाम और पैसे के पीछे भागेंगे तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। आपने बताया जैसे कि इस जॉब के अंदर काफी कुछ अचीवमेंट्स भी होती है, काफी कुछ आपने अचीव भी किया है और काफी कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है।
1: जैसे एक फिल्म होती है, वहाँ पे जो फ्रंट पे लोग होते हैं उन्हें हम देखते हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिडन होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं। बिल्कुल यही जर्नलिज्म भी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने आए, लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट बनने से लेकर और उसे पब्लिश होने तक बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो सिर्फ अगर ग्लैमर के पीछे भागना है तो मैं क्लियरली कहूँ ये जॉब उनके लिए नहीं है।
0: जी,
1: हो सकता है पूरी मेहनत आपकी हो लेकिन फ्रंट पे चेहरा कोई और हो। ये जॉब उनके लिए है जो सच में ये मानते हैं कि ये पेशा उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन दे सकता है और जो वो मदद

0: करने का जज्बा लेके अपने मन में चलते हैं, कहीं ना कहीं उसे वो कम्प्लीट करता है। हाँ, आपने एक बात कही सेक्रीफाइस करने की, तो ये है कि आपको फैमिली लेवल पे पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जॉब 24/7 की है, खासकर जब से इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का दौर आ रहा है, चीजें और तेज हो रही हैं। ये जॉब सेटिस्फेक्शन तो देगा, लेकिन तभी जब आप इसे सच में मोहब्बत करते हो।
1: जी बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, और मैं भी अपने सारे युवा साथियों से यही कहना चाहूंगी, सिर्फ इस जॉब की बात नहीं है, बहुत सारी जितनी भी जॉब है, अगर उससे आप दिल से जुड़ेंगे तो तभी आपको संतुष्टि मिल पाएगी, तभी आपको शांति मिल पाएगी, सुकून मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ग्लैमर के पीछे भागेंगे तो कई बार आपको निराश होना पड़ेगा। आपने हमें बताया कि ये जॉब हमें किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट का कितने सारे मौके देती है, खुद को इम्प्रूव करने के कई लोगों से हम मिलते हैं इस जॉब के अंदर, बहुत सारे लोगों के विचार हमारे बीच में आते हैं, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करिए हमारे साथ। कई बार इस जॉब में बहुत सारे चैलेंज आते होंगे, ताकि हमारे युवा साथी भी जाने कि कितनी चैलेंजिंग है ये जॉब।
0: बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी शुरुआत हुई इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। उसमें क्राइम बीट दी गई थी, और ये एक ऐसी बीट थी जो शायद कभी मुझे पसंद नहीं थी। मतलब खून खराबे और जो एग्रेशन है, मैं इन सबसे हमेशा दूर रहता था। लेकिन जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू करी तो आपको ऐसी घटनाएं कवर करनी पड़ती थी जहाँ आपको लगता था कि आप तो जाना ही पसंद नहीं करते। ये सारी जो पुलिस को लेकर निगेटिविटी थी, क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये देखा कि नहीं, पुलिस की जॉब 24/7 की है और बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है। जब आप किसी भी बीट पे काम करते हैं, वो क्राइम बीट ही नहीं, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, क्राइम हो, पॉलिटिक्स हो, तो बतौर जर्नलिस्ट आपके पास मौका होता है अलग अलग फील्ड को जानने का, समझने का, उनसे जुड़े लोगों से मिलने का, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है। वैचारिक रूप से मतभेद होने के बाद भी आप उनकी बातों को जानते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और कहीं न कहीं उनकी बातों का आप भी समर्थन करेंगे।
1: जी, तो मतलब मैं मानती हूँ कि अगर हमारी विचारधारा सामने वाले से नहीं मिल रही है, फिर भी हमें उसकी बात को ऊपर रखना पड़ता है और उसकी बात को सुनना पड़ता है, ताकि उसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो समझाना चाह रहा है वो दुनिया के सामने आ पाए। सिर्फ अपनी बात को लेकर नहीं चलना होता है इस जॉब से, ये सिखाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: इस जॉब की यही एक खूबी है कि आप अपने मन में आप कुछ भी सोचते हो, आप किसी भी विचारधारा के हों, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये पेशा कहता है कि आप क्या हैं, इसे साइड में कर सामने वाला क्या है और क्या कहना चाहता है, उसकी बात को उतनी ही प्रमुखता से सामने लाना, सोसाइटी के सामने लाना, यही हमारी जॉब है, यही हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बायस नहीं होना है हमको, जो चीजें हैं उसको एज इट इज सामने लाना, यही हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी अच्छा, जो भी पीयूषी, जो भी इस फील्ड में युवा साथी जाना चाहते हैं, वो किस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड हम जानते हैं चैलेंजिंग भी बहुत है और बहुत कुछ आपको आपके सामने लाती है कि आप अगर बॉर्डर पे, जरूरी नहीं है कि हर जने को बॉर्डर पे खड़े होकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप एक अच्छी रिपोर्टिंग, एक अच्छे सच्चा देशभक्त वही कहलाता है जो अपने देश के सच को हमेशा सामने लेकर आए और सच्चाई को सामने रखे। बहुत सारे युवा साथी हैं जो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं कि वो लाइन में आके काफी कुछ अपने देश के लिए कर सकें, काफी कुछ सच के लिए कर सकें।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी भूमिका बहुत सशक्त है, लोगों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको सामने लाकर उनको दूर कराने का प्रयास रहता है मीडिया का। जो युवा साथी हैं इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें इसकी बारीकियों को, इसके प्लस और माइनस दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो दोनों पहलू हैं, उन्हें समझ लेना होगा। जो साथी इसमें आना चाहते हैं, पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वो डिप्लोमा या डिग्री ले सकते हैं, और उसके बाद वो किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, तो अगर आप में टैलेंट है, आप में विचार शक्ति है, आप चीजों को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, आप का लिखने का, सोचने का तरीका औरों से अलग है, तो इस फील्ड में सफलता के लिए अपार अवसर हैं।
1: पीयूषी, चलते चलते आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं आपके 2 मिनट और लूंगी।
0: मैं सभी यूथ को ये कहना चाहूंगा कि आप जो करना चाहते हैं उसे पूरी लगन, पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से कीजिए। फील्ड कोई भी हो, अगर आपने सही चयन किया है और आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। रही बात समाज सेवा की, तो आप जिस भी फील्ड में रहें, उसमें हमेशा ये सोचें कि आप परिवार और समाज और देश के लिए क्या बेहतर

0: कर सकते हैं।
1: आपसे बातचीत करी और आपने हमें इतनी अच्छी बात बताई। इसे आज बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी युवा साथियों को आपने जो जितनी भी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वागत है साथियों एक बार फिर से। और अब हम चलते हैं हमारे आज के सेगमेंट चक्रव्यूह की तरफ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपकी दोस्त, नई दोस्त लेकर प्रेजेंट करेंगी आज का चक्रव्यूह। तो सुकृति बताइए, पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है चक्रव्यूह में?
3: जी जरूर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले मानव युग अंतरिक्ष मिशन मैन स्पेस मिशन का नाम क्या है? दूसरा सवाल, हमारा भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तीसरा प्रश्न है, हमारा दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चौथा प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, पिछले चक्रव्यूह में हमने पूछा था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस बार ये प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत में मतदान वोटिंग करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? छठा प्रश्न हमारा, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? और सातवां आखिरी प्रश्न इतिहास संस्कृति का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मैं जानती हूँ इस प्रश्न के हमें सबसे ज्यादा जवाब मिलने वाले हैं।
2: बिल्कुल सही कहा सुकृति, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादातर हमारे श्रोताओं को तो जरूर पता होगा। तो सुकृति, अब पुराने चक्रव्यूह सेगमेंट के जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसके भी आंसर आप इन्हें बता ही दीजिए।
3: जी जरूर। तो सबसे पहला हमारा पुराने चक्रव्यूह का जो प्रश्न था वो था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जिसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जिसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका उत्तर है गंगा नदी। चौथा प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसका उत्तर है H2O। पांचवा प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। छठा प्रश्न, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? जिसका उत्तर है आर्यभट्ट। सातवां और आखिरी प्रश्न, सूर्य का शहर किसे कहा जाता है? जिसका उत्तर है जोधपुर।
2: सुप्रीति, चलिए अब चलते चलते इन हमारे श्रोताओं को आज के सवाल का उत्तर भी बता ही देते हैं, जहां हमने आपसे पूछा था स्टेपेडिस मांसपेशी किस अंग से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है कान। सही उत्तर दिया है ग्राम जसवड़ी जिला खंड व मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागेपुर, रवि कुमार दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा सोलापुर से विष्णु मिस्किन, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, नरवेल नगर नरवेश्वर से PS नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार डी राजेश वर्मा मध्य प्रदेश से लालाजी चौबे, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, प्रवीण चौहान सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, राजेश वर्मा, अनोखे लाल मौर्य, इन सभी ने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब चलते चलते सुन लेते हैं एक और प्यारा सा सॉन्ग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और आपके अपने भैया कृष्णवीर सिंह की राम राम।
0: सुनाओ कृष्णवीर भैया, कैसे हालचाल?
1: हालचाल बहुत अच्छे हैं और उम्मीद जा करते हैं कि हमारे ग्रामीण साथी भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया आज कुछ परेशानी महसूस भाई।
1: बिल्कुल, वो परेशानी की वजह जो रही वो रही मौसम की दशाएं, है ना। क्योंकि एकदम से जब मौसम दोपहर में बिगड़ो तो जगह जगह पेड़ बहुत टूटे और बिजली के खंभा भी बहुत जगह गिरे हैं।
0: भैया जो बिजली की व्यवस्था है ना, विद्युत आपूर्ति की, वो तो कई दिन तक बाधित रहेगी क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो बहुत ज्यादा नुकसान भाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन जो मौसम की स्थितियां हैं उन पे तो हमारो आपको कोई बस है ना।
0: बिल्कुल,
1: मौसम जब एकदम से बिगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं।
0: लेकिन एक बात भैया, हमारे जो किसान भैया बहन हैं वो ऐसी फसलों को अगर अपने खेतों में उगाएं जो अधिक आमदनी देने वाली हो, यानी कृषि विविधीकरण को अपनाएं, तो आज के समय में जैसे नुकसान इस समय बहुत ज्यादा हुआ है। कुछ फसलें इस समय हमारे क्षेत्र में मक्का की फसल काफी अधिक तादाद में खड़ी है, तो वहां पर काफी अधिक नुकसान हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी जगह पे कुछ हमारे किसान भाई नकदी फसल उठाएं, अपने खेतों में उगाएं, तो ऐसे मौसम की दशाएं उस पर विपरीत असर ना डालते हैं।
1: बिल्कुल बात सही है, कई जगह हमने देखी पालेज की फसल में जहाँ पानी लगो हो वहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश बहुत कम समय में भई है आज।
0: तो हमें कृषि विविधीकरण को भी अपनाना चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों को जो है काफी अधिक नुकसान से बचा जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो साथियों आप सब भली भांति जानते हैं और कृषि विविधीकरण जो बात का वह भैया वो आज की आवश्यकता है
0: जी। उस खेती के साथ साथ पशुपालन और भी चीजें हैं, मुर्गी पालन, यानी किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय भी बहुत जरूरी है।
1: कहने का मतलब जो है कि आपको अपने खेती बाड़ी के काम में विविधता लाने हैं
0: जी,
1: है ना,
0: तभी हमारे जो किसान भैया हैं वो सफल हो पाएंगे अपनी खेती बाड़ी में।
1: अब एक बात बताओ भैया, आज को कार्यक्रम लेके हम दोनों जने उपस्थित हैं, तो आज कौन कौन सी जानकारी साथियों तक पहुँचानी है?
0: देखो भैया, आज कार्यक्रम में एक कृषि गोष्ठी है अपने भैया बहन को सुनवाएंगे, और हमारे एक भैया किसान भाई है वो कार्यक्रम में शामिल होंगे क्योंकि आज मौसम की दशाएं काफी विपरीत रही, तो इस विषय में भी हमने बातचीत की और साथ ही साथ भरपूर मनोरंजन भी लेके आए कार्यक्रम में।
1: अच्छा, तो मनोरंजन भी साथियों को करवाने हैं अच्छी तरह से और बातचीत साथियों तक पहुँचाए, क्यों ना एक मधुर भजन साथियों को सुनवा हो जाए।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो हमारे एक नए श्रोता आज जुड़े हैं कार्यक्रम के साथ, आप हैं ग्राम व पोस्ट सेंजना तहसील और जिला संभल से सुधीर कुमार जी, आपने ये पत्र लिखा है हमें, और साथ में हैं आपके परिवार के सभी लोग, रामशंकर यादव, राजबाला यादव, लक्ष्मी यादव, विनीता यादव, रविता, भगवती।

0: देवी, आपने लिखा है कि नानी जी हैं अमन यादव, वैष्णवी यादव और सुनंदा यादव।
1: और ये चिट्ठी हमको मिली है ग्राम दूरीनगर जिला बदायूं से, भेजन बारे हमारे साथी हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभु, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निव्या और सरता।
0: बिल्कुल, तो साथियों आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पे जो

0: कृष्ण भैया
1: जी
0: जी बताओ इसके लिए स्वर किसने दो?
1: इसके लिए स्वर दो हो रविंद्र जैन और उनके साथियों ने।
0: बहुत ही मधुर भजन आपने सुनवाओ अपने सब भैया बहन के लिए। और देखो कार्यक्रम में एक जानकारी है।
1: बिल्कुल, तो जानकारी पहुंचान को जब समय है तो जानकारी कौन सी जो आपको बताने हैं?
0: वो है भैया कृषि गोष्ठी
1: जी,
0: खेती और पशुपालन, खरीफ फसलों की तैयारी। प्रतिभागी हैं कृषि गोष्ठी में श्री जितेंद्र कुमार और अनिकेत, और संचालन कर रहे हैं भैया रविंद्र कुमार।
2: किसान साथियों राम राम।
3: राम राम।
2: किसान साथियों, आज हम शामिल हुए हैं कृषि गोष्ठी में और हमारा जो कार्यक्रम है वो है ग्राम जगत। और इस कार्यक्रम में हम प्रत्येक बुधवार को कृषि गोष्ठी करते हैं, जिससे क्या है कि सभी किसान भाइयों के अलग अलग गांव के

0: अलग अलग तहसील के, अलग अलग विकास खंड के जो किसान भाई हैं इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सबके अनुभव आकाशवाणी के माध्यम से साझा होते हैं, जो कि हमारे दूर दराज जो किसान भाई बैठे
1: बहुत
0: हैं उन तक ये पहुंचते हैं
1: जी
0: आपके
1: जी
0: अनुभव। तो कृषि गोष्ठी हम प्रारंभ करें, उससे पहले हम जान लेते हैं आपका परिचय, आपका क्या नाम है और कौन से गाँव से आए हो।
1: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं ग्राम हिस्मा तहसील बहेड़ी बरेली का रहने

0: नाम हिस्मा, तहसील बहेड़ी, बरेली का रहने वाला हूँ।
1: अच्छा, और भैया आप कौन से गांव के रहने
2: मेरा
1: वाले
2: नाम
1: हैं?
2: अनकेत है, ग्राम हिस्मा, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली का रहने वाला हूँ।
1: तो अब भैया देखो, बातचीत की शुरुआत करते हैं जितेंद्र भैया से। तो जितेंद्र भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय क्या उम्र है आपकी?
0: हमारी उम्र लगभग ऐसी है, 32 साल समथिंग।
1: 32 साल की उम्र है। कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई करी है?
0: 10वीं तक पढ़ाई करी है, हाई स्कूल तक।
1: हाई स्कूल तक पढ़ाई करी है। और अगर बात करें खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी कब से कर रहे हो?
0: खेती बाड़ी तो लगभग पापा के साथ छोटे से कर रहे हैं, धीरे धीरे।
1: अच्छा,
0: फिलहाल में हम भी करते हैं और पापा भी, सब लोग मिलकर करते हैं। गांव में तो ऐसा ही, मतलब छोटे बड़े सब काम करते ही रहते हैं उसमें।
1: जी जी मतलब ये है कि जब होश संभाला
0: हाँ
1: और जब
0: बस
1: थोड़े बड़े
0: हाँ
1: हुए।
0: स्कूल भी
1: जी
0: जाते थे और खेती भी अपने उनके साथ करते थे।
1: करते थे। और अनिकेत भैया,
0: जी
1: आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है?
2: मैंने BSc कर रखी है सर।
1: BSc कौन से
2: जी
1: विषय से करी है?
2: PCM।
1: अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से
2: मैं
1: BSc करी है
2: जी।
1: और खेती बाड़ी का काम कर रहे
2: हाँ
1: हो।
2: पूरा काम
1: उम्र
2: कर रहे
1: क्या
2: हैं।
1: होगी आपकी?
2: उम्र 25 साल है
1: 25 साल है।
2: जी।
1: तो खेती कब से कर रहे हो?
2: खेती सम कर ही रहे हैं बचपन से, जैसे मान लो दौड़े हो संभाला है
1: हाँ
2: पिताजी के, जैसा अपने स्कूल से आके खेत पे गए पापा के साथ, मतलब खाना लेके गए पहले, फिर
1: हाँ
2: मतलब उसमें रुचि बढ़ाई, फिर खेती करने लगे ऐसे ही।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: हाँ, तो मतलब ये है कि देखो, जब घर परिवारों में खेती होती है
2: तो
1: तो
2: अपने
1: बच्चे
2: उस
1: शुरुआत से ही खेती से
2: खेती हाँ जी
0: करने लगते हैं वहीं
1: जुड़
0: में।
1: जाते हैं। तो आपने जैसे BSc करी है,
2: जी
1: तो ये जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, पढ़ाई लिखाई करी
2: जी
1: है, इसका प्रयोग खेती में होता है?
2: हाँ बिल्कुल होता है सर।
1: जी। कैसे, किस तरह से आप प्रयोग कर पाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई का?
2: जैसे मान लो सर कोई दवाई है,
1: हाँ
2: उस
1: हाँ
2: पे लिखा होता है मान लो कि ये किस काम आ रही है और
1: हाँ
2: किस तरह की डोज देना चाहिए, कितने दिन तक काम आती है, उसी तरीके से मतलब उसको देख के जो है वो अपने
0: उसका
2: करते
0: उपचार
2: हैं
0: किया
2: खेती।
0: जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखो, जब हम शिक्षित होते हैं तो जान लेते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया से हमारे किसान भैया जुड़ गए हैं, तो
2: जी
1: अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो हम जान सकते हैं तुरंत उसमें डाल के कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या फायदा खेती पे होगा।
2: जी जी
1: तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग खेती कर रहे हो, अब जैसे देख रहे हो कि इस समय मौसम बना हुआ है
2: जी
1: बारिश
2: बारिश
1: का,
2: का जी
1: और
2: सर
1: लगभग बारिश हो ही
2: हो
1: रही
2: रही
1: है,
2: है।
1: तो जैसे इस बारिश से किसान भाइयों को किस तरह से देखते हैं? जितेंद्र भाई, आप बताइए कि क्या इससे क्या फायदा होगा किसान?
0: इससे ये बारिश से इतना फायदा होगा, हमारा एक इंजन का पानी बचेगा।
1: हाँ
0: गन्ने में बहुत ही लाभदायक है, हर फसल में सबसे ज्यादा तो गन्ने में फायदा है,
1: जी
0: और हमारे जो गेहूं के जो खाली खेत पड़े हैं उनमें भी फायदा है, उनमें नमी मिलेगी, खेत आराम से अपने जोत लो,
1: जी
0: आराम
1: जी
0: से जुत जाएंगे, और कोई अगर किसी की खाद उद नहीं लगी गन्ना में पानी के बगैर, जहाँ पर ऐसा कुछ जमीन ऐसी होती है जहाँ पानी बोरिंग से पानी नहीं आ
1: बिल्कुल।
0: पाता है, वहां पर लोग बरसात है इसी के कारण लोग
1: इसी
0: फसल कर रहे हैं
1: फसल
0: बरसात
1: करे
0: के,
1: जा
0: तो
1: रहे
0: उनके लिए और ज्यादा फायदा है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये जो बरसात हुई है या हो रही है, इससे इस समय किसानों को बहुत
0: सबसे
1: फायदा
0: ज्यादा
1: है।
0: हाँ
1: सबसे ज्यादा फायदा तो गन्ने की फसल
0: गन्ने की
1: में
0: फसल
1: है।
0: में
1: देखा जाए तो अगर कोई बीमारी कीट भी लग रहा है तो बरसात से वो खत्म
0: खत्म हो
1: हो जाएगी।
0: जाता है
1: तो अनिकेत भाई,
0: जी।
1: आपके यहाँ कौन कौन सी खेती होती है?
2: हमारे यहाँ गन्ने की, गेहूं, धान, मतलब यही चीजें होती हैं ज्यादातर
1: अच्छा
2: जी
1: अच्छा
2: सर।
1: तो जैसे गेहूं की तो कटाई आपकी हो गई,
2: हाँ हो
1: तो
2: गई वो,
1: गेहूं का भंडारण किया या बेच दिए?
2: मतलब थोड़ी खेती थी वो, मतलब अपने खान के लायक ज्यादा करके घर पे रख लिए, थोड़े
1: अच्छा,
2: बहुत जो थे वो
1: हाँ
2: बेच के अपने गन्ने उन्ने की खेती कर रहे हैं तो उसमें लगा रहे हैं
1: उसमें लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे तो देखो किसान
2: भाई
1: भाइयों
2: यही
1: का
2: है।
1: इसमें से बचा उसमें
2: हाँ उसमें
1: लगाया
2: लगा
1: उससे
2: दिया
1: बचा, तो अच्छी बात है। अब
2: जी
1: दूसरी बात यह है कि जैसे खेती हमारे यहाँ पहले भी करते थे अनिकेत भाई, और
2: जी
1: आज
2: सर
1: भी कर रहे हैं,
2: जी।
1: तो पहले की खेती में और अब की खेती में अंतर क्या देखते हैं आप?
2: पहले की खेती में यह था सर कि मान लो हम लोग ने जानकार नहीं थे, जो कि मतलब ऐसे जो ही बहना था मतलब खेती में कर दिया, वो ऐसे ही जो हुआ सो हुआ, खरपतवार में मतलब घास उस ज्यादा हो जाती थी, तो
1: हाँ
2: जो मतलब जो मान लो माल जो भी
1: हाँ
2: निकलता था, मान लो जैसे पहले
1: हाँ
2: मान लो 1 क्विंटल निकलता था,
1: हाँ
2: अब ये हुआ है सर जो भी हम मतलब जागरूक हुए हैं इन चीजों में, खरपतवार है उसकी दवाइयों की जानकारी भी है वो
1: हाँ
2: लगाते हैं, तो हमारी जो दर है वो 4 गुनी हो चुकी है, 4 क्विंटल समथिंग हो रही है
1: बिल्कुल।
2: जी।
1: तो मतलब एक तो ये बदलाव है कि हमने समय के साथ तरक्की करी है, उत्पादन बढ़ा है। पहले तो देखो प्रकृति पर आधारित खेती
2: हाँ
1: थी,
2: खेती थी
1: बारिश हो गई तो फसल
0: पहले,
1: पल
0: इतना
1: जाती।
0: इतना जो टेक्निकल जो सामान था, जो अपने कृषि यंत्र थे पहले
1: हाँ
0: कम थे,
1: हाँ
0: अब हर
1: हाँ
0: गांव में 10-5 ट्रैक्टर हैं, उसलिए अपने खेती उत्ती में जुताई अच्छे
2: टाइम टू
0: तरीका से
2: टाइम
0: होती
2: हो रहा है
0: है,
2: काम।
0: समय काम टाइम समय से हो रहा है, हर चीज उसमें समय से लगा रहे हैं, तो और दवाइयों भी जो है मिल रही है वो भी समय से मिल रही है,
1: बिल्कुल
0: खाद पानी जो
1: बिल्कुल,
0: लगा रहे हैं टाइम से लगा रहे हैं, इसलिए पैदावार उसकी और अच्छी हो रही है पहले के मुकाबले।
1: अच्छी हो रही है। दूसरी बात यह है कि पहले हम देसी खादों से
0: देसी खाद
1: खेती,
0: लगाते
1: हाँ,
0: थे,
1: और आज रासायनिक उर्वरकों भी
0: रासायनिक हाँ
1: है
0: उर्वरक
1: उपलब्ध है, तो इससे भी फायदा हुआ है खेती को, क्योंकि तुरंत लाभ हो जाता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि

0: खेतों के लिए कौन सी खाद सबसे अच्छी है?
1: खेती के लिए वैसे तो ये देसी खाद सबसे
2: देसी खाद
1: ज्यादा
2: सबसे अच्छी
1: लाभदायक
2: होती
1: है।
2: है। हाँ, इससे
1: इसमें
2: कोई बीमारी
1: बीमारी
2: फसल
1: भी
2: में नहीं
1: कम,
2: लगती है।
1: पैदावार भी अच्छी और बीमारी भी कम होती हैं।
0: हाँ,
1: और इसमें अपने जैसे अपने खेत में गोबर की खाद डालते हैं उसमें तो और फायदा है, गोबर वाली खाद में तो हर खाद से अच्छी है गोबर वाली खाद तो।
0: बिल्कुल। तो जैसे खेतों में अगर देसी खाद अगर हमारे किसान भाई आज भी डालें तो अनिकेत भाई रासायनिक खादों की कम जरूरत पड़ेगी।
2: जी जी
0: अच्छा, रासायनिक खादों से क्या असर देखने को मिला है आपने खेत में?
2: रासायनिक खादों से हम जो फसल लगाते हैं वो तैयार तो हो जाती है दवाइयों के द्वारा, लेकिन जो व्यक्ति हैं जैसे मान लो बरियाना, मान लो किसी चीज का, जैसे मान लो किसी कोई बरियाना लगाया है उसमें मतलब रासायनिक वो लगाएंगे खाद तो या जहर लगाएंगे तो उसका असर उस पर भी पड़ता है। और उसी चीज को हम जो मतलब साथी हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, सभी लोग खाते हैं, उसका असर हम लोगों पे भी थोड़ा आता है, इससे
0: आता
2: मतलब
0: है, फसल
2: बीमारियां
0: में
2: बढ़ती
0: आता है।
2: हैं।
0: मतलब रासायनिक दवाओं का जो दुष्प्रभाव है वो हम तक पहुंचा है
2: हाँ,
0: अनाज के या सब्जियों के माध्यम
2: माध्यम
0: से।
2: से
0: तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई देसी खादों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो ये है कि जो बीमारियां हैं वो भी नहीं पन
2: वो
0: पाएंगी।
2: जी
0: अब हम बात करते हैं जितेंद्र भाई गन्ने की फसल की। तो इस समय अगर देखा जाए तो किसान भाइयों के पास मुख्यतः एक ही फसल है जिसमें वो समसामयिक काम कर सकते हैं। तो गन्ने की फसल में इस समय क्या-क्या काम किसान भाई कर सकते हैं?
1: गन्ने की फसल में तो क्या पानी लगा रहे हैं और गन्ने की खुदाई हो रही है, और
0: हाँ
1: जब गन्ने की खुदाई उदाई आराम से करते हैं, अब बरसात हो गई, जैसे अब बरसात हो गई तो खुदाई उदाई बंद हो जाएगी और पानी लग जाएगा,
0: हाँ
1: और गन्ने की खुदाई के बाद जो अगर उसमें देखते हैं अगर कोई इसमें बीमारी है तो उसकी किसी भी जैसे अब इसमें बीमारी लगती है, सूढ़ी लग जाती है, कनिया टाइप की जो नीचे से पौधा होता है पीला पड़ता है उसमें सूढ़ी लग जाती है, चींटी लग जाती है, तो
0: हाँ
1: उसके लिए हम कोई जहर लगा देते हैं, थाइमैक्स वगैरह जो और इसमें प्रोफेक्स वगैरह कोई जहर है वो लगा देते हैं, उससे
0: बिल्कुल
1: बहुत फायदा होता है गन्ने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखा जाता है अनिकेत भाई कि
1: जी
0: अब जैसे बरसात तो है ही लेकिन मई का महीना है, जून में और ज्यादा गर्मी होती
1: गर्मी
0: है,
1: में
0: मई में भी गर्मी होती है, तो ऐसे में कभी कभी क्या है कि पत्ती भी झुलसने लगती है गन्ने की।
1: जी
0: तो उसमें फिर क्या किसान भाई करते हैं, क्या काम करते हैं?
2: पत्ती झुलसती है, सबसे पहले तो अगर उसमें पानी नहीं लगा है तो उसमें पानी लगाते हैं, उसके बाद जैसे मान लो पानी लगाते हैं हमें लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है फसल में तो हमें मतलब दवाइयां लेके आते हैं उसी के
0: हाँ,
2: अनुसार,
0: अनुसार।
2: और वो उनमें लगाते हैं टाइम टू टाइम। और सबसे मेन चीज तो ये है गन्ने में खुदाई और पानी में समय से देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: हाँ
0: गन्ने की जो फसल है इस समय जैसे अब खरार का महीना चल रहा है तो मान लो बरसात है भाई, बरसात का असर हफ्ते एक
2: हाँ
0: डेढ़ हफ्ते रह सकता है,
2: जी
0: उसके बाद जब जब आवश्यकता है तो हमें सिंचाई करनी चाहिए और खुदाई करनी चाहिए। खुदाई से क्या फायदा होता है गन्ने की फसल को?
2: खुदाई से ये फायदा होता है सर, जो अब बन जाती है गन्ना बोने के बाद खुदाई हम लोग करते हैं तो कल्ले के पास से जो भी मिट्टी होती है वो मतलब मुलायम हो जाती है और सही हो जाती है, उसके जो हवा उस पर हवा लगती है उसके द्वारा जो कल्ला होते हैं वो मतलब अपनी ग्रोथ करते हैं
0: बिल्कुल
2: और
0: बिल्कुल।
2: ऊपर के लिए जल्दी बढ़ते
0: मतलब कहने का मतलब ये वायु का संचार है जो वो
2: हैं।
0: खेत में होने लगता है
2: हाँ
0: जिससे जो बढ़वार है पौधे की
2: वो
0: वो
2: बढ़ने
0: हो
2: लगती
0: जल्दी
2: है।
0: होती है, जल्दी हो जाती है। अब जैसे आने वाला समय धान की फसल का है मुख्यतः, तो जैसे धान की फसल की पौध डालने में अभी तो टाइम है क्योंकि 1 जून के लगभग और 1 जून से 15 जून
1: मई
0: के,
1: जून मई में लगभग लास्ट मई से और जून में इस
0: हाँ
1: फर्स्ट
0: 15 जून तक
1: हाँ
0: उसकी
1: बहुत बढ़ जाएगी।
0: पौध डालते हैं। तो पौध डालने के लिए क्या-क्या काम किसान भाइयों को करने होते हैं, किस तरह से खेत तैयार करना होता
1: तो
0: है?
1: पौध डालने के लिए अपना खेत, जिस खेत में अगर आप पौध डालेंगे किसान भाई तो उस खेत को सबसे पहले सफा करें, बढ़िया करके साफ कर दें, उसमें घास और कबार मतलब घास घास पतवार न हो, अगर हो तो वो उसे पहले से अपने कंट्रोल कर दें। और अपने जो पौध डालेंगे तो जो धान की पौध लेके आएंगे उसका बीज सबसे बढ़िया बीज होना चाहिए, साफ सुथरा वजनदार, जो
0: बिल्कुल
1: एकदम अपने जब बीज उसमें पौध डालें तो एक एक पौधा उसका जम के आए,
0: बिल्कुल
1: बीज हमारा अच्छा होगा तो उसकी पौध भी अच्छी होगी, पौध अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो
0: बिल्कुल
1: इसलिए बीज पर और अपने जो जमीन पर सबसे ज्यादा उस पर जो पौध डालें तो देसी खाद डाल दें, देसी खाद ना हो तो फिर तो हमें रासायनिक खाद जैसे डीएपी वगैरह या एमपी वगैरह इनमें से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा नीचे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर जल्दी तैयार हो जाएगी वो।
0: और वैसे अनिकेत भाई एक बात
2: जी
0: और भी है कि
2: जी सर
0: पौध जो हम डालते हैं बहुत छोटे से एक टुकड़े में डालते हैं,
2: हाँ
0: और उसकी सबसे बड़ी बात तो है कि वो खेत को हम पूरी तरह समतल कर लें
2: जी
0: जिस हिस्से में पौध डालेंगे। और बात यह है कि इतने छोटे टुकड़े के लिए देसी खाद की उपलब्धता बड़ी कठिन नहीं है, तो खरीद रहे हैं वही प्रजाति हो उसमें दूसरी प्रजातियां का मिश्रण ना हो, और भौतिक रूप से सही इसलिए कि उसमें मिट्टी ना हो, कूड़ा कचरा ना हो, अगर बीज खराब हो तो उसको हम निकाल
1: निकाल दें, खराब खराब।
0: तो इस तरह से तो आप दोनों भैया

0: लोगों ने बताया कि हम किस तरह से मतलब पौध की तैयारी कर सकते हैं, खेत की तैयारी कर सकते हैं, और आगे समय ही आ चला है, अब धीरे धीरे किसान भाई शुरू कर देंगे। एक काम और हमारे किसान भाई जितेंद्र भाई करते हैं गर्मियों में, गर्मी की जुताई का, जैसे आपने कहा अभी बारिश हो रही है तो पलेवा का पैसा बच गया है, और इसके बाद जब ईंट खेतों में आ जाएगी तो किसान भाई धान के खेतों की अभी से जुताई कर देंगे। गर्मी की जुताई से क्या फायदा होता है?
1: गर्मी की जुताई से ये फायदा होता है, हमारे जो खेत में जो घास होती है वो नष्ट हो जाती है सूख के, और जो थोड़ी बहुत जो उसकी गर्मी है वो भी बाहर अपनी निकल जाती है।
0: जी जी।
1: और खेत गहरा जो थोड़े जब खेत सूखे हुए होंगे तो अपना थोड़ा गहरे करके जोत लो और उसकी जो घास है सब खत्म हो जाती है,
0: घास खत्म हो जाती
1: जी
0: है
1: गर्मी की जुताई से।
0: हाँ, और ऐसा भी है कि गर्मी की जुताई से खेत खुल जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो जब हम धान लगाने का समय होता है तो उस समय खेतों में कम मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे से हम दलदल तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे गर्मी की जुताई की बात हमने कर ली, हरी खादों का प्रयोग बहुत जरूरी है खेतीबाड़ी के लिए। सरकार कहती है कि हमें की आमदनी बढ़ानी है, किसान भाइयों के उद्धार के लिए काम करना है, तो किसान भाई खेती के साथ साथ और क्या काम कर सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े?
1: गन्ना कर दिया, गन्ने में हमने और कोई फसल लगा दी, जैसे उसमें लहसुन है अपने, कोई और कोई सी फसल लगा सकते हो जो मौसम के अनुसार जो फसल हो सके। लोग गोभी लगा देती हैं।
0: हाँ हाँ।
1: गोभी भी लगा देती हैं, कोई खीरा भी लगा देती हैं, कोई कोई आलू भी लगा देते हैं, अक्टूबर वाले जो समय में गन्ना होता है उसमें आलू भी लगा देते हैं, ऐसे एक फसल में डबल डबल फसल कर लेते हैं। और लोग हमारे यहाँ तो पता है गेहूं बहते हैं, गेहूं में उसमें सिवाली लगा दी, फौरे से गेहूं बह दिए, एक रेजा गेहूं का फिर उसमें सिवाली का एक रेजा, तो ऐसे ही एक एक फसल में दो दो फसल तैयार करती हैं, उसमें हमें उतनी ही लागत में डबल फायदा हो जाता है।
0: बिल्कुल, अगर हमारे किसान भाई सह फसली अपनाएं, एक फसल के साथ दूसरी
1: दो फसल
0: करें। करने लगे तो उनका जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा और उनकी आमदनी
1: भी बढ़ेगी,
0: आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों को देखो जितेंद्र भैया ऐसी अच्छी बात बता रहे हैं कि इस तरह से हमारे भाई गन्ने के साथ गेहूं के साथ सह फसली का लाभ भी कर सकते हैं। आपने देखा है अनिकेत भाई कि लगातार खेती हम कर रहे हैं, आपने शुरुआत में बताया था कि पहले हम प्राकृतिक रूप से खेती करते थे, आज संसाधनों की उपलब्धता हो गई है तो हम खेती करने लगे हैं, उत्पादन भी अच्छे लेने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बात भी देख रहे होंगे, हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो कम होती चली जा रही है, उसका क्या कारण है?
2: उसका कारण ये है सर, जो रासायनिक खादे हैं, दवाइयां हैं, ये जो लगाते हैं यूरिया है, सबसे वैसे लगाते तो हैं सभी लोग।
0: हाँ।
2: लेकिन जमीन के लिए सबसे खतरनाक चीज यूरिया है, इसे हम ना लगा के देसी खाद डालें, खेत की जो मतलब ऊर्जा है वो सब बची रहेगी, फसल के लिए अच्छा रहेगा और जमीन के लिए भी अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, एक तो ये सह फसली अपनाएं, दूसरी बात ये है कि अगर हम संतुलित प्रयोग कर दें, मतलब रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग कर दें और देसी खादों को बढ़ा दें। हरी खादों का प्रयोग भी करते हैं, आपने देखा होगा आपके ही गाँव में बहुत लोगों ने ढेंचा बो रखा होगा, उसको अब आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो उस मिट्टी में मिला देंगे,
1: उससे
0: क्या फायदा होता है?
1: उससे ये फायदा होता है, जब ढेंचा हम लोग ढेंचा इस समय ढेंचा बया जा रहा है, कुछ लोग बह रहे हैं कुछ का जमाया, तो जो लोग बह रहे हैं तो जब लगभग होगा 3-4 फीट का तो उसे हम लोग जोत देते हैं, खेत में सूखा खेत होता है जोत देते हैं, उसमें फिर जोतने के बाद में महन महन करके जोतते हैं उसे, हैरो से या फिर किसी से भी जोत दो, रूटर वेटर भी चल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उसे जोतने के बाद में उसमें पानी भर देते हैं, पानी भर के उसे फिर सड़ाया जाता है, उसमें गलाया जाता है, उससे फिर जब उठा दिए फिर जोता जाता है, उससे हमारी जमीन को ताकत मिलती है, एक खाद का काम करते हैं वो, देसी खाद डाल, जैसे अब अपने रासायनिक खाद मत डालो, देसी खाद का यही है कि अपना ढेचा उसमें गलाकर और अपनी भूमि को खेत को खूब मजबूत बनाए।
0: हाँ हाँ।
1: इसे ये कारण करके ढेचा गलाए गए और फिर अपनी जानदार हो जाएगी ये जमीन।
0: बिल्कुल, कार्बनिक खादों की जो पूर्ति है वो मिल जाएगी और इससे क्या है कि मिट्टी और
1: मजबूत हो जाएगी, जानदार और मजबूत हो जाएगी।
0: तो हमारे किसान साथियों को हरी खादों का प्रयोग
1: करना चाहिए
0: खेती बाड़ी में। और दूसरी बात यह है कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय किसान भाइयों ने पशुपालन भी कम कर दिया है जिसकी वजह से देसी खाद की उपलब्धता हमको कम हो पा रही है, तो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से?
2: पशुपालन के लिए मतलब ये होता है सर, मान लो फसल है, कोई भी फसल लगा रहा है, जैसे मान लो गन्ने ही मान लो एक तरफ से, उसमें घास भी है और उसमें जैसे मान लो जो रासायनिक खाद अगर हम डाल रहे हैं तो उस पे जानवरों पे भी असर आ रहा है उस जहर का।
0: बिल्कुल,
2: इस कारण हम उसमें ये रासायनिक खाद ना लगा के हरी खाद का मतलब पहले प्रयोग कर लें और मतलब जो वो खाद होती है देसी खाद उसका प्रयोग करें, इससे हमारे जानवरों पे भी मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कोई उन्हें बीमारी

0: भी नहीं लगेगी और उन वो स्वस्थ रहेंगे। कोई चीज खाएंगे तो मान लो जैसे चारा, मान लो हरा
1: हाँ
0: चारा,
1: हाँ
0: हरे चारे में अगर हम जहर अगर मार दिया तो जहर का प्रभाव जानवर तक जाएगा,
1: हाँ
0: इसलिए उसको ना लगा के हम उससे पहले ही हरी खाद का प्रयोग कर लें। जैसे ढेचा मान लो, वो जो है नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी करता है,
1: बिल्कुल
0: यूरिया में जो होता है वो नाइट्रोजन होता है ज्यादातर,
1: जी
0: उसको ना डाल के वो मान लो उसमें तो वो पूर्ति करता है, जमीन की मजबूत होती है और फसल हरी भरी होती है, रसदार होती है, मान लो तो जानवरों के लिए फायदेमंद होती है।
1: बिल्कुल। और एक बात और भी है, देखो जितेंद्र भाई, अनिकेत भाई, हम बताएं कि
0: जी
1: हमारे
0: सर।
1: किसान साथी फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं। फसल चक्र अपनाने से ये फायदा होगा, अगर हम गेहूं के बाद अभी एक दलहनी फसल ले लें, तो अगर हम फसल का रोटेशन अपने खेतों में बनाते रहें तो जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। हम गेहूं के बाद धान और धान के बाद गेहूं, जब एक सी फसलें लेने लगते हैं खेतों से, तो वहां भी मिट्टी पर असर पड़ता है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो सही से नहीं पनप पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार छीण होती जा रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे किसान भाई अगर खेती के साथ पशुपालन करें तो क्या दोहरा फायदा हो सकता है?
0: खेती के साथ पशुपालन करें तो उसमें हमें गोबर भी, जो पशु पालेंगे हम लोग तो उससे हम दूध भी बेचेंगे, दूध से भी हमारी इनकम बढ़ेगी और जो हमारा उसका जो गोबर होगा उससे उपले भी बन जाते हैं और खेत में हमारा जो खाद भी तैयार हो जाती है उससे।
1: बिल्कुल
0: इसलिए पशुपालन किसान भाई को करना चाहिए,
1: जी
0: देसी खाद मिलेगी हमें और उसका दूध से हम अगर अपने बच्चों को पिलाएं अब खुद और बचे तो अपना उससे बेचें, उससे हमारी और भी काम खर्चे हो जाएंगे उससे पूरे।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा भी जाता है, किसान भाई अगर दो सही भैंसे पाल लेते हैं तो घर का खर्चा भैंस
0: भैंस
1: निकाल लेती
0: भैंस
1: है,
0: निकाल लेती है।
1: तो यह है कि हमारे जो खेती पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ता
0: हाँ,
1: है और अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन
0: बढ़ जाता
1: जाता
0: है।
1: है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार योजनाएं चला रही है उनका लाभ आप लोग ले रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
0: जी
1: है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इनका लाभ किसान भाई ले रहे हैं? कितनी जागरूकता है गांव में, आपके लोग ले रहे हैं योजनाओं का लाभ?
0: ले रहे हैं सर,
1: ले
0: सभी
1: रहे
0: ले
1: हैं।
0: रहे हैं।
1: तो ऐसे में अब आज चलते चलते क्या किसानों को बताना चाहते हैं आप, रेडियो के माध्यम से, इस कृषि गोष्ठी के माध्यम से क्या सलाह देना चाहते हैं अपनी तरफ से?
0: हम सर ये सलाह देना चाहते हैं सभी किसान भाई, कोई भी फसल बोने से पहले जो देसी खाद होती है या उसका प्रयोग करें, या मान लो हरी खाद होती है जैसे ढेंचा मान लो, उसको पहले बो दो, उसमें जुतवा के पानी भर दो, उसमें गला दो उसे, फिर जुताई करवाओ, फिर मान लो कोई फसल बोनी उसके बाद बहना है उसको, उससे फसल को भी मजबूती मिलती है और जमीन को भी मजबूती मिलती है,
1: जी
0: कोई भी उसमें समस्या नहीं आएगी, बीमारियां नहीं दौड़ेंगी। अगर हम रासायनिक खाद लगाएंगे उसमें तो मनुष्य है, अपना जानवर है, सभी पे उसका प्रभाव पड़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी, फिर हम लोग मतलब कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हम ऐसा ना करके रासायनिक खाद और ढेंचा हरी खादों का ही प्रयोग करें।
1: बिल्कुल। जितेंद्र भाई आप क्या कहना चाहते हैं आज रेडियो के माध्यम से, कोई एक बात जो आपके मन में हो? आप युवा हैं और खेती कर रहे हैं, और आजकल के युवा जो हैं वो भटक रहे हैं, मान लो वो घर की खेती छोड़ के 8,000-10,000 की नौकरी अगर बाहर जाके कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं?
0: मैं कहना चाहता हूँ कि वो 8-10 हजार की जो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए अगर जो भी उनकी जमीन है वो जमीन में अपनी डबल मेहनत करें, अपने आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, और कोई बरियाना अगर करने में लायक हो तो बरियाना करें। उसमें बरियाने में क्या है, 2-3 बीघा में अगर उन्होंने बरियाना कर लिया तो उनका खर्चा और उसमें अपनी आमदनी होती रहेगी उससे,
1: बिल्कुल
0: और थोड़ी बहुत खेती करें, क्योंकि खेती पे ध्यान आजकल युवाओं का कम है,
1: हाँ
0: क्योंकि वो ज्यादातर खेती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बड़े बूढ़े हैं जो पुराने वो ही लोग कर रहे हैं, अब ज्यादातर युवा लोग खेती पे ध्यान कम दे रहे हैं,
1: कम दे रहे
0: शहर
1: हैं।
0: के तो दे ही नहीं रहे हैं, गांव के तो भी अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान तो दे रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: आने वाले समय में युवाओं खेती करना भी भूल जाएंगे कि क्या क्या हमें कैसे करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: इसलिए सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है रेडियो के माध्यम से कि अपनी अपनी जो खेती है वो अपने आप से थोड़ा बहुत तो अपने बुजुर्गों के साथ, अपने पिताजी के साथ, भाइयों के साथ मिलजुल कर थोड़ी बहुत खेती भी करना जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो देखो भैया, अब समय भी हो चला है, तो आज हम कृषि गोष्ठी को यहीं संपन्न करते हैं, और आपका संदेश भी आज इस कृषि गोष्ठी के माध्यम से बहुत से हमारे किसान भाइयों तक पहुंचेगा, युवाओं तक पहुंचेगा। आप कृषि गोष्ठी में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे कृषि गोष्ठी, खेती और पशुपालन, खरीफ फसलों की तैयारी। प्रतिभागी है श्री जितेंद्र कुमार और अनिकेत, और आज संचालन कर रहे भैया रविंद्र कुमार। और कृष्ण भैया,
1: जी
2: आपका सुनवा
1: भैया,
2: रहे अपने भैया बहन को।
1: देखो बहुत देर से हमारे जो साथी हैं वो जानकारी को सुन रहे, अब सोच रहे होंगे कुछ उनको मनोरंजन करवाओ जाए।
2: तो कौन सुगीत लेके आए हो?
1: एक बहुत अच्छा लोकगीत और लेके आए हैं बबीता शर्मा के स्वर में, बाको सुनने के लिए कुछ पत्र भी हैं और
3: कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स भी हम तक पहुंचे हैं।

0: बिल्कुल, ये चिट्ठी हमको मिली है मीरगंज बरेली से। विघ्नेश ठाकुर, विवेक, अभय उर्फ राज ठाकुर, रिया, अनिकेत प्रताप सिंह और दिव्यानी ठाकुर,
1: ये हैं हमारे श्रोता जिला मुरादाबाद के ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य।
1: धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से आप हैं हमारे साथी। आप हैं निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।
0: और जे हमको संदेश मिलो है सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से, लाला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। तो आप सभी के अनुरोध पर आप सुन लेते हैं बबिता शर्मा के स्वर में जी मधुर लोकगीत।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: किशन भैया
3: जी,
2: अब अपने भैया बहनों को एक जानकारी और सुनवा दें।
3: बिल्कुल सुनवाने हैं, क्योंकि कार्यक्रम में समय भी है और आप बातचीत करके भी लाए।
2: आज बहुत अधिक तेज आंधी बारिश भई हैगी, बस का नुकसान भवो जाए इस संबंध में हमने बातचीत करी है वीरेंद्र सिंह ग्राम जगमनपुर विकासखंड मजगवा जनपद बरेली से, तो आप जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। किसान भाई, प्रतिदिन कार्यक्रम में हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं। कार्यक्रम में जानकारी तो आज भी हम आपको लेकर के आए हैं, लेकिन आज दिन में जो बहुत तेज तूफान टाइप आंधी आई है और उसके साथ में बहुत झमाझम बारिश भी हुई है, इससे हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनके खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं तमाम जिधर भी नजर जाती है उधर टूटे ही टूटे नजर आते हैं। साथ ही साथ जो यूकलिप्टस के पेड़ हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों पर एक मुश्त आमदनी के लिए लगा रखे हैं उनमें बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में एक किसान भाई हैं, उनसे पूछते हैं। वो अपने ट्यूबवेल पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि ट्यूबवेल का जो ट्रांसफार्मर है वो धराशायी हो चुका है, तो उन्हीं से जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान आज के समय में इस आंधी से हमारे किसान भाइयों का हुआ है। आपका शुभ नाम?
4: मेरा नाम वीरेंद्र सिंह।
2: कहाँ रहते हैं आप?
4: हम जगमनपुर रहते हैं।
2: जगमनपुर ये कौन से ब्लॉक का गांव है?
4: मजगवा।
2: मजगवा। और जनपद?
4: जनपद बरेली।
2: तहसील हमारी
4: आंवला
2: लगती है। तो जानना चाहेंगे कि इस समय आप अपने ट्यूबवेल पर खड़े हुए हैं, दिन में जो आंधी आई है क्या हुआ है?
4: ये आंधी आई, बहुत भयंकर आंधी आई, बारिश आई।
2: अच्छा।
4: उससे जो है लाइने अस्त व्यस्त हो गई ट्यूबवेल की, और जो है काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पेड़ टूट गए
2: जी,
4: लिप्टिस के और पेड़ थे वो भी टूटे हुए हैं
2: जी। पूरा रोड जो है हम देख रहे हैं, हम भी निकल करके यहाँ से जा रहे हैं, जगह जगह वृक्ष टूटे हुए पड़े हुए हैं और निकलने में भी बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे क्या क्या हमारी खेती बाड़ी को नुकसान हुआ है?
4: खेती बाड़ी और फिर आज कोई खेती नहीं मतलब हुआ है, खाली पड़े हुए हैं, लेकिन लाइट की समस्या हो गई
2: जी। लाइट की समस्या हो गई, कई दिन तक लाइट नहीं आई
4: है।
2: जब तक ये लाइनें ठीक नहीं होंगी तब तक लाइट नहीं आएगी। इस समय खेतों में अब क्या विचार बनाया है? बारिश तो हो गई है,
4: धान लगेगा।
2: अच्छा, तो धान की जो बेड़ है वो कब डालेंगे?
4: 10 दिन बाद पौध पड़ेगी।
2: अच्छा, तो कौन कौन से धान की वैरायटी आप लगाते हैं खेतों में?
4: 1100 की लगाते हैं, 15 जी लगाते हैं, सरबती लगाते हैं।
2: अच्छा,
4: और हाइब्रिड लगाते हैं
2: जी। अपने क्षेत्र में धान की खेती कुछ ज्यादा ही होती है?
4: हमारे यहाँ धान ही होता है, धान गेहूँ दो ज्यादा होती है।
2: अच्छा, दो फसलें ज्यादा होती है। तो अब जो पौध डालेंगे वो अगेती धान की पड़ेगी?
4: पड़ेगी,
2: वो लगभग
4: वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा काम।
2: अच्छा, जुलाई में धान की
4: रोपाई शुरू हो जाएगी।
2: किशमीर जी, क्या पूछना चाहेंगे अपने साथ में किसान भाई हैं वीरेंद्र जी?
3: बहुत सी बातें आपने पूछी हैं इनसे, और जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात हुई, और जो मुख्य बात आई वो यही कि धान की फसल की तैयारी करेंगे और पौध डालने की तैयारी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, पौध की तैयारी करेंगे तो खेत तैयार करेंगे उसमें क्या ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से?
4: खाद DAP डालते हैं, और DAP डाल के उधर मतलब कीटनाशक डालते हैं।
3: अच्छा,
4: और जो है खरपतवार नाशक डालनी पड़ती है।
3: तो कितना बीज तैयार करते हैं उसके लिए, जो जगह डालते हैं जिस खेत में डालेंगे?
4: मतलब एक किलो बीघा।
3: एक किलो
4: बीघा?
3: बीघा तो हो गया बीज, लेकिन जो जिसमें जिस क्षेत्र में डालेंगे पौध, जिस खेत में डालेंगे वो एरिया कितना रखते हैं?
4: 4 से 5 बीघा मतलब पिटते हैं, 1 किलो पर 1 मतलब बीघा के हिसाब से।
3: अच्छा अच्छा,
4: 1.5 से 2 क्विंटल पौध पड़ेगी।
3: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बासमती धान मुख्य रूप से करते हैं?
4: हाँ।

0: किशोर जी, आज का जो दृश्य देख करके हमारा भी मन थोड़ा विचलित हुआ कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। किसान भाई बहुत ज्यादा हतोत्साहित है कि अब कई दिनों तक ग्रामीण एरिया है उसमें बिजली भी नहीं आएगी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में बताने के लिए आपका।
1: साथियों, अभी आपने सुनी क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता तेज आंधी और बारिश से नुकसान के संबंध में। जानकारी दे रहे हैं आपको श्री वीरेंद्र सिंह, आप ग्राम जगमनपुर विकासखंड मजगुबा बरेली के निवासी हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया हेडलपाल से।
0: और कृष्णवीर भैया, कार्यक्रम में एक गीत और सुनवा दें चलते चलते।
1: बिल्कुल, तो जो पत्र हम तक पहुँचू है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से भेजने वाले हैं सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, केशव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव।
0: और जे हमको संदेश मिलू है कस्बा केवलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू और चंद्रपाल। और जे हमको संदेश मिलू है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से भेजन बारी हमारे साथी हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, आसिक हुसैन और अल्ताफ भाई। तो आप सभी के अनुरोध पर आप सुन लेते हैं मनोरमा तिवारी के स्वर में जे मधुर लोकगीत।

0: साथियों, अभी आपने सुनो जो बहुत ही मधुर लोकगीत मनोरमा तिवारी के स्वर में। और भैया हरिपाल सिंह
1: जी,
0: अब समय बिल्कुल ना है कि कोई और बातचीत आज के कार्यक्रम ग्राम जगत में श्रोता साथियों से करीजिए।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या कहना चाह रहे हो?
1: हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया जो मौसम में बरसात हो गई है, अगर मौसम खराब होगा, मैं अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें और आने वाले समय में जो अपने खेत गीले हो गए उनकी जुताई औंठ आने पर कर दें, जिससे गर्मी की जुताई भी हो जाएगी और हमारे किसान भाइयों के खेतों से अच्छी उपज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप सब भैया की जयबात को रखोगे ध्यान, ऐसी हम आशा करते हैं। और आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया कृष्णवीर सिंह
1: और अपने भैया हरिपाल सिंह को देव अनुमति और करो स्वीकार। भैया बहनों,
0: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।
1: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर।
0: श्रोताओं, पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार हैं स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है।

0: इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के

दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार, प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित, 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं लीजिए, आप सुनिए कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद अकीक।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
3: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
2: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
3: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में।
2: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी महेश्वरी।
3: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
4: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन में हम बात करेंगे डेंगू बुखार के विषय में। जी हाँ, आज का विषय है डेंगू बुखार कब सामान्य कब गंभीर, आपकी शंकाओं के समाधान भी हम जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका आकाशवाणी के स्टूडियो।
5: जी धन्यवाद, स्वागत करने के, नमस्कार सबको।
4: और डॉक्टर साहब, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है डेंगू बुखार।
5: जी
4: ये हमेशा चर्चा में रहा है, जैसे ही किसी को पता लगता है कि डेंगू बुखार हो गया
5: जी,
4: तो मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं कि अब तो प्लेटलेट कम हो जाएगी, खून चढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं होगा
5: जी।
4: तो आज विस्तार से बातचीत चाहेंगे आपके माध्यम से हो और हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचे। सबसे पहले ये बताइए, कहते हैं कि डेंगू बुखार एक विशेष मच्छर से होता है।
5: जी जी, जी
4: क्या
5: जी।
4: सच्चाई है, क्या है वो मच्छर, आखिर कैसे काटता है, कैसे होता है डेंगू बुखार?
5: जी ये समय भी आ रहा है कि अब डेंगू बुखार जो है खासकर सितंबर के महीने से फैलना स्टार्ट हो जाता है, बरसात जैसे खत्म होती है
4: जी।
5: तो डेंगू का बुखार जो होता है ये सामान्यतः जो है एडीज नामक मच्छर होता है, मादा मच्छर जो होता है उसके काटने से फैलता है। ये वायरस जो होता है एडीज मच्छर जो होता है उसके सलेवरी ग्लैंड में इकट्ठा रहता है।
4: अच्छा।
5: और ये जो मादा मच्छर है ये किसी इन्फेक्टेड मरीज को अगर काटती है जिसके अंदर डेंगू का वायरस है,
4: पहले से
5: ब्लड में, हाँ पहले से मौजूद है, तो उसको अगर काटेगा उसका ब्लड लेगी तो उसके अंदर आ जाएगा, फिर उसके स्टमक में जाके ये अपना नंबर बढ़ाते हैं और जाके सलेवरी ग्लैंड में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो मच्छर जाके जब काटता है तो उसके अंदर मच्छर जब खून चूस लेता है तो सलेवरी ग्लैंड से वो वायरस भी छोड़ देता है।
4: अच्छा।
5: जिससे ये डेंगू का बीमारी जो है फैलती है।
4: डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि डेंगू का मच्छर आलसी होता है, टाइगर मॉस्किटो भी इसे कहा जाता है, ये दिन के समय काटता है, साफ जगह में रहता है।
5: जी बहुत अच्छा है, इसमें एक चीज बताऊंगा, तो आलसी नहीं होता है, बहुत अच्छी दौड़ लगाता है। टाइगर मॉस्किटो इसलिए बोलते हैं, इसके जो पैर होते हैं
4: जी,
5: तो उसमें ना धारियां ऐसी होती हैं जैसे कि टाइगर की होती हैं।
4: अच्छा।
5: तो देखने में वो टाइगर, इसीलिए नाम रखा गया टाइगर मॉस्किटो।
4: हाँ।
5: और ये साफ पानी पसंद करता है।
4: अच्छा।
5: साफ पानी में अपना जो है प्रजनन करता है। हाँ। वहां अपना नंबर बढ़ाता है
4: जी।
5: तो खासकर जैसे बरसात होती है, बरसात के मौसम में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसात के मौसम को लोग साफ पानी बोलते हैं, या तालाब है, तालाब में जो है पानी इकट्ठा हो रहा है, या फिर नालियों में पानी इकट्ठा हो रहा है।

0: है, या कहीं पे पानी का बहाव अच्छा नहीं है, बारिश हुई बहुत
1: रुके
0: भर
1: हुए
0: गया
1: पानी
0: रुके
1: का।
0: हुए पानी के
1: जी
0: अंदर, जिसको हम लोग साफ पानी, उसके सतह पर जो है
1: अच्छा,
0: ये प्रजनन जो
1: ऊपर
0: है,
1: वाली
0: हाँ
1: सतह पर।
0: ऊपर वाली सतह पर इसका लार्वा रहता है। तो
1: अच्छा
0: इसके लार्वा को इसलिए मारने के लिए हम लोग ऐसे चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे छिड़काव करते हैं
1: जी,
0: कि सतह जो है ऐसी बना दी जाए कि इसका लार्वा वहां पे सर्वाइव ना कर
1: ना
0: पाए।
1: कर पाए।
0: तो बहुत सारे ऑयल प्रिपरेशन वगैरह लोग, कुछ लोग गांव में कहते हैं मिट्टी का तेल छिड़क
1: जी
0: दो
1: जी जी
0: नाली में, तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, तो
1: हाँ
0: सतह पे ऑक्सीजन डिजॉल्व कम कर देता है ऑयल,
1: जी।
0: तो डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
1: ओहो,
0: तो उसके लार्वा ही मर जाएंगे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी तेल डालने से ऐसा होता है या फिर सिर्फ मिट्टी का तेल ही डालना उचित होता है?
0: नहीं, कोई भी तेल डाल सकते हैं, वो ऐसे तेल जिनका सरफेस टेंशन ऐसा उस तरह का हो ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए वहां पे,
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा जो
0: डिजॉल्व
1: एक
0: ऑक्सीजन,
1: एक लेयर बना दे पानी
0: हाँ
1: की सतह
0: पानी के
1: पर।
0: ऊपर सतह पर एक लेयर बना दे जिससे कि वो ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं पहुंचेगी और लार्वा उनके पहले ही मर जाएंगे, तो
1: जी
0: मच्छर बनेंगे ही नहीं।
1: सर, कूलर के पानी में कहते हैं इसका लार्वा हो सकता है, और एसी जहां चलता है वहां भी अगर कहीं पानी है तो क्या सच्चाई है? क्या एसी कूलर से भी इसकी दोस्ती होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, एसी है, कूलर है, कूलर का पानी भी साफ पानी हम लोग भरते हैं,
1: जी
0: तो कूलर में भी बहुत दिनों तक अगर पानी रखा है भरा हुआ है तो उस पर भी ग्रो कर सकता है, या एसी का पानी कलेक्ट हो रहा है इकट्ठा हो रहा है बाल्टी वगैरह में, तो कई किलो लोग रखे रहते हैं कि एसी का पानी कौन रोज रोज फेंकेगा,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: उसमें भी ये ग्रो करता है और मच्छरों का नंबर बढ़ता है और ये बीमारी फैलती है।
1: तो लब बोलो आप, ये है कि साफ पानी इसको पसंद है, साफ
0: जी
1: पानी में रहता है, वहीं प्रजनन करता
0: वही
1: है।
0: प्रजनन करता है।
1: तो हमें ये कोशिश करनी है कि अब इस मौसम में कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें, और अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसके, जैसे आपने बताया, मिट्टी का तेल है, कोई भी तेल डाल के
0: जी
1: उस पानी के ऊपर मच्छर को प्रजनन करने के लिए जो अनुकूल वातावरण मिलता है वो उत्पन्न न होने दें।
0: जी वैसे आज इस टाइम पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है
1: जी
0: कि कहते ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन
1: थैंक
0: क्योर,
1: यू,
0: तो
1: बिल्कुल
0: हम बीमारी को आने ही ना दें,
1: बिल्कुल
0: और यही वो समय है जो आगे डेंगू की बीमारी गंभीर आ सकती है नहीं आ सकती, तो
1: जी
0: अभी
1: जी
0: ही पानी कलेक्ट हो रहा है, अभी बरसात का मौसम है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि
1: जी
0: हम
1: जी
0: उस बीमारी से बचे ही जाएं, वो बीमारी आए ही क्यों,
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: बिल्कुल डॉक्टर
0: अभी
1: साहब
0: अपना ध्यान रखें, जो भी चीजें उपाय हैं, पानी कहीं कलेक्ट ना होने दें,
1: जी
0: कहीं पानी कलेक्ट हो रहा है तो जैसा आपने बताया जो भी प्रिपरेशन वगैरह हैं
1: जी
0: उनको बोलें, या आप अपने निकटतम जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य केंद्र है
1: जी जी
0: या सीएमओ को जो है आप बताएं कि जो है हमारे यहाँ पानी कलेक्टेड है, तो उसका वो समाधान करें, या नगर निगम को बताएं उसके
1: बिल्कुल
0: लिए जो है,
1: जी
0: और कोई छिड़काव कराना है तो आपके जैसे पहले से पता है कि ये एरिया जो है, बेसिकली डेंगू बीमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, इसका
1: अच्छा
0: मतलब होता है जहां पे गर्मी
1: जी जी
0: रहती है,
1: अच्छा
0: मौसम चेंज भी होता है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो
1: जी
0: ऐसे एरिया में ज्यादा ये फैलता है, जैसे इंडिया इसमें प्रोन है, तो जिस एरिया में पहले डेंगू ज्यादा फैल चुका है तो वो पहले से सिलेक्टेड रहते हैं सीएमओ के द्वारा या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उनका नाम लिखा रहता है, तो वहां के लोग अपना पहले से दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ छिड़काव कर दें, और
1: बिल्कुल
0: ये से
1: जी
0: जिससे बची प्रिवेंशन ज्यादा बेटर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा ये कहते हैं सुबह शाम ही इसका मच्छर काटता है, धूली संध्या, ज्यादा सुरक्षा उपाय आजमाने की बात बताई जाती है।
0: जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मलेरिया का मच्छर होता है रात में काटता है, और जो एडीज वाला मच्छर है ना इसको
1: जी
0: दिन ही में ही, मतलब खासकर सुबह अर्ली मॉर्निंग
1: या
0: और
1: फिर
0: इवनिंग में,
1: जी
0: उस टाइम पे ज्यादा मच्छर काटता है, उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है ये मच्छर है,
1: जी
0: और रात में नहीं काटता ये इसी टाइम पे ज्यादा, और इसी टाइम पे हम लोग को क्या होता है कि कम कपड़े पहने होते हैं,
1: जी जी
0: या तो हम अर्ली मॉर्निंग कम कपड़े पहने होते हैं या इवनिंग में
1: या
0: भी हम लोग ऑफिस से आए अपना अपने कपड़े लो, अरे
1: जी
0: गर्मी बहुत हो रही तो
1: जी जी
0: उसी टाइम उसका मौका उठा के ये काटता है, बढ़िया,
1: जी
0: तो ये
1: मौका परस्त
0: गुरु
1: है
0: मौका
1: बिल्कुल।
0: प्रस्त
1: डॉक्टर साहब बचाव बहुत जरूरी है, और बचाव की बातें तो बताई दी हैं, अब ये और बताइएगा जो डेंगू की बीमारी है, या कहते हैं कि वायरस से होती है, और ये डेंगू वायरस कई तरह का होता है,
0: जी।
1: एक बार जो डेंगू होगा किसी को वो वायरस दोबारा डेंगू नहीं करता है,
0: जी
1: क्या सच्चाई है?
0: हाँ ये अच्छी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि डेंगू जो है, डेंगू का वायरस जो है इसको हम लोग आर्थो फैमिली का मानते हैं, क्योंकि जो है जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे फैलता है, मतलब मच्छर से फैलता है,
1: जी
0: आर्थोमिक्सोविडी फैमिली से
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं, चार टोटल होते हैं,
1: चार
0: चार
1: वायरस
0: तरह के, जैसे
1: अच्छा
0: 1 2 3 4 करके,
1: जी जी
0: तो अगर आपने कहा कि नहीं एक तरह से काट लेता है तो उससे फिर हमेशा के लिए हम इम्यून हो गए या फिर
1: जी
0: दोबारा
1: जी जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: नहीं फैलेगा,
1: हाँ
0: तो ये सही है क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है,
1: जी
0: अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो फिर उस स्ट्रेन से आपको डेंगू बुखार
1: नहीं
0: दोबारा
1: होगा
0: नहीं होगा,
1: जी
0: और एक बार जिसको डेंगू बुखार हो गया फिर जब दूसरी बार होता है
1: जी तो वो ज्यादा
0: तो ज्यादा
1: खतरनाक
0: खतरनाक होता है,
1: जी।
0: पहला वाला अगर माइल्ड है, फीवर हल्का फुल्का आया और अपने आप ही ठीक हो गया।

0: हल्का बुखार आया, ठीक हो गया। जांच तक नहीं कराई, पता भी नहीं चला कि हमको डेंगू हुआ था। लेकिन दोबारा जब वही मच्छर काटने जो है, 1 और 2 से ज्यादा कॉमन है, इसलिए हम लोग NS1 एंटीजन कराते हैं और NS2 एंटीजन कराते हैं। लेकिन होता 4 तरह का है, 1 2 3 4 करके 4 इसके वेरियंट है, जिन 4 वेरियंट से ये डेंगू का बीमारी फैलती है।
1: मच्छर के काटने के तुरंत बाद क्या बुखार आना डेंगू का लक्षण है, या फिर इसमें भी कुछ समय बाद बुखार आना शुरू?

0: अब घुसा है अभी अंदर, ब्लड में गया है, तो
1: जी
0: ये नहीं कि ब्लड में जाते ही वो बीमारी
1: काम
0: पैदा
1: शुरू
0: कर
1: कर
0: देगा,
1: देगा
0: तो
1: जी।
0: ऐसा नहीं। पहले वो क्या करता है, एक डॉक्टरी भाषा में वायरीमिया बोलते हैं हम लोग,
1: अच्छा
0: किसी भी चीज का नंबर बढ़ जाना, जैसे वायरस बढ़ गया तो वायरीमिया बोलते हैं, बैक्टीरिया बढ़ गया तो बैक्टीरिया बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो उनका नंबर जब बढ़ता है, तो जब अपनी पॉपुलेशन अच्छी कर लेते हैं, कोई भी कहीं युद्ध होता है कुछ होता है, तो
1: जी
0: कहते हैं
1: सैनिक
0: जब
1: इकट्ठे
0: सैनिक
1: होते
0: इकट्ठा हो
1: हैं
0: जाए तभी करना
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल
0: स्टार्टिंग में, नहीं तो वही ये भी करते हैं
1: जी
0: कि पहले इनोकुलेशन होता है 2 दिन, 2 से 3 दिन का समय लगता है इनको
1: अच्छा
0: कि अपना नंबर बढ़ाएं,
1: जी
0: किसी किसी में 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन, लेकिन ज्यादातर 2 से 3 दिन में ये नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद सिम्टम आना शुरू होते हैं।
1: अच्छा क्या क्या सिम्टम होते हैं, शुरुआती लक्षण अगर जानना
0: जी
1: चाहें तो?
0: डेंगू में 3 तरह का डेंगू का बुखार होता है, हम लोग 3 तरह का कैटेगरी करिए इसकी, एक होता है डेंगू फीवर बोलते हैं, दूसरा होता है DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, और एक होता है DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: अच्छा
0: तो जो डेंगू फीवर होता है वो माइल्ड फीवर रहता है,
1: जी
0: उसमें उसके सिम्टम्स अगर लक्षण देखें तो उसमें बुखार आएगा और वो बुखार 2 से 3 दिन तक रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है।
1: कितना तक होता है डॉक्टर साहब टेम्परेचर?
0: बुखार ये मैक्सिमम 104 तक जा सकता है,
1: अच्छा 104
0: एक
1: तक
0: सौ
1: भी हो
0: चार
1: सकता
0: डिग्री
1: है
0: से हाँ बिल्कुल जा सकता है।
1: जी।
0: तो लेकिन जो माइल्ड वाला होता है उसमें इतना नहीं जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ तो डेंगू तो सबसे मेन सिम्टम जो है डेंगू फीवर में बुखार आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेंगू फीवर में अगर है आपको तो बुखार आएगा, हो सकता है बुखार भी ना आए।
1: अच्छा
0: हाँ बहुत माइल्ड स्टेज है,
1: जी
0: तो 2 3 दिन तक रहा और वायरस निकल गया, नंबर ही कम है और
1: जी
0: ठीक हो गए हम, तो कभी कभी
1: अच्छा
0: पता भी नहीं चलता हमको पहली बार हम इन्फेक्टेड थे।
1: जी जी
0: कुछ लोग कहते नहीं, कहते जब दोबारा डेंगू होगा तब सीरियस होंगे, हमें तो हुए पहली बार हम सीरियस हो गए, तो
1: बिल्कुल
0: हो सकता पहली बार हुआ और उनको कोई सिम्टम ही नहीं, लक्षण ही
1: सिम्टम
0: नहीं है,
1: जी जी
0: हल्की वीकनेस लगी या हल्का फीवर लगा और वो 2 दिन में ठीक हो गए,
1: अच्छा
0: तो वो ना कोई जांच ना कुछ पता नहीं चला, और वो
1: जी
0: एक बार डेंगू पीड़ित हो चुके थे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: दोबारा जब काटा तो ज्यादा सीरियस हो गए।
1: जी
0: तो यही होता है कि इसमें
1: क्या
0: जो
1: डॉक्टर साहब ये कोल्ड के साथ भी होता है? ऐसे लगता है जैसे जुकाम हो रहा है, जुकाम के साथ बुखार हो गया, उसके बाद ये डेंगू बुखार हो जाता है, ऐसा
0: नहीं
1: कुछ
0: नहीं
1: होता
0: नहीं
1: है?
0: कोल्ड होना जरूरी नहीं है, कोल्ड होना जरूरी नहीं, सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो बुखार आता है, और इसमें बुखार की वजह साथ में दर्द होता है, और
1: अच्छा
0: दर्द कहाँ होता है, आंखों के ये पीछे,
1: आंखों की
0: आंखों
1: पुतलियों के
0: हाँ
1: पीछे
0: पुतलियों के पीछे दर्द होता है, बहुत
1: जी
0: तेज दर्द होता है और सर में दर्द रहता है,
1: अच्छा
0: ये एक लक्षण है। अगर अगर सीवियर DHF की बात करें, अगर सीवियर डेंगू किसी को हो जाता है तो लक्षण बहुत सारे आते हैं, जैसे
1: जी
0: पेट में दर्द होगा और
1: हाँ
0: बहुत तेज दर्द होगा पेट में।
1: अच्छा
0: अब आदमी के अगर है डेंगू फीवर और उनको पेट में
1: पेट
0: दर्द,
1: में दर्द हो रहा है
0: हाँ
1: जी
0: तो पेट में दर्द हो सकता है, सांस बहुत तेज लेगा आदमी, टैकिपनिया होगा, सांस बहुत तेज बढ़ जाएगी उसकी,
1: अच्छा
0: हाथ तो और पैर ठंडे पड़ जाएंगे उसके,
1: यानी बुखार होगा लेकिन हाथ और पैर ठंडे होते हैं
0: हाँ, और खुजली होगी,
1: अच्छा
0: शरीर पे खुजली हो सकती है, नाक से खून आ सकता है या गम्स में ब्लीड हो जाएगी, दांतों के जो
1: अच्छा अच्छा
0: गम्स होते हैं
1: मसूड़ों में
0: मसूड़ों से भी खून आने लगता है,
1: अच्छा
0: लेटरिन रास्ते खून आने लगेगा, अगर
1: अच्छा
0: महिलाएं हैं तो उनका माहवारी समय से पहले आ जाएगी, या अगर समय पे भी आ रही है तो ज्यादा हो जाएगी,
1: अच्छा
0: तो
1: बढ़
0: ये
1: सकती है,
0: हाँ बढ़ सकती है, तो ये सारे लक्षण डेंगू के ही हो सकते हैं।
1: बहुत खतरनाक लक्षण आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने
0: जी
1: 3 तरह का डेंगू बताया, एक तो सामान्य जो पता भी नहीं लगने देता,
0: जी
1: और दूसरा हेमरेजिक डेंगू
0: हेमरेजिक फीवर,
1: जिसमें हेमरेज तक हो सकता है।
0: जी,
1: हेमरेज किस तरह का होता है डेंगू में?
0: डेंगू हेमरेजिक फीवर ये जो होता है ये उस स्टेज में जब प्लेटलेट का नंबर घटने लगता है, इसमें जो डेंगू का वायरस है ये अटैक करता है हमारे ब्लड सेल्स पे, इसमें ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकोपीनिया जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं,
1: जी
0: श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: वो घट जाती हैं, क्योंकि वो टूटती हैं, प्लेटलेट टूटती हैं, प्लेटलेट सबसे ज्यादा आप हर कोई जानता है कि प्लेटलेट टूटती हैं, तो
1: जी
0: प्लेटलेट के साथ साथ WBC भी टूटती हैं, तो अगर
1: अच्छा
0: आप जांच कराएंगे तो WBC का भी नंबर कम इसमें मिलता है।
1: जी
0: तो प्लेटलेट क्या करता है कि प्लेटलेट खून को जो है कंट्रोल करता है कि ब्लीडिंग ना हो,
1: अच्छा
0: क्लॉटिंग करके रखता है,
1: जी
0: तो जब प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है तो क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं होगी
1: जी
0: तो ब्लीडिंग होगी,
1: अच्छा
0: तो डेंगू हेमरेजिक फीवर स्टेज में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाएंगी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, इसमें सब माइल्ड अगर ब्लीडिंग होगी तो क्या हो सकता है, नाक से खून आ सकता है और मसूड़ों से खून आ सकता है,
1: अच्छा
0: लेकिन अगर ज्यादा प्लेटलेट नंबर कट गया और बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो फिर क्या होगा, माहवारी से खून आने लगेगा,
1: जी
0: लेटरिन के रास्ते खून आने लगेगा,
1: जी जी
0: पेट में बहुत तेज दर्द इसी वजह से होता है क्योंकि पेट में भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो गई है,
1: ओहो
0: और ब्लीडिंग जब ब्लड भरता है, ब्लड बहुत ही टॉक्सिक माना जाता है एनवायरमेंट जहां नहीं होना चाहिए ब्लड
1: जी
0: पेट के
1: जी
0: अंदर,
1: जी
0: तो जैसे ही ब्लड आता है तो फिर बहुत तेज पेट में दर्द होता है, खून की उल्टी हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है, तो ये और सीवियर कंडीशन हो गई।
1: शरीर पर चकत्ते भी इसी स्थिति में पड़ते हैं डॉक्टर
0: जी
1: साहब?
0: शरीर में चकत्ते जो पड़ते हैं वो माइल्ड प्लेटलेट ब्लीडिंग को दर्शाते हैं कि
1: अच्छा
0: बहुत हल्की ब्लीडिंग हुई है, तो केवल स्किन पे चकत्ते ही पड़े हैं।
1: अच्छा अच्छा ये खतरनाक लक्षण है डेंगू
0: जी
1: के।
0: सब खतरनाक
1: जो
0: लक्षण है।
1: तीसरा आपने बताया डॉक्टर साहब,
0: जी
1: तीसरा प्रकार
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम
1: जी डेंगू शॉक
0: वो तो बहुत डेंगू के अगर सही से इलाज वगैरह

0: करा जाए तो हम लोग काफी मरीज बचते हैं, लेकिन जो मरीज कभी कभी मृत्यु भी होती है डेंगू में,
1: डेंगू में
0: डेंगू
1: जी
0: इतना खतरनाक है,
1: जानलेवा भी है
0: जानलेवा, तो वो यही स्टेज है।
1: जी।
0: अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम में पहुंच गया तो ये जानलेवा स्टेज है।
1: ओहो
0: इसमें जो है मरीज को बहुत ही आईसीयू में रखना पड़ता है,
1: जी,
0: बहुत केयरफुल वॉच करना पड़ता है सही से, जो
1: किस
0: भी
1: तरह के लक्षण आते हैं शॉक सिंड्रोम में
0: जी शॉक सिंड्रोम में जो लक्षण आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि लक्षण कैसे पहचाने कि डेंगू
1: जी
0: शॉक
1: जी
0: सिंड्रोम में। इस स्टेज में क्या होता है कि फीवर आना बंद हो जाता है,
1: अच्छा, बुखार नहीं होता,
0: अब बुखार नहीं रहेगा उसको,
1: अच्छा
0: जो ब्लीडिंग हुई थी ब्लीडिंग हो सकता हो या ज्यादा हो
1: अच्छा
0: या नहीं भी हो,
1: अच्छा
0: लेकिन अब क्या होगा उसका ब्लड प्रेशर घटने लगेगा,
1: ओहो
0: सांस बहुत तेजी से फूलने लगेगी,
1: जी
0: फेफड़े में पानी आने लगेगा,
1: ओहो
0: शरीर पेट में पानी भर जाएगा, तो ये सारी कंडीशन आती है। तो इसलिए हाथ पैर इसमें ठंडे मिलते हैं,
1: अच्छा
0: अगर हाथ पैर छुएंगे तो बहुत ठंडे होंगे,
1: अच्छा
0: क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो खून का दौरान ही कम है,
1: जी
0: तो इसलिए सारे सारे जितनी स्किन है ठंडी पड़ी रहेगी। और ये, और जब बीपी कम होता है, बीपी कम होने से क्या होगा, हार्ट उतनी तेजी से ब्लड नहीं पंप कर पाएगा,
1: जी
0: तो ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता है, ऑर्गन फेल करने लगते हैं, और ऑर्गन फेल करने के मतलब कि डेथ की तरफ है,
1: बड़ा खतरनाक है
0: बहुत
1: डॉक्टर साहब।
0: खतरनाक है।
1: सर, एक तो सच्चाई ये है कि प्लेटलेट्स भी खून में होती हैं, ये बात डेंगू ने बताई है।
0: जी
1: हमारे समाज में डेंगू से पहले प्लेटलेट की बात कभी कभार शायद ही होती होगी, सुनी जाती होगी,
0: जी
1: लेकिन जब से डेंगू बुखार आया
0: जी
1: और इसका प्रसार बहुत हुआ,
0: जी
1: तब से
0: जी
1: लोगों को प्लेटलेट के बारे में पता लगा। किस
0: जी
1: तरह प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, क्या प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता हर तरह के डेंगू में होती है या फिर कुछ खास परिस्थितियां होती हैं?
0: जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेन अगर आज हम लोगों का डिस्कशन क्या है तो प्लेटलेट पे ही डिस्कशन करना चाहिए,
1: जी
0: करना
1: बिल्कुल
0: था मुझे, क्योंकि
1: जी,
0: आमतौर से लोगों को पता है कि डेंगू बुखार मतलब कि प्लेटलेट का घट
1: प्लेटलेट्स
0: जाना,
1: जी
0: और प्लेटलेट को चढ़ा दो, प्लेटलेट को पूरा करो, कैसे भी डॉक्टर साहब प्लेटलेट के कराता है, अटेंडेंट भी टेस्ट कराता है, कहता है डॉक्टर साहब प्लेटलेट जरूर चेक कराइए कि कितनी
1: जी
0: हो गई,
1: जी
0: बढ़ी कि घटी,
1: सभी
0: बढ़ी
1: को
0: कि
1: चिंता
0: नहीं, टेस्ट
1: रहती
0: बहुत
1: है
0: चिंता रहती है। तो प्लेटलेट हम सबको बताना चाहेंगे कि आम जनता भी जाने और भी जो हमारे कलीग्स हैं सबको जाने कि प्लेटलेट हमेशा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है,
1: अच्छा
0: इतनी जल्दी प्लेटलेट मत चढ़ाएं उसको, हो सकता है प्लेटलेट चढ़ने की वजह से कोई ऐसी रिएक्शन हो जाए और वो पेशेंट था डेंगू हेमरेजिक फीवर कंडीशन स्टेज में और पहुंच गया डेंगू शॉक सिंड्रोम में,
1: बिल्कुल
0: तो जल्दी प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन नहीं, उसके एक कुछ इंडिकेशन होते हैं तभी प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। और जो हमारी जनता सुन रही है वो भी डॉक्टर को प्रेशराइज बना करे कि प्लेटलेट घट गए हैं और डॉक्टर साहब प्लेटलेट नहीं मंगा रहे हैं, प्लेटलेट चढ़वाइए,
1: जी
0: तो प्लेटलेट की जब आवश्यकता होगी तभी प्लेटलेट चढ़ाएंगे, और उसके कुछ हम आपको ही बता दे रहे हैं कि
1: जी
0: कहाँ कहाँ प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगर कहीं से भी खून आ रहा है शरीर में,
1: जी
0: प्लेटलेट का नंबर काफी कम हो गया है,
1: जी
0: तभी प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। प्लेटलेट का नंबर 10,000 से कम अगर है,
1: 10,000 से कम,
0: कम है
1: अच्छा लोग
0: तभी,
1: लाखों में काउंट करते हैं कि 1 लाख से कम हो गई या 50,000 रह गई तो
0: हाँ देख, डेंगू का नॉर्मल नंबर होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख,
1: जी
0: ये नॉर्मल नंबर होता है ये शरीर
1: प्लेटलेट्स
0: के
1: का,
0: अंदर, हाँ अगर ये इतना नंबर है तो शरीर में नॉर्मल है ये काउंट,
1: अच्छा
0: तो 1.5 लाख से जब कम घटने लगता है तो रिपोर्ट जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उसको ब्लैक से कर देते हैं कि अब
1: जी
0: घट रहा है,
1: जी जी
0: 1,20,000 रह गई, 1 लाख इतनी रह गई, तो 10,000 से कम जब हो तभी प्लेटलेट चढ़ाने, या फिर मान लो 20,000 प्लेटलेट हैं या 30,000 प्लेटलेट हैं,
1: जी
0: 50,000 ब्लीडिंग हो रही है
1: तब चढ़ानी
0: तब
1: पड़ती
0: चढ़ाएं,
1: है,
0: पर इसके
1: अच्छा
0: अलावा कोई और कोई इंडिकेशन नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ानी है,
1: जी
0: तो सतर्क रहें, प्लेटलेट हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है और ज्यादातर जरूरत पड़ती ही नहीं है।
1: जी
0: मैंने पूरी अभी 4 साल से मैं डेंगू ठीक कर रहा हूँ, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बरेली में, उससे पहले मैंने मेडिकल कॉलेजेस में काम किया हुआ है, 3 या 4 मरीजों तक ही खाली प्लेटलेट चढ़ाया, कभी प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ी नहीं है।
1: अच्छा
0: अगर आप सिम्टोमेटिकली उसको ठीक कर ले रहे हैं और आपको पता है कैसे कैसे मॉनिटरिंग करनी है तो प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब, अगर ओआरएस जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है,
0: जी
1: ओआरएस घोल अगर लगातार देते रहे मरीजों को तो डेंगू में प्लेटलेट्स इतनी तेजी से कम नहीं होते।
0: नहीं, ये तो प्लेटलेट का घटना और बढ़ना
1: जी
0: इसका किसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि पपीते की पत्ती दे दें या बकरी का दूध दे
1: जी
0: दें
1: जी जी
0: या फिर कुछ दवाइयां आती हैं जिसमें पपाया एक्सट्रैक्ट रहते हैं,
1: जी जी जी
0: या फिर आपने जैसे कहा ओआरएस दे दें,
1: जी
0: या कुछ लोग कहते हैं कीवी फल खाएं,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये सब चीजें सपोर्टिव, कोई इनका एविडेंस नहीं है,
1: अच्छा
0: प्लेटलेट बढ़ाते हैं।
1: जी
0: तो प्लेटलेट का क्या है, प्लेटलेट बनती है बोन मैरो से,
1: जी अच्छा,
0: और बोन मैरो पर जाकर ये अगर वायरस अटैक करता है या फिर ब्लड में प्लेटलेट टूट रही है, दो ही वजह से प्लेटलेट कम होती है। तो जैसे ही इसका वायरस का वारीमिया कम होगा, अपने आप प्लेटलेट का नंबर बढ़ने लगेगा।
1: अच्छा।
0: तो कोई भी ये सपोर्टिव जितने चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये प्लेटलेट बढ़ा देंगे।
1: अच्छा,
0: ऐसा
1: अच्छा।
0: होता तो सिर्फ ओआरएफ ही चल रहा होता, मरीज ठीक हो जाता
1: या फिर पपीते के पत्ते से इलाज हो जाता।

0: या बकरी का दूध से इलाज चल रहा होता,
1: जी
0: ये सारी चीजें
1: जी
0: तो ये मिथ्स हैं, इन पे कई सारी स्टडीज हुई हैं, तो कभी भी कोई ऐसा नहीं आया स्टडी में निकल के कि
1: जी
0: इनकी वजह से प्लेटलेट का नंबर बढ़ता है।
1: जी जांच के विषय में बताइएगा, कौन सी जांच ये तय करती है कि वास्तव में डेंगू बुखार है, और डेंगू है तो कौन सा डेंगू है?
0: जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले तो लक्षण से ही पहचान लें कि बरसात के बाद हमें अगर बुखार बहुत तेजी से आ रहा है
1: जी
0: और आंखों के पीछे दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कहीं से खून आ रहा है, तो ये लक्षण डेंगू का हो
1: डेंगू का
0: सकता
1: हो
0: है।
1: सकता है, बिल्कुल
0: तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, खुद
1: जी,
0: जांच कराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर को जाएं, डॉक्टर बताएगा,
1: डॉक्टर ही जांच कराते
0: डॉक्टर
1: हैं
0: ही जांच कराए
1: जी
0: तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी
0: और उसमें हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं और किट के टेस्ट भी करते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसमें NS1 एंटीजन चेक करते हैं
1: अच्छा
0: और IgM एंटीबॉडी रहती है और IgG एंटीबॉडी रहती है,
1: जी
0: ये टेस्ट करते हैं।
1: अच्छा
0: ये एक प्रकार के बताते हैं कि किस स्टेज का डेंगू कहाँ कहाँ पहुंच गया है।
1: अच्छा
0: तो वो टोटल ड्यूरेशन जो होता है 2 से 7 दिन तक रहता है करीब बुखार आता है डेंगू में,
1: अच्छा अच्छा
0: उसके बाद 10 दिन तक डेंगू ठीक हो जाता है अगर नॉर्मल डेंगू है,
1: अच्छा
0: और अगर कहीं कंडीशन ज्यादा हो ऐसी तो 14 दिन के अंदर डेंगू ठीक हो जाता है।
1: ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब, अगर बीमारी हुई है तो जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना जल्दी ठीक हो जाती है,
0: जी
1: डेंगू के विषय में भी क्या यही बात है?
0: डेंगू की हर बीमारी का जितनी जल्दी हम उस बीमारी को पकड़ लेंगे उतनी
1: हाँ
0: जल्दी हम उसको ठीक भी कर लेंगे,
1: जी
0: क्योंकि उसको अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट,
1: जी
0: अर्ली क्योर मिलेगा। तो डेंगू का वैसे कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि ये दवाई डेंगू में दीजिए और ठीक हो जाए, जैसे टीबी का इलाज है कि हाँ ये दवाइयां खानी टीबी ठीक,
1: जी
0: लेकिन डेंगू में ऐसा अभी कोई इलाज नहीं है।
1: क्या कोई टीका वगैरह भी होता है जिससे डेंगू लग जाए तो डेंगू बुखार ना हो फिर
0: जी
1: बाद
0: हाँ,
1: में?
0: रिसर्चेज चल रही हैं, कई सारे टीके इजाद हुए, तो टीका भी अभी नहीं बना है इसका।
1: जी
0: और इसका इलाज हम लोग सिम्टोमेटिक करते हैं
1: जी
0: कि
1: जिस तरह के
0: जिस
1: लक्षण है
0: तरह के
1: वो
0: लक्षण हैं
1: बस उसी
0: लक्षणों
1: तरह
0: को
1: से इलाज
0: कंट्रोल
1: करते
0: करें,
1: हैं जी।
0: और एक ड्यूरेशन होता है, इतना ड्यूरेशन में वो ठीक ही हो जाएगा डेंगू,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उतने
1: अच्छा
0: ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है।
1: जी
0: बस उसको हम लोग कोशिश करें कि अगर डेंगू फीवर स्टेज है तो डेंगू हेमरेजिक में ना जा पाए, और डेंगू हेमरेजिक वाली स्टेज है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में ना जा पाए,
1: बिल्कुल
0: अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम में है तो उसको वहां से हम निकालें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं डेंगू के लिए, और किन के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है डेंगू?
0: हाँ, वो सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है,
1: जी
0: खासकर डायबिटिक पेशेंट हमारे जो हैं,
1: जी
0: या हाइपरटेंशन जिनको है, बीपी की बीमारी रहती है, शुगर के मरीज हैं, बीपी वाले मरीज हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं,
1: जी
0: उनको दिक्कत हो सकती है, उनको डेंगू खतरनाक हो सकता है। या फिर ऐसे जिनका लीवर फेल हो गया, बहुत ड्रिंक करते थे, क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई है, लीवर फेल हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन आ गई है,
1: जी
0: तो ऐसे मरीज हैं जिनको टीबी की समस्या है, या बूढ़े लोग या यंग बच्चे, इनमें डेंगू ज्यादा प्रोन होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है और बहुत ही सीवियर डेंगू हो सकता है, गंभीर तरह का डेंगू हो सकता है।
1: अगर किसी को डेंगू हो जाए
0: जी
1: और वो इलाज करा रहा है
0: जी
1: तो उस समय क्या बातें ध्यान रखनी है? कहा जाता है कि अगर हार्ड चीजें नहीं खा सकते, ज्यादा चटपटी चीजें नहीं खानी है, जबकि बुखार होता है तो जुबान कहती है कि कुछ चटपटा खाने को मिले
0: ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इस पे कभी
1: जी
0: ध्यान जाता नहीं, आपने बहुत अच्छे
1: जी
0: डेंगू पे रिसर्च करके क्वेश्चन लेके आए हैं कि डेंगू का बुखार क्या होता है, कि ये जब इन्फेक्शन होता है डेंगू का तो लीवर पे भी अटैक होता है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो लीवर पे क्या होता है कि लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, SGOT और SGPT ज्यादातर हम लोग कराते हैं,
1: जी
0: जो कि बड़ा होता है, और SGPT एक जो एंजाइम होता है, अगर ये बढ़ता है क्या होता है कि डाइजेशन सही प्रॉपर नहीं हो पाता है,
1: जी
0: इसलिए हमको नोजिया फील होता है कि वोमिटिंग, उल्टी जैसा लगेगा, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी।
1: जी
0: तो हम लोग कहते हैं कि डेंगू में तरल पदार्थ लें, जिससे क्योंकि लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, लीवर डाइजेशन में उतना हेल्प करेगा नहीं,
1: जी
0: तो जितना तरल लिक्विड टाइप का खाना लेंगे इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आराम से शरीर में ले लेगा और उल्टी भी नहीं उसको होगी।
1: अच्छा
0: तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम लोग प्लेटलेट का ध्यान देते हैं,
1: जी
0: लीवर एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं और वो जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक उसको उल्टी की समस्या लगी रहेगी। तो इसका भी इलाज करें, डॉक्टर भी इसका इलाज करें और जनता भी जागरूक हो कि लीवर भी इसमें डैमेज हो, पेन बहुत होता है, इस पेट में दर्द इसीलिए होता है क्योंकि लीवर टेंडर हो जाता है,
1: जी जी
0: लीवर बहुत दर्द करता है इसमें।
1: जी जी कोई और खास बात बताना चाहेंगे? चूंकि ये मौसम है और ये ऐसा वक्त है जबकि डेंगू के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, प्रयास हमारा यही कार्यक्रम के माध्यम से भी है, लोग जागरूक हों, अपने आप को बचा के रखें,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर किसी को डेंगू हो जाता है
0: जी
1: तो तुरंत उचित और एक योग्य चिकित्सक से इलाज कराएं। क्या
0: जी जी
1: संदेश है आपका चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए?
0: बिल्कुल, हम आखिरी में यही संदेश देंगे कि अब आने वाला समय है जो है उसमें डेंगू और मलेरिया दो चीजें ऐसी हैं
1: जी
0: ज्यादा खतरनाक है, तो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें और जो है उनकी सहायता लें, और अपने आसपास सफाई रखें और जहां कहीं पानी कलेक्टेड

0: नगर निगम से शिकायत करके पानी जो है उसको निकलवाएं, और कहीं भी जहां पे छिड़काव होना वहां छिड़काव करें, और जहां पे भी किसी की भी जरूरत है, जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम है उनको इन्फॉर्म करें, वो आपको इस चीज से निजात दिलाएंगे।
1: मच्छरों से बचाव, डेंगू से बचाव,
0: यस
1: हम ये कह सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मच्छरों से कैसे बचना है ये लोगों को पता है, हम लोगों ने भी कोशिश की है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा तरीका बताया, मच्छरदानी का प्रयोग करें।
0: जी जी बहुत डेंगू से बचे, मच्छरों से, मच्छरों को ही नहीं काटने थे तो डेंगू समस्या
1: डेंगू से बचे रहेंगे,
0: डेंगू से बचे रहें।
1: जी डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को डेंगू बुखार कब सामान्य कब गंभीर इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, तथ्यपरक बातें बताई, आपको स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
3: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
2: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
3: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में।
2: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी महेश्वरी।
3: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
5: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 MHz पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी ID जनरेट होगी, जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा, विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील, अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें, तथा जब प्रागणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा। अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रागणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र।

0: है 100.4 FM पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।
1: हैं डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी की वार्ता, विषय है बदलते समय में। माफ कीजिएगा, आपको सुनवाने जा रहे हैं नवगीत और मुक्त कविता का महत्व, वार्ताकार डॉक्टर ओम शर्मा। ओम,

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से श्रोतावाचक वार्ता आपको सुनवाते हैं, जिसका विषय है नवगीत और मुक्त कविता का महत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर ओम शर्मा।
1: मुक्त कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य शैली है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह कविता छंदों के बड़े अनुशासन, मात्राओं की गिनती और तुकबंदी के बंधनों से मुक्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। पारंपरिक कविताओं में लय और ताल बनाए रखने के लिए एक निश्चित ढांचा होता है, जबकि मुक्त कविता में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी ढांचे का पालन नहीं करता। इसमें कविता की लंबाई, पंक्तियों का क्रम और शब्दों का चयन कवि की आंतरिक लय पर निर्भर करता है। मुक्त कविता की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। छंद मुक्ति, छंद से मुक्त होता है ये। तुकबंदी का अभाव, इसमें तुकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं होती। भावों की प्रधानता, इसमें जो प्रधान होता है वो भाव होता है, भाव को प्रधानता दी जाती है। बोलचाल की भाषा, आमतौर पर हम कविता में खड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, पर इसमें बोलचाल की भाषा हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, जो भी हमारी बोलचाल की भाषा होती है हम उसमें कविता लिखते हैं। और आखिरी है आंतरिक लय, इसमें आंतरिक लय होती है, इसलिए लय की भी कोई बाध्यता नहीं होती। आज के दौर में लिखी जाने वाली अधिकांश कविताएं मुक्त कविता ही होती हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर भी एक मुक्त कविता है। मैं आपके बीच वो कविता रखना चाहता हूं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी, कि वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। ये तो हुई मुक्त कविता की बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नवगीत के बारे में। नवगीत क्या होता है? ये हिंदी कविता की एक आधुनिक विधा है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम करती है। इसे गीत का नया और विकसित रूप भी माना जाता है। 1950 के दशक के आसपास जब हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर चल रहा था, तब कुछ गीतकारों ने पारंपरिक गीतों में आधुनिक जीवन को पुरोना शुरू किया, जिसमें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी को नवगीत आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। नवगीत की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं: यथार्थवाद, लोक संस्कृति, शिल्प में नयापन, बौद्धिकता, प्रतीक और बिंब, इन सबको मिलकर नवगीत बनता है। नवगीत की जो वर्तमान स्थिति है वो ऐसी है कि आज के समय में नवगीत सोशल मीडिया और कवि सम्मेलनों के माध्यम से फिर से जीवित हो रहा है। आज के कवि आधुनिक विषयों और संस्कृति तकनीकी युग पर भी गीत लिख रहे हैं, जिसे आज की नई पीढ़ी काफी पसंद कर रही है। मैं एक अपने गीत से जोड़ना चाहता हूं आप सभी को, एक नवगीत मैंने लिखा वो आपके बीच रखता हूं और आप सभी का ध्यान मांगता हूं। गीत सुनना। गीत के बोल हैं कि क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या

न पाए। और गीत का बंद इस तरह है कि प्रीत के अंतःकरण की एक परिभाषा यही है,

किनारे, साथ बहकर भी कभी एक दूसरे को जो न पाए। क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या विवशता थी जो कान्हा रुक्मिणी के हो गए पर राधिका के हो न पाए। और गीत का अगला बंद और पढ़ता हूं कि प्रेम वो है जो कठिन हालात में भी धीर रखे वो

पाए क्या, और गीत का अंतिम मंद रखता हूँ और प्रमाण देना चाहता हूँ कि वो रुक्मिणी के हो गए पर राधिका के क्यों नहीं हो पाए, कि प्रेम है उन मुक्त पंछी जो खुले आकाश उड़ता, प्रेम अविरल भाव है और ब्याह है अनुबंध जैसा, प्रेम है उन मुक्त पंछी जो खुले

कृष्ण है और कृष्ण ही तो राधिका है, एक दूजे में समाहित प्रीत है संबंध ऐसा। ओ साथ खेले साथ खेले, साथ गाए साथ में बंसी बजाकर, साथ खेले।

0: पाए क्या वजह थी।
1: नवगीत और मुक्त कविता का महत्व। ये वार्ता भी आप सुन रहे थे, वार्ताकार थे डॉक्टर ओम शर्मा। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:10। इसी के साथ प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रूना लैला की गायकी।

यस बॉस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और आइए अब सुनते हैं मन फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत संजीव दर्शन।

0: मन फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती

0: घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए, और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों

0: और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक

0: चलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म कभी कभी से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। आपके लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, शिव हरी का संगीत।

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।

0: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात

उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने BPO में HR की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन ए.आर. रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए.आर. रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए.आर. रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

0: दीनदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो दीनदयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।
1: भाई तेरा मुझे भी देखो मेरा बनने लगा।

दीन दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बिनिदयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बिनिदयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो हम सभी हैं।

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। श्रोताओं, हाजिर हैं हम लेकर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, और आज का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को गाया है वसंत देसाई और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं भारत व्यास ने और धुन वसंत देसाई की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को हावड़ा ब्रिज फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के और संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत, आवाज थी आशा भोसले की। आशा भोसले की ही आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन SG पर।

बम्बई का बाबू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी आशा भोसले की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बहार फिल्म का गीत, जिसे गाया शमशाद बेगम ने। गीत के बोल लिखे राजेंद्र कृष्णा ने और संगीतबद्ध किया सचिव देव।

बहार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी शमशाद बेगम की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री 420, इस फिल्म का गीत। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, लिखा शैलेंद्र ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे श्री 420 इस फिल्म का गीत, और आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। और कार्यक्रम में अब अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की आवाजों में। अलबेला फिल्म का गीत है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और धुन सी राम

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 10:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का राग मालव में ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग मालव में ख्याल गायन, और इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से

0: केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by